0: ना यो टुटे ना मर लगे ना यो जले ना जाए तन सो मानस नानका जोगल चले पाए चौकड़ मुला नाया बै चौके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुरु ब्राह्मण थिया ओमुआ चढ़ पाया बीत गया भला पहला
1: लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पैनामियां रात दिन सजी नाल तग पाओ कत्ती है बमन वटे आए को बकरा रिन खाया सबको आखे पाए कोई बुरा ना सुटिया पी फिर पाई है होर नान तग न टुटे जे तक होवे जोर।

0: ਔੜੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤਾ ਸਾਹਿਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਬਣਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਦ ਦਾ ਕਸਮੇ ਕਾ ਮੈਂ
1: ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਨੇ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
2: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਲ। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार के लिए लिखित प्रस्ताव पर आधारित वार्ता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बिना किसी लिखित प्रस्ताव के बातचीत केवल सुधार प्रक्रिया को टालने के समान होगी। सुधार का विरोध करने वाले देश संस्था को मजबूत करने के बजाय केवल उसका शोषण कर रहे हैं। डॉ जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग रप्चर्स एंड अनपार्ट्स बदलती दुनिया के लिए सेतु निर्माण विषय पर आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। इसके अलावा विदेश मंत्री ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र संघों की उद्घाटन बैठक में कहा कि खाड़ी लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले

यह आकाशवाणी की सिंधी सर्विस है 9870 किलोहर्ट्ज़ से तंखा सवाए तमाम आकाशवाणी की सिंधी सर्विस न्यूज ऑन एयर एप ए डीटीएच ते पण बुधी सकंदा आयो असन जे प्रोग्राम जो आगाज़ ही चुको है विचूड़ कुछ नतर है थोड़ी देर में अवां भगत कौराम जन जो मिठड़ो आवाज सुनंदा तंखा पोए एक नंडी तकरीर ए पोए प्रोग्राम पेश कंदो अज मेहमान अज असि इन प्रोग्राम तहत अवां जी मुलाकात कराइंदासीं जनाब वासे मोई सां मुलाकात कराइंदा आहिनि जनाब लक्ष्मण भाटिया।

0: अवा मगत कौराम जंजो मेट्रो आवास गुजरे ऑल इंडिया रेडियो जी सिंधी सर्विस है हिंसर पेश आई नंढी तकरीर।
1: लेखक मोती प्रकाश पैंजे आर्टिकल वाई में लिखो है कि काफी ए वाई सिंधी शायरी जो निज सनफू आन सिंधी मौसिकी के जानन काफी ए वाई के एक ही सनफ में बिहारो है छो जो ये सादी सुदियो सनफू आवाज या राग मार्फत बुधंदन के दिल तई पहुंचन थी। उत्ते लिखंदा कि शाह जो वायू गायन विद्या के सुरन या दास्तान के मजमून से आधार रखन थी। लिखंदा कि किथे ये भी है गोया दास्तान मूजिब जेका वाई उन सुर या दास्तान जो तत् हुए सा बे सुर या दास्तान में भी डनी वही हुए। मिसाल दियन था कि सुर सामुंडी में वणजारन ए सदन बहन जो जिक्र आए सदन विछोड़े ए परदेश वजन से जुदाई जो जिक्र है तो मंझ ससे पिनू के जतन ए डूंगरन जो बयान पिण शामिल है। दुख लाइंदम डूंगर वो मां प्रिय जा मुखे सबई सो पसा सो भाया प्रिय जो पही डाढ़ी जात जतन जी वेही डुदल डही आऊं डोरिंदी उनके राई रात रही डिठा वण कोहियार जा वेही उन लही। अत लिखे तो सिंधी शायरी के शाह का अग ए शाह का पोए वाले दौर जो जिक्र कंदे अब्दुल्ला जबार जोड़े के सिंधी अदब के मुख्तसर तारीख में शायरी जो सनफू ए उन शायरन बाबत लिखो है तो शाह इनायत बैतवाई शाह लतीफ बैतवाई सादिक फकीर बैतवाई।

0: نور محمد، خستہ غزل، سچل سرمست بیت، وائی، کافی، غزل این جھولنو، عبداللہ روف بھٹی مولود، میاں سرفراز، منجات ثابت علی شاہ مرسیو، حمل فقیر بیت، وائی، کافی این غزل، سانی سلوک پہ کلکرانی کئی لکھن دا کہ سچل جے کلام میں بیت کافی غزل این جھولنو تو ملے تو پر کتھے وائی نظر نتیجے इन कारण शायद यो है जो किथे वाई लिखी भी है तो उनके संदस मुरीदन या फकीरन काफी करे लिखे हो जे वरन का अग मेलन ए मजलिस में गायण वाली अक्सर काफियों गाई वेंदी हूं मिसाल हाकिम होत हलिया हिकड़ी घरी सूरन सारे छड़ियो दर्दन लाई दरी कब्र तई कंदे वेई अबाणा अबाणा पसा थियस पोया पनोरा पुजाणा जिन जे हथा वेरा परी तिनखू पुछो सद सूर जी भक्तन में भी अक्सर भगत छेर छमकाए ए जामो पाए काफियों गाईन्दा हुआ ए धर्मी विषय ते भजन आलेपींदा हुआ लेखक अगते लिखन्दा के विरांगे बैद हिंद में शाह सचल जा बैत रूहल बेवस ए बैदल वगैरह जा कलाम बीजल रायड्याच मूमल राणे मूमल मेंद्री ससें पुनो जे कहानन में भगत सागी रवायत कायम रखन्दा आया अगते लिखन्दा सिंध में सिंधी जनता जडे हिंद में आयल मुहाजिरन सा मुंह मुकाबल थी तने सिंधियत बोली कल्चर के बचाव के हक में शायरी एक नो मोड़ अख्तियार कर नौजवान शायरन इन जज्बे के असर हेठ बैत वाई जड़े देसी सनफन ते कलम आजमायो ए बुधंदन में उत्साह फूको शेख अयास तनवीर अबासी न्यास मायनवी शमशीर अली हैदरी उस्ताद बुखारी ताजल बेवस मंसूर मलिक इब्राहिम मुंशी ए बेन शायरन शायरी जो ए शेर जो रंग रूपी मटाए रखो शाह जे वाई अगे दरह ए इश्क विछोड़े ए विसल के जिक्र के छड़े सिंधी अवाम ए बुधंदन लाए एक नहायत असरायती सनफ बणजी पई मंझ वतन ए बोली की मोहब्बत धारिन की डाढ़ाइन ए तसबी नजरें फर्के परस्ती की मुखालफत करण मेल मिलाप हिंदू मुस्लिम एकता ए सिंध के अलग हैसियत ते जोर ए धारिन के लोध जो भी जिक्र कयो शेख अयाज के वायन के मजमूए लुड़ सुज लिखन में वड़ी सुजागी आंदी चाहिए तो वाई जो मजमून ही मटजी वो नारायण श्याम चवे तो इन दौर के शायर के नए सिर जियारो है ए उनके रुमानियत जमालियत ए जदीद एहसासात के इजहार जो वसीलो कर कम आंदो है अयास पंजे वाई के सिंध ए सिंधत लाए इजहार भी बणा मिसाल तौर सिंध देश की धरती तोते पैंजो सीस नमाया मिट्टी मथे लाया सारा सड पराडा तुझे वाई में वरजाया मिट्टी माथे लाया गीत भी मूं तुझा माता बैत भी तुझा भाया मिट्टी माथे लाया सिंध की हालत ते ताजल बेवस भी निहायत असरदार वायू चयू आन मिसाल है उसियू बाजारियों रौनक रंग छड़े वही लिखियू पण लोक में वहू वेचारियों रौनक रंग छड़े वही कें भी मरणी कंध खां निंडरन जी डारियों रौनक रंग छड़े वही
1: अवां तकरीर बुधरा आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस है।

0: हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। जी सिंधी सर्विस सां हींअर पेश आहे प्रोग्राम अॼु महिमान। सामिन अॼु असीं प्रोग्राम तहत अव्हां जी मुलाक़ात करायूं मशहूर अदीब जनाब वासे मोही सां। मुलाक़ात कराईंदड़ आहिनि जनाब लक्ष्मण भाटिया।
1: बर्फ़ जो ठहियल हीउ घर वासदेव मोहीअ उन वक़्तु अॾियो आहे जॾहिं सॼी दुनिया बाहि में वकोड़जी वई आहे ऐं हू उन बाहि जा उला पंहिंजियुनि अखियुनि सां ॾिसी रहियो आहे। उन्हनि उलनि में मोहीअ खे कहिड़ो ऐं केतिरो सेक आयो आहे, उन जो रदि अमल वासदेव मोहीअ जे ग़ज़लनि जो ई मजमूओ बर्फ़ जो ठहियल सिंधी शायरीअ जे शाइकनि अॻियां आयो आहे। नई कविता खां ग़ज़ल ताईं मोहीअ जे शायरीअ जो सफ़र हिन जे शायरीअ जे फार्म जे लिहाज़ खां मुनाफ़िकत वारी मोट आहे या सचपच हिन जे सोच जे सिलसिले जी हिकु अॻिते वधियल रिख आहे। उन जो फ़ैसिलो पढ़ंदड़ हाणे करे चुका आहिनि जो उन्हनि नई कविता जे हिकु नुमाइंदा ऐं पुख़्ते बीठल शायर खे हिकु ग़ज़लगू शायर जे हैसियत में पिण ओतिरो ई बल्कि उन खां कुझु वधीक ई क़बूल कयो आहे। नई कविता जो कवि मोही ग़ज़लगू शायर जे रूप में पंहिंजी हिकु अलॻि सुञाणप इन करे

0: कायम करे सघियो आहे जो हिन रुगो गज़ल जे रवायती फार्म खे क़बूल करे उन में नओ ख़्याल, नओ सोच, नओ मुहावरो, नओ डिक्शन, नयूं तरकीबूं ऐं नयूं अलामतूं आणे सिंधीअ जे हिन गज़ल में पंहिंजी नई एप्रोच सां ताज़ी हवा जी महक आंदी आहे जंहिंखे हिंदुस्तान जे पाठकनि दिलि खोले आजां कई आहे ऐं मोईअ जे गज़लिया शायरीअ खे पंहिंजी जीअ में जायूं ॾिनियूं आहिनि। एशिया जे वॾे में वॾे अदबी इदारे साहित्य अकादमीअ मोईअ जे मजमूए बर्फ़ जो ठहियल खे हिकु आला अदबी तख़लीक़ तस्लीम कंदे हिन साल जे साहित्य अकादमी अवार्ड सां नवाज़ियो आहे, जंहिं लाइ असीं ऐं असांजा ॿुधंदड़ हिन खे दिलि खोले दाद ऐं वाधायूं था ॾियूं। ख़ुशकिस्मतीअ सां असांजो शायर वासदेव मोही हिन वक़्तु असांजे भर में आहे ऐं असीं हिन जो मुखामेलो हिन गुफ़्तगू ज़रिए पंहिंजनि ॿुधंदड़नि सां कराए रहिया आहियूं। मोही साहब, तव्हांजी हिन स्टूडियो में तमामु घणी मरहबा कई थी वञे
1: महिरबानी,
0: ऐं तव्हांखे लख लख वाधायूं हुजनि जो तव्हांखे साहित्य अकादमी जहिड़ो अहिड़ो आला अदबी इनाम मिलियो आहे। जिते हुनखे देरि सां ई सही पर देरि आयत ब दुरुस्त आयत। बहरहाल मां तव्हां खां इहो पुछणु चाहींदुसि त तव्हां पंहिंजे शायरी जी शुरूआत उन दौर में कई जॾहिं नई कविता औज ते हुई ऐं तव्हां नई कविता जे हिकु नुमाइंदा शायर जे हैसियत में सिंधी अदब में न फ़क़त उभरी आया पर पंहिंजो हिकु मक़ाम ऐं पंहिंजी हैसियत क़ाइमु कई। उन खां पोइ तव्हांजो सिलसिलो सफ़र जो शायरीअ जो नई कविता तरफ़ रुजू रहंदे रहंदे हिकदमि ग़ज़ल जहिड़े रवायती फार्म तरफ़ कीअं अची वियो, ख़ासि करे जॾहिं असांजे तव्हां ॾिठो हूंदो त सिंधीअ जा अक्सर शायर जिन ग़ज़ल किता ऐं रवायती फार्म ते लिखिया आहिनि उन्हनि पोइ अची नई कविता लिखी आहे, जॾहिं की तव्हां पहिरीं नई कविता लिखी आहे ऐं पोइ अची करे तव्हां ग़ज़ल लिखियो आहे, इन बारे में कुझु वज़ाहत कयो त महिरबानी।
1: कोमल साहब, इहा ग़लति फ़हमी शायदि घणनि खे आहे त मूं नई कविता सां शुरूआत कई। हक़ीक़त में मूं ग़ज़ल सां शुरूआत कई हुई। 1964 जे आसपास मूं लिखणु शुरू कयो ऐं मूं ग़ज़ल ई लिखिया ऐं मां ख़ुशकिस्मत रहियुसि जो ग़ज़ल मैगज़ीन में छपजण खां अॻु कलेक्शन में छपिया। तंहिंखां पोइ धीरे धीरे मूं ॾिठो त जेका चीज़ मां चवणु चाहियां थो उहा ग़ज़ल में पूरीअ तरह अची नथी सघे ऐं इन करे मूं नई कविता अपनाई। तव्हांजो चवण त मां उन वक़्तु आयुसि जॾहिं नई कविता औज ते हुई, सो मां सम्झां थो त अॻे वरी का ग़लति फ़हमी आहे। औज ते त पाण किन थोरनि कवियुनि हुनखे आंदो जिन मां बि हिकड़ो होसि ऐं इन करे ई नुमाइंदा ऐं बानी जहिड़ा लफ़्ज़ मूंसां जुड़ियल रहिया। हाणे वरी नई कविता खां ग़ज़ल तरफ़ मुंहिंजो मुड़णु हिकु अहिड़ो सफ़र आहे जेको मूंखे हिकु मोड़ ते अची ईअं सम्झाए रहियो आहे त जेका चीज़ ॼणी आहे उहा पंहिंजे लेखे हिकु फार्म ॻोल्हे थी वठे। अॼु बि मां नई कविता लिखी रहियो आहियां ऐं ग़ज़ल बि लिखी रहियो आहियां त जंहिं नमूने जी रचना हूंदी आहे, जंहिं नमूने जो ख़्यालु हूंदो आहे, उहो ख़्याल रचना पंहिंजो फार्म ॻोल्हे वठंदी आहे, पोइ कविता थिए या ग़ज़ल थिए।
0: पर तव्हां ॾिठो हूंदो त हींअर वेझड़ाई में तव्हांजो जेको ग़ज़लनि जो मजमू आयो आहे उन में तव्हां फार्म त ग़ज़ल वारो अपनायो आहे जेको बिल्कुलु रवायती आहे ऐं ख़ुशकिस्मती सां तव्हांजो हर ग़ज़ल बैर वज़न ते बि एतिरो पूरो आहे जो उहो हर तक़ाज़ाऊं पूरियूं करे थो। पर छाकाणि जो तव्हां नई कविता जे मैरफत ग़ज़ल में आया आहियो त तव्हांखे ईअं नथो महसूस थिए त नई कविता में जेको तव्हांखे ख़्याल जो फैलाव जी वसियत आहे, तव्हां ग़ज़ल जे ॿिनि बंदनि में तव्हांखे का हिकड़ी महदूदगी या के हद बंदियूं के महसूस थियनि थियूं पयूं?
1: बिल्कुलु न, मूंखे ईअं महसूस थियो त ग़ज़ल जंहिं नमूने हली रहियो आहे उहो ज़्यादा ते न हलंदो, छाकाणि त उन जो जेको फॉर्म त झूनो आहे पर जेकॾहिं कंटेंट बि झूनो रहियो त उनखे क़बूल न कयो वेंदो। इन करे मूं जॾहिं ग़ज़ल नए सिर शुरू कयो त उन में मूं पंहिंजी नई सेंसिबिलिटी आंदी ऐं उहा नई कविता वारी सेंसिबिलिटी आहे जेका हिन ग़ज़ल में बि मौजूदु आहे ऐं मां सम्झा थो इन करे मुंहिंजो ग़ज़ल थोरो अलॻि आहे।
0: हा, इहा ॻाल्हि तव्हांजी बराबरि आहे ऐं जेका मूं पंहिंजे हिन इंट्रोडक्शन में चई आहे ऐं हर को पंहिंजो महसूस करे थो त वासदेव मोही नई कविता जो ख्याल नई कविता जो सोच।

0: कहिड़ा आहिनि, हुन जा अॻियां इम्कान कहिड़ा आहिनि, हुन जे अॻियां के मसाला कहिड़ा आहिनि, जेकर हुन बारे में मुख़्तसर में रोशनी विझो।
1: मां सम्झा थो त अञा बि तरक़ी कंदी सिंधी शायरी ऐं ख़ूब तरक़ी कंदी,
0: ख़ासि करे जॾहिं असांजी नई खेप जेका शायरीअ जी आहे या शायरनि जी आहे, उहा पंहिंजे लेखे शायरीअ खे संजीदगीअ सां नथी वठे पई। उन हालत में जेके ख़तरा ऐं अंदेशा कहिड़ा आहिनि असांजे अॻियां, या जेका नई टेक्नोलॉजी पैदा थी आहे, पोएट्री जॾहिं कंप्यूटर लिखणु शुरू कंदो त ओॾीमहिल चार सिंधी पोएट्री असांजी किथे बीहंदी?
1: न, इहे ॻाल्हियूं थींदियूं रहंदियूं आहिनि। साइंस जे एडवांसमेंट सां घणे ख़तरा थींदा आहिनि, कल्चर खे बि थींदा आहिनि, साहित्य खे बि थींदा आहिनि। जीअं नाटक लाइ बि चयो वेंदो, सिनेमा अची वई नाटक ख़तमु थी वेंदो, पर नाटक अञा ताईं जारी आहे ऐं अञा ताईं उहो पूरे ज़ोर सां अचे थो, ऐं के जेके एन्जॉय कनि था नाटक, उहो सिनेमा एन्जॉय नथा कनि। त अहिड़े नमूने कविता जो पढ़ण बि जारी रहंदो ऐं कविता रहंदी ऐं पूरे ज़ोम सां रहंदी।
0: पर पोइ असांजा जेके पाठक ॾींहों ॾींहुं महदूद थींदा था वञनि पिया, ख़ासि करे कविता जा पाठक, चाहे पब्लिशर चवनि था त असां उहे किताब छपाइण खां इन करे गुरेज़ था कनि पिया त कविता जा किताब असांजा विकामनि नथा। नॉवेल विकामे थो, शॉर्ट स्टोरी विकामे थी, नाटक बि विकामे थो कंहिं ताईं, पर कविता लाइ असांखे ॾाढो उहो तमामु हिकिड़ो रिलेक्टेंट हूंदा आहिनि कविता जो किताब छपाइण में। त इहे जेके तव्हांजी ॻाल्हि खे जेको आहे नेगेट करे थी, त अॻिते कविता जो कहिड़ो
1: न नेगेट कान थी करे, छाकाणि त इहा हालत न सिर्फ़ु सिंधीअ सां आहे पर सॼी दुनिया जे ॿोलियुनि सां आहे। अंग्रेज़ीअ में बि मशहूरु इहो पोएट्री जो जेके मैगज़ीन्स आहिनि उन्हनि जो मुश्किल सां 500 कापियूं विकामनि।
0: त मां ग्लोबल लिटरेचर ते सम्झो था,
1: ग्लोबल
0: लिटरेचर त इहो कविता जेका आहे हिकिड़ी बैकसीट वठी रही आहे अॼुकल्ह।
1: बैकसीट शुरूआत खां वठी आहे, ईअं कोन्हे त भई हिन वक़्तु आहे, शुरू खां वठी जेका बि सीरियस जेका ॻाल्हि अचे थी लिटरेचर में, जेको बि सीरियस साहित्य थिए थो उन लाइ हमेशह बैकसीट हूंदी आहे। बाक़ी त हाणे जेको हर दिल अज़ीज़ साहित्य आहे सो त पियो फ्लरिश कंदो आहे ऐं उहो ईअं ई सम्झंदा आहिनि माण्हू त वाह वाह भाई असां
0: जेका तव्हां ॻाल्हि कयो था, असां हिकिड़ी पॉपुलर शायरीअ जी कयो जंहिंमें गीत इहे या ताराना इहे अचनि था, पर नई कविता हिकिड़ी संजीदा शइ आहे।
1: बिल्कुलु
0: उन जा पढ़ंदड़ सम्झो था त तव्हां श्रिंक थींदा वेंदा रोज़ या सम्झण वारा
1: न, जेके सीरियस रीडर्स आहिनि उहे त उनखे पढ़ंदा ई
0: रहंदा
1: ऐं एंजॉय बि कंदा,
0: ऐं तव्हां सम्झो था त अहिड़े तरह को उन जो मुस्तक़बिल जेको आहे सो या आईंदो जेको आहे हूंदा हुन आहे।
1: बिल्कुलु न,
0: तव्हां रोशन हुनखे सम्झो था।
1: बिल्कुलु,
0: ऐं ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे जो तव्हां हिकिड़े ऑप्टिमिस्टिक ख़ुशि ख़तीअ वारे नोट ते इहा ॻाल्हि पंहिंजी पूरी कयो था, ऐं तव्हां असांखे पढ़ंदड़नि लाइ को हिकिड़ो मैसेज जेकॾहिं या को कहिड़े क़िस्म जो पैगाम ॾियणु चाहियो त, हालांकि पैगाम ॾियणु शायर जो कमु न आहे, पर माफ़ कजो हिन सुवाल लाइ, पर ॿुधंदड़ चाहींदा त असांखे को हिकिड़ो अहिड़ो पैगाम ॾिए।
1: ॿुधंदड़ लाइ जेकॾहिं ॿुधंदड़ साहित्यकार आहिनि या शायर आहिनि ख़ुदि, त मां चाहींदुसि त लिखण वक़्तु हू हिकु ॻाल्हि साम्हूं रखनि त मां जेकी कुझु लिखी रहियो आहियां उहो अॻु लिखियल खां कीअं अलॻि आहे, ऐं उन सोच खां पोइ हू कुझु पंहिंजो ॾेई सघंदो, शख़्स ई कुझु ॾेई सघंदो। बाक़ी त घणो कुझु लिखियो वियो आहे, हज़ारे राइटर्स थी विया आहिनि, लखे राइटर्स थी विया आहिनि, अलॻि न बि ठाहिनि।
0: हा, महिरबानी तव्हांजी। हाणे मां चयो तव्हां असांजा ॿुधंदड़ इहो चाहींदा त तव्हां पंहिंजे मुख मां हुनखे पंहिंजूं नयुनि कवितनि जो हिकु ॿ नमूनो तौरु हुनखे ॿुधायो, ख़ासि करे उन किताब मां जंहिंमें तव्हांखे जंहिं ते तव्हांखे इनाम मिलियो आहे, महिरबानी।
1: हा, जंहिं किताब ते इनाम मिलियो आहे उनमें त सिर्फ़ ग़ज़ल आहिनि, तंहिं करे मां हिकु ग़ज़ल पढ़ंदुसि,
0: हा नमूने तौरु,
1: ऐं हिकु कविता खणी पढ़ंदुसि।
0: हा,
1: पहिरीं ग़ज़ल थो पढ़ा।
0: हा,
1: ग़ज़ल आहे। पुराणियुनि शयुनि खे ॾिसे ख़ुशि थिए, पुराणियुनि शयुनि खे ॾिसे ख़ुशि थिए, जॾहिं ॻोठ मां को अचे ख़ुशि थिए, सिधी ॻाल्हि चवंदे मुंझी थो पवे, सिधी ॻाल्हि चवंदे मुंझी थो पवे, फिडन पेचरन तां हले ख़ुशि थिए, चरियो कोन्हे पर समुझ हुन जी इहा, चरियो कोन्हे पर समुझ हुन जी इहा, सॼो झोल कंडा भरे ख़ुशि थिए, ॾिसे की न की समुंड कारो अथा, ॾिसे की न की समुंड कारो अथा, रुगो उस त्रीअ ते जले ख़ुशि थिए, ॾिसे की न की समुंड कारो अथा, रुगो उस त्रीअ ते जले ख़ुशि थिए, मिटीअ जी पुड़ी विच सड़क ते रखे,
0: मिटीअ जी पुड़ी विच सड़क ते रखे,
1: मिटीअ जी पुड़ी विच सड़क ते रखे, को लांघाउ उनखे खणे ख़ुशि थिए, को लांघाउ उनखे खणे ख़ुशि थिए, पुराण शयुनि खे ॾिसे ख़ुशि थिए, जॾहिं ॻोठ मां को अचे ख़ुशि थिए।
0: हिकिड़ी हाणे जेकॾहिं
1: नंढड़ी कविता
0: पेश
1: कयो, नंढड़ी कविता आहे,

0: मुझी सादगी जिते वञा रेंडू पारायो जा। मुझी सादगी जिते वञा रेंडू पारायो जा। तुझी मजबूरी हथ हमेशा लूणिया ठा तुझा।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह। ए वरी वरी पढ़ जो असान मुकर।
0: मुझी सादगी जिते वञा रेंडू पारायो जा। मुझी सादगी जिते वञा रेंडू पारायो जा। तुझी मजबूरी हथ हमेशा लूणिया ठा तुझा
1: तुझा। वाह वाह। इहो साईं नई तस्बीह आहे हिकिड़ी, हथ लूणिया था तुंहिंजा। मां सम्झा थो त असांजा जे ॿुधंदड़ जी तिशनगी अञा पूरी न थी आहे, उनजी उञ अञा न लथी आहे। हिकिड़ो ॿ ग़ज़ल जेकॾहिं तव्हां ॿियो ॿुधायो चाहींदो, तव्हांजो ग़ज़ल जो फन जेको आहे तव्हांजे उरूज ते आहे, इन करे तव्हां हिकु ॿ ग़ज़ल ॿियो ॿुधायो त महिरबानी।
0: ज़रूर। ग़ज़ल आहे, हेॾां होॾां थी रेत रस्तो ॾे,
1: हेॾां होॾां थी रेत रस्तो ॾे,
0: थी सघे थो मिठास रिश्तो ॾे।
1: वाह वाह।
0: थी सघे थो मिठास रिश्तो ॾे रिश्तो ॾे। समुंड हेठां दड़ा ॾिसां थो मां,
1: समुंड हेठां दड़ा ॾिसां थो मां,
0: समुंड हेठां दड़ा ॾिसां थो मां, अॼु नज़र भाव कोरो कोरो ॾे। सिज मुंहिंजो सुभाउ थी पियो आहे,
1: सिज मुंहिंजो सुभाउ थी पियो आहे,
0: सिज मुंहिंजो सुभाउ थी पियो आहे, लफ़्ज़ हिकु हिकु रुगो तपत थो ॾे। आरसीअ में ॾिसी सिखां मुरकण,
1: आरसीअ में ॾिसी सिखां मुरकण,
0: कम रवाजी कम थो केॾो ॾे,
1: कम रवाजी बि कम थो केॾो ॾे। वाह वाह।
0: मस्करी पाण ते करे थो वठां, मस्करी पाण ते करे थो वठां, केर थो ख़ुशि थियण जो मौको ॾे।
1: वाह वाह, केॾो रब्तो फर्स्ट क्लास।
0: मस्करी पाण ते करे थो वठां, केर थो ख़ुशि थियण जो मौको ॾे। हू चवे थो त दर खुलियल आहे, हू चवे थो त दर खुलियल आहे, घर थो अहसास सिर्फ़ भित जो ॾे।
1: वाह।
0: तूं नदीअ खां कॾहिं पुछी ॾिसजांइ,
1: तूं नदीअ खां कॾहिं पुछी ॾिसजांइ,
0: समुंड हुन खे सवादु कहिड़ो ॾे।
1: वाह वाह वाह।
0: नदीअ खां कॾहिं पुछी ॾिसजांइ, समुंड हुन खे सवादु कहिड़ो ॾे। हेॾां होॾां थी रेत रस्तो ॾे, थी सघे थो मिठास रिश्तो ॾे।
1: वाह मोहित साहब, तव्हां असांजा ॿुधंदड़नि खे ॾाढो महसूस कयो, ऐं तव्हांजी वॾी महिरबानी त असांजे स्टूडियो में आयो असांजे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार के लिए लिखित प्रस्ताव पर आधारित वार्ता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बिना किसी लिखित प्रस्ताव के बातचीत केवल सुधार प्रक्रिया टालने के समान होगी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सुधार का विरोध करने वाले देश संस्था को मजबूत करने के बजाय केवल उसका शोषण कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर रेप्चर्स एंड रैम्पर्ट्स, बदलती दुनिया के लिए सेतु निर्माण विषय पर मंत्री स्तरीय सत्र में ये बात कही। विदेश मंत्री ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय हैं। डॉक्टर जयशंकर ने हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बरमुडा की ध्वज वाले मालवाहक पोत एमवी केप डाउ पर हमले का जिक्र किया। इसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर एल गाइया के मामले का भी जिक्र किया। इसमें भारतीय चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया था। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने बाढ़ के बाद हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में श्री शाह ने कहा कि बढ़ता तापमान हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर रहा है। उन्होंने कहा कि हाल की आपदा ने नेपाल चीन सीमा के दोनों ओर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, जबकि बाढ़ का पानी आगे भारत तक पहुंचा। श्री शाह ने आपदा के बाद सहायता प्रदान करने वाले देशों, विशेष रूप से भारत के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त की। भारत ने क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर अभियान के आरंभ होने का स्वागत किया है। इस अभियान की घोषणा 26 मई को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की 11वीं बैठक में की गई थी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय तटरक्षक बल का जहाज शौनक चारों क्वाड देशों के नाविकों के साथ चेन्नई से रवाना हो गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह अभियान समुद्री सहयोग को मजबूत करता है और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति क्वाड की साझा प्रतिबद्धता दर्शाता है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन EIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। सप्ताह में 3 बार चलने वाली ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि भुज से बरौनी के लिए सेवा सोमवार, बुधवार और शनिवार को, जबकि बरौनी से भुज तक सेवा मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को उपलब्ध होगी। रेलवे ने वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी आगरा कैंट एक्सप्रेस को मथुरा स्टेशन तक विस्तारित करने की भी मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज वर्षा से कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों में चक्रवाती परिस्थितियों के कारण तेज वर्षा हो रही है। जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से बारिश से संबंधित कई दुर्घटनाओं की भी सूचना मिली है। राहत आयुक्त ऋषिकेश भास्कर यशोद ने रेड और ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों के मजिस्ट्रेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर मौसम की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी श्रृंखला में हम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बसंती देवी से उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और कोसी नदी के पुनरोद्वार के क्षेत्र में उनके योगदान के बारे में बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जापान एशियाई खेलों के सातवें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमल जीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 12 years, the gap between cities and villages in India has narrowed significantly. He highlighted the considerable improvement in rural infrastructure and noted that women across the country have also become increasingly self-reliant and economically empowered. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan. He emphasized the importance of social service, social reform and positive change. He said Viksit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi highlighted that Vadnagar gave him the values that shaped his life, while Kashi added countless colors of service to those values. He expressed happiness that young people are also enriching this journey with the many colors of service. During the interaction, these Yatris shared their experiences with the Prime Minister. Mr. Modi asked the Yatris to maintain a diary and record their experiences during the Yatra. External Affairs Minister S. Jayashankar has raised concerns over repeated attacks on commercial shipping and seafarers in the Gulf, Red Sea and Black Sea, saying that the attacks were no longer exceptional occurrences. Dr. Jayashankar was addressing the inaugural meeting of the Groups of Friends on Safety and Security of Shipping and Seafarers during the 81st session of the United Nations General Assembly in New York. The External Affairs Minister announced a new initiative by India and Liberia together to draw greater attention to the safety and security of ships and seafarers.
2: Just 2 days ago, an Antigua and Barbuda flagged bulk carrier, MV Cape Dow, was attacked in the Gulf of Oman. An Indian sailor lost his life. In the last few months, commercial shipping and marinas have been subjected to repeated attacks in the Gulf, the Red Sea and its vicinity. From the Black Sea to the Red Sea to the Gulf, attacks on civilian shipping have become a growing cause of concern. These actions that disrupt maritime commerce and cost innocent lives are simply indefensible. We are here to not just highlight this dangerous trend, but to urge the international community to close

आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ और ये समय है जी हाँ आपके अगले कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। और ये गीतों भरी गुड मॉर्निंग में हम कर रहे हैं आपको गुड मॉर्निंग, तो उठ जाइए, मुस्कुराइए, अपनी सुबह को थोड़ा और शानदार बनाइए, क्योंकि सुबह सिर्फ सूरज के निकलने का नाम नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का नाम है। क्या हाल है आपका? चाय हो गई? अगर हो गई है तो बढ़िया, और अगर नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, हमारी आवाज सुनते सुनते चाय भी तैयार हो जाएगी। आज का दिन कैसा रहेगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन दिन की शुरुआत कैसी होनी चाहिए ये हमारे हाथ में जरूर है। तो आज एक छोटा सा काम कीजिए, कल की टेंशन को कल में ही रहने दीजिए और आज की सुबह को आज की तरह जिए, और खुद से कहिए आज कुछ अच्छा होने वाला है।

अब वक्त है उस गाने का जो आपकी सुबह में तो थोड़ा सा संगीत, थोड़ी सी मुस्कान और ढेर सारी एनर्जी भर देगा। तो आवाज बढ़ा दीजिए क्योंकि ये गाना है आपके नाम। लेकिन एक संदेश, सुबह का एक जो छोटा सा संदेश होता है ना, वो बहुत ही एनर्जेटिक होता है कि हर दिन जिंदगी हमें एक खाली पन्ना देती है। अब उस पन्ने पर क्या लिखना है, ये फैसला हमारा है। तो आज अपने पन्ने पर शिकायत नहीं, उम्मीद लिखिए, डर नहीं, हिम्मत लिखिए, और सबसे जरूरी, अपने लिए थोड़ा सा समय जरूर लिखिए।

तो चलिए अब आपसे बात करते हैं। हमें बताइए कि आपकी सुबह की सबसे पहली आदत क्या है? चाहे कॉफी, मॉर्निंग वॉक, न्यूज या फिर अलार्म बंद करके दोबारा सो जाना। अपना जवाब भेजिए हमें और हमारा ईमेल आईडी है ip.radio.delhi@gmail.com पर। जी हाँ, आप अपना संदेश भेज सकते हैं ip.radio.delhi@gmail.com पर अपनी दोस्त कुसुम के पास। और एक छोटी सी चुनौती मैं आपको देना चाहूंगी, छोटा सा चैलेंज, कि कम से कम एक व्यक्ति को दिल से धन्यवाद कहिए। शायद वो आपके घर का कोई सदस्य हो, आपका दोस्त हो, ऑफिस का कोई साथी हो, या वो इंसान जो रोज आपकी जिंदगी को थोड़ा आसान बनाते हैं। क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा धन्यवाद किसी की पूरी सुबह बदल सकता है।

जी हाँ, और दोस्तों सुबह की इस प्यारी सी मुलाकात का वक्त अब खत्म होने वाला है, लेकिन याद रखिए सुबह कितनी खूबसूरत है ये मौसम तय नहीं करता, हमारा नजरिया तय करता है। मैं हूँ कुसुम लता और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और आज के दिन को अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, गुड डे और ढेर सारी पॉजिटिव वाइब्स।

0: अभी आप सुन रहे थे गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और अब समय है हमारे देश विदेश की जानकारी। जी हाँ, हिंदी इंग्लिश और उर्दू में समाचार का। बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा, तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन से लगातार वर्षा के कारण राज्य के सभी स्कूल आज बंद। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। सावन बरवाल ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की मैराथन का रजत पदक जीता, और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है। उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सार्थक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ा है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत में प्रधानमंत्री ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य सभी की भागीदारी और योगदान से ही हासिल किया जा सकता है।
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वडनगर से प्राप्त मूल्यों ने उनके जीवन को आकार दिया है, जबकि काशी से उन्हें जीवन में सेवा मूल्य प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में यात्रियों ने अपने अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने यात्रियों से अपने अनुभवों को डायरी में दर्ज करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा तथा निर्बाध प्रतिबद्धता के भाव से सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरणा लेकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की जानकारी दे रहे हैं। नए श्रम संहिताएं सरकार की इस प्रतिबद्धता के साक्षी हैं।
3: नई श्रम संहिताएं कई वर्तमान कानूनों को एकीकृत आधुनिक ढांचे में समाहित करती हैं। इन्हें कार्यबल में स्पष्टता, स्थिरता और समानता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार इन सुधारों के अंतर्गत 32 केंद्रीय कानूनों को 4 संहिताओं में समाहित किया गया है। वेतन संहिता न्यूनतम वेतन को सार्वभौमिक बनाती है और समय पर भुगतान सुनिश्चित करती है। औद्योगिक संबंध संहिता विवाद समाधान को सरल बनाती है। नियुक्ति में लचीलापन बढ़ता है। सामाजिक सुरक्षा संहिता वर्कर्स, प्लेटफॉर्म कर्मियों और संगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसी तरह व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता कार्यस्थल की सुरक्षा और कल्याण मानकों को बेहतर बनाती हैं। ट्राई सिटी बिल्डिंग कामगार यूनियन चंडीगढ़ के प्रधान रामप्रीत शर्मा ने कहा कि नए श्रम कानून श्रमिकों के हित में है।
4: एक यूनियन लीडर के रूप में मेरा अनुभव है कि अच्छी पॉलिसी वही है जिसमें श्रमिक और इंडस्ट्री दोनों साथ साथ विकास करें। उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वर्किंग अरेंजमेंट में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी आई है।
3: ये 4 श्रम संहिताएं भारत के श्रम पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखती हैं, जिससे श्रमिकों और नियोक्ताओं को एक समान नियमों के अंतर्गत लाया जा सका है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
1: उत्तर प्रदेश में कई जिलों में तेज वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों में तूफान के कारण तेज वर्षा हो रही है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से वर्षा से संबंधित कई दुर्घटनाओं की भी सूचना मिली है। उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों और पर्यटकों से इस दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चार धाम यात्रा फिलहाल जारी रहेगी।
5: मौसम विभाग के अनुसार आज बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 4000 मीटर और अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का भी अनुमान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने और रेड अलर्ट के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने और राहत एवं बचाव की व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: छत्तीसगढ़ में पिछले दो दिन से लगातार हो रही वर्षा के कारण राज्य के सभी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाढ़ और जलभराव की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारियों को सतर्क रहने और राहत बचाव कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उड़ीसा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
6: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी आखुरापदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
7: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस के सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय हैं। डॉ जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत एमवी केप डाउ पर हमले का जिक्र किया। इसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर एल गाइया के मामले का भी जिक्र किया। इसमें भारतीय चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया था। विदेश मंत्री जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव से मुलाकात की और द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ कई मौजूदा मुद्दों पर चर्चा की। सत्र के दौरान उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने खाड़ी संघर्ष से संबंधित नवीनतम घटनाक्रम पर चर्चा की। ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात वाले इस समूह का उल्लेख करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों के नेताओं ने ब्रिक्स सहयोग की समीक्षा की। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने बाढ़ के बाद हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है, उसमें नागरिक, सरकार और उद्योग भी शामिल हैं। श्री पाटिल ने नई दिल्ली में कल 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के समापन सत्र में ये बात कही। श्री पाटिल ने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थानों के बीच सहयोग के माध्यम से ही किया जा सकता है।
1: जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है, कहीं सूखे और पानी की कमी का दबाव हो, ऐसे समय में हमें जल प्रबंधन को केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा। तीन बातें विशेष रूप से सामने आई हैं। पहली, जल संरक्षण से जन भागीदारी सबसे जरूरी है। दूसरी, विज्ञान और नई तकनीक का लाभ जमीन तक पहुंचना चाहिए। और तीसरी, जल की चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थाओं के बीच सहयोग से ही मजबूत होगा।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं हिमांशु कांडपाल।
2: पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। बरवाल ने 2 घंटा 11 मिनट और 37 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। आज महिला और पुरुष वर्ग में भारत की कबड्डी टीमें अपने अपने फाइनल मैच खेलेंगी। फाइनल में दोनों वर्गों में भारत का मुकाबला ईरान से होगा। बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु सिंगल्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला पूर्व विश्व चैंपियन सिंगापुर के लो की यू से होगा। एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर में रजत पदक जीतने के एक दिन बाद अब 1500 मीटर स्पर्धा में भाग ले रहे हैं। पारुल चौधरी और पूजा महिलाओं के 1500 मीटर फाइनल्स में उतरेंगी। एशियाई खेलों के 7वें दिन कल भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 10 रजत और 12 कांस्य पदकों सहित कुल 24 पदक जीतकर 12वें स्थान पर बना हुआ है। 99 स्वर्ण पदकों के साथ चीन शीर्ष पर है। जापान दूसरे स्थान पर है, उसने अब तक 29 स्वर्ण पदक जीते हैं। दक्षिण कोरिया 13 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। उधर उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में विश्व चैंपियन डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को पराजित किया। इस जीत के बाद भारतीय पुरुष टीम दूसरे स्थान पर आ गई है। अब 10वें दौर में भारत का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होगा। महिला वर्ग के 9वें दौर में भारतीय टीम उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर दूसरे स्थान पर आ गई है। अगले दौर में भारतीय टीम का मुकाबला चीन से होगा।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज की कड़ी में पद्मश्री से सम्मानित बसंती देवी से बातचीत प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और Facebook पर All India Radio News को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री मोदी के भजन क्लबिंग में शामिल होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मोदी जेंजी के साथ भजन क्लबिंग में हुए शामिल, नवभारत टाइम्स के अनुसार जेंजी के साथ पीएम की भजन क्लबिंग। अमर उजाला के अनुसार भजन क्लबिंग में युवाओं संग झूमे प्रधानमंत्री मोदी। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी का बयान देते हुए लिखा है, देश में दिखा बदलाव, मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे, पीएम ने गिनाई उपलब्धियां, निवेश, रक्षा उत्पादन, विनिर्माण और निर्यात में हुई उल्लेखनीय वृद्धि। हिंदुस्तान के अनुसार देश का विकास इंजन बना यूपी। गृहमंत्री अमित शाह बोले, डेड इकोनॉमी कहने वालों की सोच ही डेड। दैनिक जागरण लिखता है, गृहमंत्री ने यूपी में इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन समारोह में विपक्ष पर साधा निशाना। पंजाब केसरी के अनुसार तमंचों की फैक्ट्री की जगह बन रही ब्रह्मोस। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, भारत की पहल, जहाजों नाविकों पर हमले रोकने के लिए बना ग्लोबल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, समुद्र में हमले वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा। जनसत्ता के अनुसार न्यूयॉर्क में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, होर्मुज खोलने के लिए 7 दिनों का प्रस्ताव। अमर उजाला का शीर्षक है, स्वर्णिम निशाना, सुरुचि और कमल ने देश को दिलाया दूसरा गोल्ड, एक ही दिन में भारत को 2 रजत सहित 6 पदक। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अंतरिक्ष में एआई डेटा सेंटर बनाने की तैयारी में गूगल, सौर ऊर्जा से चलेगा एआई कंप्यूटिंग सिस्टम।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा, तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश के कारण राज्य के सभी स्कूल आज बंद। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। सावन बरवाल ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की मैराथन का रजत पदक जीता। और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभाग का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: than the Corona.
1: Thank you, Anuja. The Times of India highlights Prime Minister Modi's virtual interaction with Seva Yatris from Varanasi to Vadnagar to blend social reform with political work rather than focusing only on vote banks. Key trade pacts in mind, Delhi looks at multi-nation visit by PM Modi in December. Destinations may include the US, Canada and at least two European countries, writes the Indian Express. The statesman writes AIIMS Delhi records over 50 lakh OPD visits, nearly 3 lakh surgeries in a year. A headline in the Economic Times states, rupee recovers as large public sector banks sell dollars. And finally, Hindustan Times and all other dailies carry the news of India ending its wait for gold in shooting. The headline says, shooters strike gold. India scales new heights with its first pole vault medal. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says gap between cities and villages in India has narrowed significantly over past 12 years. Heavy rain slashed several districts of Uttar Pradesh. Schools closed in many districts following alert for heavy downpour. Chhattisgarh government declares holiday today for all schools in the state due to continuous rain over past 2 days. India raises concerns over repeated attacks on commercial shipping and seafarers in Gulf, Red Sea and Black Sea. Savan Barwal wins silver medal in men's marathon event at Asian Games in Japan. And Lee Gukesh secures India's victory over Germany in 9th round of FIDE Chess Olympiad in Samarkand. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में शहरों और गांवों के दरमियान फर्क में पिछले 12 साल के दौरान खातिरख्वाह कमी आई है। उत्तर प्रदेश के बहुत से जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके सबब अलर्ट जारी किए जाने के बाद कई जिलों में स्कूल बंद रखे गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले 2 दिन से जारी बारिश की वजह से रियासत में आज सभी स्कूल बंद करने का ऐलान किया है। भारत ने खलीज, बहरे अहमर और बहरे अस्वद में तिजारती जहाजों और जहाजियों पर बार बार हमले किए जाने पर तशवीश का इजहार किया है। सावन बरवाल ने जापान में एशियन गेम्स में मर्दों के मैराथन मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल किया है और डी गोकेश ने समरकंद में फीडे शतरंज ओलंपियाड के 9वें राउंड में भारत को जर्मनी पर जीत दिलाई। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 साल के दौरान भारत में शहरों और गांवों के दरमियान फर्क में खातिरख्वाह कमी आई है। उन्होंने गांवों के बुनियादी ढांचे में काबिले जिक्र बेहतरी को उजागर किया और कहा कि मुल्क भर की खवातीन भी लगातार खुद इन्हिसार और इक्तसादी तौर पर बाख्तियार बन रही हैं। जनाब मोदी ने यह रायजनी सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल वसीले से बात करते हुए की। ये यात्री सेवा संकल्प अभियान के तहत वाराणसी से वडनगर जा रहे थे। उन्होंने समाजी खिदमत, समाजी इसलाह और मुस्बत तब्दीली को उजागर किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत को हकीकी शक्ल उसी वक्त दी जा सकती है जब इसमें हरेक का तआवुन और शिरकत हो। जनाब मोदी ने खासतौर पर कहा कि वडनगर ने उन्हें ऐसी अकदार अता की हैं जिनसे उनकी जिंदगी को एक शक्ल मिली, जबकि काशी ने नकदार को मुख्तलिफ किस्म के खिदमात के बेशुमार रंग अता किए। उन्होंने खुशी का इजहार किया कि नौजवान इन खिदमात से इस सफर को और ज्यादा अहम बना रहे हैं।
3: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
2: यात्रियों ने बातचीत के दौरान वजीर आजम से अपने तजुर्बात का इजहार किया। जनाब मोदी ने यात्रियों से जोर देकर कहा कि वे एक डायरी रखें और इसमें यात्रा के अपने तजुर्बात लिखें। उत्तर प्रदेश में मुसलसल जारी शदीद बारिश के सबब कई अजला में मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हो गए हैं। शदीद बारिश के अलर्ट की वजह से कई अजला में 12वीं जमात तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। रियासत की राजधानी लखनऊ समेत कई अजला में तूफान की सूरत हाल के पेश नजर गुज़श्ता 24 घंटे से शदीद बारिश हो रही है।

0: आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के आज के अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत। स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाने वाला एक वैश्विक अभियान है विश्व हृदय दिवस, जो दिल संबंधी स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। ये दिन जीवन शैली में बदलाव और सक्रिय स्वास्थ्य प्रबंधन के माध्यम से स्वस्थ दिल को बनाए रखने के महत्व पर जोर देता है। आइए सुनते हैं इस विषय पर एक विशेष भेंटवार्ता। डॉक्टर विजय गुप्ता, प्रोफेसर एंड हेड CTVS राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और पूर्व प्रोफेसर एवं कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियक सर्जरी डॉक्टर RML अस्पताल नई दिल्ली से बात कर रही हैं शालिनी मित्तल। हम सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं देते हैं वर्ल्ड हार्ट डे की और स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर विजय गुप्ता। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका।
1: नमस्कार।
0: विश्व हृदय दिवस यानी वर्ल्ड हार्ट डे, तो हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि ये होता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है।
1: देखिए, वर्ल्ड हार्ट डे या विश्व हृदय दिवस हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। इसका बेसिकली उद्देश्य तो यही है कि आम इंसान को या आम पब्लिक को जागरूक करना हृदय की बीमारी के बारे में, जिससे इसकी बीमारी से जो मृत्यु है उसका दर थोड़ा कम हो जाए। जैसे कि आप जानते हैं, हृदय रोग एक इम्पॉर्टेंट कॉज है मोर्टेलिटी का, मृत्यु का। करीब 15 से 20 लाख लोग इस बीमारी से मरते हैं। करीब 50 करोड़ लोग पूरे विश्व में हृदय रोग से बीमार हैं, और आगे से ज्यादा जो इसकी मृत्यु का रेट है वो आप प्रिवेंट कर सकते हैं, आप कम कर सकते हैं। तो ये प्रिवेंटेबल डिजीज है। जो मेन कॉज है इसके अलग है। तो बेसिकली वर्ल्ड हार्ट डे इसलिए मनाया जाता है कि आपको इससे जागरूक किया जाए।
0: तो डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि 15 से 20 लाख लोग इससे जो है हर साल मरते हैं, और ये जो आंकड़ा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसका क्या कारण आप समझते हैं?
1: लेकिन जो हार्ट डिजीज है वो बेसिकली कुछ कारणों से है, जैसे डायबिटीज है। डायबिटीज इटसेल्फ बहुत तेजी से हिंदुस्तान में फैल रहा है। हाइपरटेंशन है, करीब 30% पब्लिक पूरे इंडिया में हाइपरटेंशन से ग्रस्त है। इसके अलावा मोटापा

0: जबकि मॉर्निंग वॉक जो भी एरोबिक एक्सरसाइज है अगर आप उनको करेंगे तो आपका वेट भी कम रहेगा और हार्ट पे भी फायदा होगा। इसके अलावा अगर मोटापा है तो फैट बंद कर दीजिए, अगर डायबिटीज है तो उसको अपना शुगर का कंट्रोल बहुत जरूरी है, और जंक फूड बहुत अधिक कॉमन हो गया है तो उसको भी रोकना बहुत जरूरी है जिससे कि आपका शुगर का लेवल कम रहे। इन्हीं सब चीजों से आप हार्ट डिजीज से बच सकते हैं। योगा करना भी एक जरूरी है, दिमाग को शांत रखना, कंप्यूटर का टीवी का देखना बहुत अधिक भी ठीक नहीं है। इन सब चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो आप हार्ट प्रॉब्लम कम होगी।
1: जी, और चेकअप कब कराना चाहिए?
0: देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो सिम्टम नहीं देती, जिसमें आपको मालूम नहीं चलता, बहुत आखिर में आके मालूम चलता है कि आपको ब्लड प्रेशर है। तो 40-45 साल में आपको डेफिनेटली आपको अपना ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, एक ECG करा के देख लेना चाहिए। और अगर आपकी फैमिली में हार्ट डिजीज है तो आपको जल्दी, हमने आजकल देखा है कि बहुत यंग एज में इंडिया में हार्ट डिजीज आ रही है। आदमी 30-35 साल के पेशेंट्स का हमको स्टेंट डालना पड़ जाता है या बाईपास करना पड़ जाता है। तो इसलिए अगर आपके फैमिली में कुछ हार्ट प्रॉब्लम है या आपको एंजाइना हो रहा है तो उसको इग्नोर ना करिए, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। दूसरा, हमने देखा है कि लोग आग इधर उधर से ओपिनियन लेते रहते, उससे अच्छा है आप डॉक्टर के पास जाइए। अपना ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो दवाई देता है। और दूसरी बात यह कि लोग बाग कुछ दिन दवाई खाते हैं फिर बंद कर देते, फिर अचानक ब्लड प्रेशर फिर शूट अप होता है, कोई आपको सिम्टम नहीं आता, दवाई अगर शुरू कर दी है तो बीपी देखना बहुत जरूरी है कि वो सेटल है या बढ़ गया है या कम हो गया है। हर साल तो आपको पूरा चेकअप करना चाहिए, मतलब हर महीने आपको बीपी दिखवाना चाहिए और दवाई अचानक नहीं बंद करनी चाहिए। दवाई बंद करना ही सबसे खतरनाक होता है।
1: डॉक्टर साहब, क्या मैसेज रहेगा आकाशवाणी के माध्यम से उन सभी श्रोताओं को जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं?
0: देखिए, अगर आप अपना ध्यान रखें, एक मैं और राय देना चाहता हूं कि एक CPR चीज होती है कि आपको किसी को घर में या आस पड़ोस में किसी को अरेस्ट हो जाता है तो एक आम आदमी को भी मसाज करना आना चाहिए, हार्ट का मसाज कर ले तो हार्ट रिकवर हो जाता है। हार्ट एक बार रिकवर हो जाए और आप हॉस्पिटल पहुंच जाए तो बचने के पूरे चांस होते हैं। परंतु अगर आपको हार्ट अटैक हुआ घर में और आप हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाए और आपके आस पड़ोस में किसी को कुछ आता ही नहीं कुछ बचाने के लिए, तो विदेशों में देखा गया है कि नॉर्मल पब्लिक को भी CPR करना आता है। तो हम लोगों को भी इस प्रक्रिया को सीखना चाहिए, समझना चाहिए और किसी भी तरीके से हार्ट के पेशेंट को हॉस्पिटल टाइम पे पहुंचाना चाहिए। और मेरी राय यही है कि आप अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, अपने दोस्तों का ध्यान रखिए, अपना तो अपना, अपने हार्ट का ध्यान रखिए तो इस बीमारी से आप बच सकते हैं।
1: ये आपने जो बाद में बताया CPR, तो इसको कैसे सीख सकते हैं, कहाँ से इसकी प्रशिक्षण हमारा श्रोता ले?
0: ज्यादातर हॉस्पिटल्स में पब्लिक के लिए भी CPR ट्रेनिंग के लिए प्रोग्राम्स हैं, बाकी नेट पे आजकल इतना अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, किसी डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। और इसको सीखना मेरे ख्याल से काफी मोर्टेलिटी को, जो कई बार हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते मर जाते हैं, उनको बचाया जा सकता है। और आप जितना मर्जी वीक हार्ट आप हॉस्पिटल एक बार एक टाइम पे पहुंच जाए तो उसको बचाया जा सकता है।
1: वर्ल्ड हार्ट डे पर हमने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करी डॉक्टर विजय गुप्ता से, और बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए।
0: थैंक यू।
1: अभी आप विश्व हृदय दिवस पर विशेष भेंटवार्ता सुन रहे थे। डॉक्टर विजय गुप्ता पूर्व प्रोफेसर एवं कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियक सर्जरी डॉक्टर RML अस्पताल नई दिल्ली और प्रोफेसर इन हेड CTVS राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नई दिल्ली से बात कर रही थी शालिनी मित्तल। श्रोताओं, हम आपको बता रहे हैं दिल के बारे में कुछ मजेदार तथ्य। औसत हृदय एक मुट्ठी के आकार का होता है। आपका दिल हर दिन लगभग 1,15,000 बार धड़कता है। आपका हृदय प्रतिदिन लगभग 2,000 गैलन रक्त पंप करता है। दिल शरीर से अलग हो जाने पर भी धड़कता रह सकता है। परी मक्खी, जो एक तरह की ततैया होती है, उसका दिल किसी भी जीवित प्राणी में सबसे छोटा माना जाता है। आपके दिल की धड़कन की आवाज दिल के वॉल्वों के खुलने और बंद होने के कारण होती है। टूटा हुआ दिल होना संभव है, इसे ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम कहा जाता है और इसका लक्षण दिल के दौरे के समान हो सकता है। अंतर यह है कि दिल का दौरा हृदय रोग से होता है और टूटा हुआ हृदय सिंड्रोम भावात्मक या शारीरिक तनाव की घटना से तनाव हार्मोन की भीड़ के कारण होता है। यदि आप अपनी रक्त वाहिका प्रणाली को फैलाते हैं तो ये 60,000 मील से अधिक तक फैल जाएगी। हंसना आपके लिए अच्छा है, ये तनाव को कम करता है और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है। आइए जानते हैं कैंसर के आयुर्वेदिक उपचार के विषय में। पिछले कई वर्षों से आयुर्वेद कैंसर अस्पताल के संचालक श्री अतुल सिंघल से।

पूरे विश्व में हार्ट अटैक के बाद सबसे ज्यादा मौतें आजकल कैंसर से हो रही हैं। ये सब देखते हुए हमने ये देखा आयुर्वेद से कैंसर का इलाज हो सकता है, इसमें कारगर इलाज है, इसलिए पंचगव्य और आयुर्वेदिक पद्धति से कैंसर के इलाज की तरफ हमने काम करना शुरू किया। आयुर्वेद में कैंसर का जो इलाज है वो न केवल सस्ता है बल्कि अच्छा भी है और बिल्कुल पीड़ा रहित है। देखिए, आयुर्वेद के अंदर कोई ऐसी जांच के विषय नहीं होते हैं। हमारे जो आयुर्वेदाचार्य हैं, जो जिनको आप वैद्यराज भी बोल सकते हैं, वैद्य हैं, वो नाड़ी देखकर या लक्षण देखकर बता देते हैं कि क्या बीमारी है। आजकल तो खासतौर से जब कोई मरीज आयुर्वेद में जाता है तो आमतौर पर टेस्ट कराकर जाता है, जिसके अंदर उसमें ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट भी होती है, सीटी स्कैन भी होता है, अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है, पेट स्कैन भी हो सकता है, और किसी के पास ये रिपोर्ट अगर नहीं है तो भी सिम्टम्स देख के पता चल जाता है कि भाई इस व्यक्ति को कर्क रोग है, अर्बुद रोग है, और उसका उस तरीके से उपचार शुरू किया जा सकता है। शरीर के अंदर कोई गांठ है जिसे गीठा भी बोल सकते हैं, कोई रसोली है, कोई जख्म है जो ठीक नहीं हो पा रहा, या लगातार कहीं से खून निकल रहा है शरीर के किसी अंग से, रक्षाव जिसको बोलते हैं, वो हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, लगातार वजन कम हो रहा है किसी का, या खाना निकलने में दिक्कत हो रही है, तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कैंसर का कारण हो सकते हैं। जब कोई मरीज आता है तो इन लक्षणों के आधार पर आयुर्वेदाचार्य उसका इलाज करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि पंचगव्य और आयुर्वेद से हम लोग इलाज करते हैं, सबसे पहले ये जानना भी जरूरी है कि पंचगव्य क्या है। देशी गाय उसके उत्पाद से पंचगव्य तैयार होता है, जिसमें गाय का दूध, दही, घी, गोमय और गो अर्क, ये पांच चीजों को एक अनुपात में मिलाया जाता है, ये पंचगव्य तैयार होता है। और पंचगव्य का जो महत्व है ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है और हमारी जो आयुर्वेद के ग्रंथ है उसके अंदर भी इनका उल्लेख है। मैं यहाँ पर उल्लेख ये भी करना चाहूंगा, महाभारत काल का श्री कृष्ण जी को जब स्तनपान कराया पूतना ने और उनके शरीर के अंदर विष फैल गया था पूतना का स्तनपान करने से, तो शास्त्रों में उल्लेख है कि श्री कृष्ण जी को माता यशोदा ने और गोपियों ने पंचगव्य से स्नान कराया और पंचगव्य का पान कराया और विष का प्रभाव जो है उनके शरीर में उससे खत्म हो गया। तो पंचगव्य के अंदर एक ऐसी अद्भुत शक्ति है, क्योंकि जो कर्क रोग है, जो कैंसर है, ये भी एक तरीके से जहर का काम करता है, जहर जैसे शरीर के अंदर आ गया तो पंचगव्य से वो विष और वो जो उसके अंदर जहर आपके शरीर के अंदर है उसको बाहर निकालने का काम करता है। इसके अलावा जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेदिक, जिसके अंदर योग प्राणायाम है, आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, जिसके अंदर आपका परहेज है, साथ में सत्संग है, हवन है, इन सब पद्धतियों का उपयोग समग्र चिकित्सा के अंदर किया जाता है। और आप फास्ट फूड आजकल खाते हैं, ये भी कैंसर का एक बड़ा कारण है। तो हम जीवन शैली जो बदलने पर जोर देते हैं कि कोई भी मरीज है वो अपनी जीवन शैली को बदले और जो भारतीय जीवन शैली है उसको अपनाए, सुबह जल्दी उठना, योग प्राणायाम करना, उसके बाद हवन करना, गाय के दूध का सेवन करना, तुलसा के पानी का सेवन करना और मौसमी सब्जियों का, मौसमी फलों का सेवन करना, तो ये सब चीजों को अगर आप अपनाएंगे तो कैंसर होगा ही नहीं, अगर है तो उसके उपचार में मदद मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून को विश्व योग दिवस, जिसको पूरा विश्व अपनाने लगा है, ये तो हमारी जीवन शैली का हिस्सा है। आप योग अगर करेंगे तो ये सब चीजें आवश्यक भी हैं और करनी चाहिए। इस बात के लिए हम लोगों को प्रेरित भी करते हैं कि आपकी दिनचर्या है वो आपको बदलनी है। इसके अलावा आपको हम लेप करने के लिए कहते हैं, लेप होता है शरीर के अंदर, जो लेप होता है उसके अंदर आयुर्वेदिक दवाइयों का और गोमय को मिलाकर एक लेप तैयार किया जाता है, जिस अंग पर आपके कैंसर है उस पर अगर आप लेप करेंगे तो वो एक तरीके से रेडिएशन का काम करता है। श्यामा तुलसा का पानी उबालकर आप सादे पानी की बजाय अगर लगातार श्यामा तुलसी का पानी पियेंगे तो उसको आप एक कीमोथेरेपी से उसकी तुलना कर सकते हैं। जब हम हवन करते हैं तो हवन सामग्री ऐसी तैयार की जाती है जिसके अंदर जड़ी बूटियां डालते हैं जो कैंसर रोगियों के लिए फायदेमंद है, और ये जड़ी बूटियां जो कीटाणु हैं वातावरण के अंदर, जो विषाणु हैं जो नुकसानदायक हैं, उनको खत्म करती हैं इनके धुएं से, और जो अच्छे कीटाणु हैं, जो लाभप्रद जीवाणु हैं, वो शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। और जो हमने गाय के उत्पाद बताए, गाय को भी जो खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं उसके अंदर अश्वगंधा, तुलसा, हल्दी, ऐसी चीजें उसके अंदर दी जाती हैं जो कैंसर रोगियों के लिए फायदेमंद है। हम किसी को इस प्रकार की गारंटी नहीं देते हैं आयुर्वेद में कि आप 100% ठीक हो जाएंगे, लेकिन इस बात की हम गारंटी अवश्य देते हैं कि आपका जो जीवन है वो सुगम बन जाएगा और आपका जो समय है एक जिंदगी का वो बढ़ जाएगा। साथ में इसमें एक चीज और मैं जो जोड़ना चाहूंगा, हल्दी की जब हमने बात की, हल्दी के अंदर करक्यूमिन नाम का एक तत्व होता है जो कैंसर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, कैंसर को रोकने के लिए भी और कैंसर रोगियों के लिए भी। उस हल्दी को आयुर्वेद ने एक रामबाण औषधि माना है, उसका इलाज करते हैं। अब जो ऑल इंडिया मेडिकल ने जो शोध किया है, एम्स ने जो शोध किया है, उसमें उन्होंने माना है कि हल्दी जो एक कारगर इलाज है, और पंचगव्य को भी ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ने इस बात को माना है कि पंचगव्य से भी इलाज में काफी कारगर है ये कैंसर।

0: के इलाज के अंदर आयुर्वेद के जो सूत्र हैं वो यही हैं कि आप तन मन को स्वस्थ रखें, अपने आचार विचार को ठीक रखें, नियमित जीवन शैली को अपनाएं। चीजें जो हैं वो आपको किसी भी बीमारी से दूर रखने के लिए काफी कामयाब है। केवल कैंसर नहीं और तमाम तरीके की बीमारियां आयुर्वेद की इस पद्धति से, इन चीजों के सेवन से या जीवन शैली को अपनाने से ठीक हो सकती हैं। जितने भी शोध हुए हैं उसमें सामने आया कि जो व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है किसी भी प्रकार से, वो बीड़ी सिगरेट या गुटखे के शक्ल में हो सकता है, उसको कैंसर अवश्य होता है। और चाहे 10 साल लगे, 15 साल लगे, या यूं कहें कि जो तंबाकू है वो कैंसर का एक सबसे बड़े कारणों में से एक है। खासतौर से जो मुंह का कैंसर है, मुंह का, गले का जो, या फेफड़ों का कैंसर होता है, वो बीड़ी सिगरेट पीने वालों को होता है या गुटखा खाने वालों को होता है। जो हमने खान पान और जीवन शैली की बात की, अगर उसको बदल देंगे, इन सब चीजों को छोड़ देंगे, तो निश्चित तौर पर आप कैंसर से बचे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आयुर्वेद से कैंसर का उपचार, अभी आप इस विषय पर जानकारी प्राप्त कर रहे थे श्री अतुल सिंघर से। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। श्रोताओं, हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है विश्व रेबीज दिवस, जिसका उद्देश्य रेबीज उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। जानवरों के काटने पर उपचार, आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता। हमारे विशेषज्ञ हैं डायरेक्टर एवं प्रोफेसर सामुदायिक चिकित्सा विभाग सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के डॉक्टर जुगल किशोर। आपसे बात कर रही हैं नीलू सूरी।
2: जब किसी इंसान को जानवर काटता है तो कहीं न कहीं शारीरिक घाव के साथ मानसिक घाव भी दे जाता है। शारीरिक घाव तो भर ही जाते हैं, लेकिन मानसिक घाव भरने में समय लग जाता है, और वो मानसिक घाव होते हैं डर और शंका के घाव। आज हम बात करेंगे कि भयानक बीमारी क्या हो सकती है अगर कोई जानवर इंसान को काट जाए। डॉक्टर साहब, पहले तो स्वागत करूंगी आपका।
3: धन्यवाद
2: डॉक्टर साहब। जानवरों की बात करें तो अगर सिटी में, जैसे दिल्ली जैसे शहर की बात करें, तो आपके अनुभव से कौन से ऐसे जानवर हैं जिनके काटने से हमें सचेत रहना चाहिए?
3: जो एनिमल बाइट है, या कहना चाहिए जानवरों के काटने में सबसे कॉमन जो बाइट है, वो हमारा डॉग बाइट है, या कुत्ते के काटने का बाइट सबसे ज्यादा है। कुत्ता और बिल्ली दोनों मिला लें तो 97% बाइट होते हैं। बाकी जो 2% होते हैं उसमें हमारे वाइल्ड एनिमल आते हैं, या फिर आप जंगल में गए तो वहां पर कुछ ऐसे जानवर हैं जिनके संपर्क में आए, उन्होंने काटा। जो हमारे घरों के अंदर होते हैं उसमें जैसे कि चूहा है, या बर्ड्स हैं, या फिर हम स्क्वायरल्स होते हैं, इन पे भी काफी रहता है। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि हमारे देश में बहुत तेजी से इसको नियंत्रण में करने के लिए जो गवर्नमेंट के और अदरवाइज बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं, और एक जो नेशनल प्रोग्राम है रेबीज का, वो चल रहा है, उसमें सभी को टीका लगता है, उसके हिसाब से हम कहेंगे कि काफी नियंत्रण में।
2: डॉक्टर साहब, आपने अभी एक चीज का जिक्र किया कि रेबीज हो सकता है और उससे अक्सर देखा गया कि मौत भी हो जाती है, तो कैसे ये पहचाने कि ये जो है हमारे लिए एक भयानक स्थिति बन सकती है आने वाले समय में, और क्या हम सचेत हो जाए कि नहीं अब तो डॉक्टर के पास आना जरूरी है? पहले मैं अगर प्राथमिक उपचार की बात करूं, फर्स्ट एड की बात, खून निकल रहा है तो कैसे करें, और छोटी चोट के लिए क्या किया?
3: इसमें WHO ने बड़ा क्लियरली क्लासिफिकेशन किया हुआ है कि अगर कोई भी जानवर जो वाइल्ड है उसके आप संपर्क में आते हैं तो वो एक तरह का खतरा बन जाता है आपका, और उसने आपको लीक किया, या हमारे जो सड़कों पे कुत्ते होते हैं अगर उसने कोई लिकिंग या स्क्रैच किया या बाइट किया तो उनका कैटेगरी किया है। इंटैक्ट जो स्किन होती है, हमारी जो स्किन है उस पर रेबीज के वायरस अगर लगे तो वो अंदर नहीं घुसते, उसके लिए स्क्रैच होना चाहिए, बाइट होना चाहिए। तो अगर वो सिर्फ लीक करता है तो हम कैटेगरी 1 कहते हैं, उस केस में भी हम उसका इलाज करेंगे। इलाज में ये आता है कि उसको अच्छे से धोना है ना, तो ये सबसे पहला काम है। और जो तीनों कैटेगरी है, तीन कैटेगरी इसमें डिवाइड की है, तो कैटेगरी 1 के अंदर भी उसको पानी से और साबुन से उस जगह को बहुत अच्छे से धोना है, उसके बाद में कुछ नहीं करना है अगर आपकी स्किन बिल्कुल ठीक है। अगर स्किन के अंदर, जैसे आपके मुंह के अंदर या आंख के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, अगर वहां पर उसका लीक हो जाता है तो डेफिनेटली वो कैटेगरी 2 हो जाता है, या कोई स्क्रैच हुआ है, सिंपल स्क्रैच हुआ है, तब भी वो कैटेगरी 2 हो जाता है। कैटेगरी 3 में वो आते हैं जिसमें खून निकलना शुरू हो जाए, या फिर वो बहुत ज्यादा डीप काट ले, उसको हम कैटेगरी 3 में डालते हैं। कैटेगरी 3 में वो भी लोग आते हैं जिनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, जैसे कि जिसको एड्स है, या कोई बहुत दिनों से कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवाएं चल रही है, तो कैटेगरी 2 वाले लोग भी उसके कैटेगरी 3 में बन जाते हैं, क्योंकि उसमें खतरा हमेशा बना रहता है। तो कैटेगरी 3 का जो इलाज है वो डिफरेंट है, कैटेगरी 1 का अलग है और कैटेगरी 2 का अलग।
2: इलाज सबके अलग है, अगर खरोंच हो जाए तो

0: या ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें जो कैटेगरी टू है, कैटेगरी वन का बताया कि आपको सिंपल वॉश करना है, पानी और साबुन से वॉश करना है। कैटेगरी टू और थ्री के अंदर भी आपको सबसे पहला जो काम करना है, घर पे ही काम करना है कि सभी लोगों को जब भी इस तरह का कोई बाइट हो तो आपको पानी और साबुन से उसको 15 मिनट तक धोना है। उसके बाद में फिर उसके ऊपर हम बीटाडीन या अल्कोहल लगाते हैं, या आप वोकाडीन है या आयोडीन का कोई वह है, वो एंटीसेप्टिक होता है जो एंटीवायरल भी होता है, उससे वायरस मर जाते हैं। और ये भी है कि अगर वो वुंड काफी बड़ा है तो हम कभी भी उसको क्लोज नहीं करते। तो ये उस कंडीशन में आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना है। कैटेगरी टू में और थ्री में कोशिश करते हैं कि कैटेगरी टू में हम रिच जो देते हैं वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में देते हैं, जितने भी हमारे वुंड्स होंगे उनमें हम रिच जरूर देंगे। उस रिच का मतलब है कि इम्यूनोग्लोबुलिन को हमें इनफिल्ट्रेट करना है, उसको वुंड के चारों तरफ डालना है। और अगर वो कम तादाद में और वुंड बहुत ज्यादा है तो उस कंडीशन में उसको डायल्यूट करके भी हम कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, सीरम की बात आपने कही, तो डॉक्टर साहब सीरम कितने समय में लग जाना चाहिए? इसके साथ एक प्रश्न मेरे और दिमाग में चल रहा है, डॉक्टर साहब टीटी कई लोग नहीं भी लगवाते और कई बार लगवाते, तो कितना जरूरी है टीटी का लगवाना?
0: ये दो प्रश्न है, हम दोनों अलग अलग ले लेते हैं। इसमें एक है कि रिग को हम कितना पहले लगाएं, जितना जल्दी हो सके उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास में ऑलरेडी एंटीबॉडीज है, फॉर्चुनेटली कई तरह की एंटीबॉडीज है, उसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी अब WHO ने अप्रूव कर दिए। जो गवर्नमेंट अप्रूव करता है वो हमारा ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन है या फिर इक्विन जो कि हमारा हॉर्स से बनता है। टेटनस का ऐसा है कि जब कभी भी कोई भी इंजरी होती है वहां पर हमारे चांसेस होते हैं कि टेटनस हो जाए, अगर वो वाइल्ड है या आपके वहां पर कोई रेत लग गया, मट्टी लग गई या कोई भी गंदी चीज लग गई तो आपको टेटनस के स्पोर वहां पर लग सकते हैं। अगर आपको ऑलरेडी टेटनस के इंजेक्शन हर 5 साल बाद लगते रहते हैं तो आपको ज्यादा चिंता की बात नहीं है, एक सिर्फ बूस्टर देने की जरूरत पड़ती है। और अगर पिछले आपके 3 साल के अंदर आपको ऑलरेडी वैक्सीन लग चुका है तो आपको वॉश करने की जरूरत है, नेक्स्ट आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको स्क्रैच होता है, माइल्ड आपको इंजरी होती है, जब तक कि वो ज्यादा इंजरी ना हो जिसमें कि मसल्स निकल आती है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, उस केस में आप बूस्टर लगा दें। और बूस्टर लगाने के बाद में फिर आप 5 साल के लिए फ्री हो जाते हैं, 5 साल के लिए आपको टेटनस टीटी नहीं लगनी चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, अगर पालतू जानवरों की बात करें और वो वैक्सीनेटेड है और अगर वो काट लेता है किसी को, तो क्या एंटी रैबिस वैक्सीन या सीरम की जरूरत है?
0: आपको बड़ा क्लियर कर दूं कि एनिमल बाइट में ये जो हमारा एक तो बर्ड का, स्क्वेरल का और रैट, इसमें अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं आया कि उससे रेबीज हुआ है, इसलिए रेबीज इस कंडीशन में आपको नहीं लगवाना है और आपको सिर्फ वॉश करना है और कुछ नहीं करना है, एंटीसेप्टिक कोई सोल्यूशन लगाइए, बस खत्म, अगर जब तक कि रैट वाइल्ड ना हो।
1: डॉक्टर, कई बार ब्लीड बहुत ज्यादा कर जाता है, प्राथमिक उपचार क्या रहेगा?
0: उस पर ब्लीडिंग कहीं से भी होती है तो हम जैसे फर्स्ट एड होता है, हम उसको प्रेशर प्वाइंट होते हैं, कम प्रेशर प्वाइंट से उसको दबाने की कोशिश करते हैं, जब वो हॉस्पिटल जाएगा तो उसको वॉश करके वो फिर कोशिश करेंगे कि ओपन सुचर बोलते हैं कि उसमें हम उसको बिल्कुल बंद नहीं करते बल्कि ब्लीडिंग्स को रोक के और फिर एक ओपन सुचर लगा देते हैं, क्योंकि रेबीज के अंदर हमें कभी भी मसल्स को या फिर स्किन को बिल्कुल टाइटली बाइंड नहीं करना चाहिए, इसलिए किसी भी तरह की बैंडेज, किसी भी तरह की पट्टियां उसमें अलाउड नहीं होती, उसको जितना ओपन रखा जाए उतना अच्छा है।
1: तो सब ये तो हुई पालतू जानवरों की बात, अक्सर देखा गया जो गली के कुत्ते अगर काट लेते हैं या कोई बिल्ली काट लेती है और उनके मुंह से भी पानी आ रहा होता है और कुछ इस तरह से उसकी हालत ऐसी होती है सीरियस, जैसे थोड़े दिन बाद वो मर भी जाता है, ऐसे केस में कितना सतर्क रहना चाहिए?
0: तो ये कि अगर कोई भी कुत्ता इस तरह से या कोई बिल्ली या कोई भी जानवर इस तरह से बिहेव करता है कि वो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, वो घबराया हुआ है, कोशिश करता अनप्रोवोक्ड बाइट करने की कोशिश करता है, तो हमें मान लेना चाहिए कि डेंजर है और उससे तो डेफिनेटली अवॉइड करना है हमें। अगर वो काट लेता है तो हम मान के चलते हैं कि रेबीज होगा, तो इसलिए हमें पोस्ट रेबीज वैक्सीनेशन जैसे बताया कैटेगरी 1, 2, 3 लगाना ही लगाना है। लेकिन जो घर के कुत्ते काटते हैं उसमें अगर उसने वैक्सीन लगवाया हुआ है तो ये देखा गया कि वैक्सीन लगे हुए कुत्तों के अंदर भी जो हमारे पालतू होते हैं उसमें भी चांसेस होते हैं हमारे कि उसको रेबीज हो सकता है, इसलिए हमारे को वैक्सीन लगवाना होता है। ये जरूर करना चाहिए कि उस कुत्ते को हम ऑब्जर्व करते हैं, हमारे घर में है या आसपास में तो हमें पता है, तो हम देखते हैं कि जिसमें भी कभी सिम्टम शुरू हो जाते हैं, जैसे आपने बताया कि राल गिल रही है या फिर वो पागल सा घूम रहा है, तो ये देखा गया कि विद इन 8 डेज दिस टाइप ऑफ डॉग, इस तरह के कुत्ते या बिल्ली मर जाते हैं। तो अगर हम उन्हें 10 दिन तक ऑब्जर्व करते हैं, 10 दिन तक अगर वो जीवित रहता है तो हमारे को चिंता की जरूरत नहीं है। जो हम वैक्सीन शुरू किया है उसको हम प्री एक्सपोजर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें क्या है कि पोस्ट एक्सपोजर में हमारे को इंट्रामस्कुलर 5 इंजेक्शन देने होते हैं, एक 0 डोज जो कि जिस दिन भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो 0 हो जाती है, फिर

0: सातवें दिन, फिर सातवें दिन, फिर चौदहवें दिन, फिर अट्ठाईसवें दिन, ये इंट्रामस्कुलर है। लेकिन पूरे इंडिया में अब गवर्नमेंट इंट्राडर्मल दे रही है। इंट्राडर्मल में डोज कम लगती है और आपको सुरक्षा अच्छी मिलती है, तो उसी डोज में काफी लोगों को कवर कर सकते हैं। तो इसमें इंट्राडर्मल हम फर्स्ट डे देते हैं, थर्ड डे देते हैं, सेवन्थ डे देते हैं।
1: डॉक्टर, खाने के लिए अक्सर बोला गया है कि अगर जब ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो कुछ मांस जैसी चीजें नहीं खानी चाहिए, अल्कोहल नहीं लें, इसमें कितनी सच्चाई और कितना जरूरी है?
0: आपने भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि हमें खाने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप बिल्कुल संतुलित आहार लीजिए, कोई स्पेशल चीज नहीं लीजिए। लेकिन जो मना है वो ये है कि आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज ना करें, अल्कोहल ना लें, बहुत किसी भी चीज का आपका ड्रग का सेवन कर रहे हो वो ना लें। ये भी दिखाया गया कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड अगर ले रहे हैं तो उसको उस वक्त ना लें। तो जो चीजें हमारे एंटीबॉडीज प्रोडक्शन को कम करेंगी हमें चाहिए कि नहीं करें, और संतुलित आहार ही लेना होता है, इसमें कोई स्पेशल आपको न्यूट्रिशन खाने की जरूरत नहीं है।
1: डॉक्टर, मेरे मन में जहन में बार बार प्रश्न आ रहा है कि कहां हम सतर्क रहें कि कुत्ता या बिल्ली या जानवर हमें काटे ही ना, क्या हम कभी कभी गलत हो जाते हैं?
0: बिल्कुल, जैसे पेड़ होता है उसकी तरह आप खड़े हो जाएं, बिल्कुल मूव ना करें। अगर आप कुत्ते की वजह से या बिल्ली की वजह से गिर गए तो भी ये रहे कि आप उठने की कोशिश ना करें, आप बिल्कुल गिरे रहें। आप ये ध्यान रहे कि कभी भी कुत्ता या बिल्ली जब वो सो रहा हो या खा रहा हो आप बिल्कुल उसको ना टच करें। ये बहुत ही खतरनाक होता है कि वो उसी वक्त में ज्यादा अपने आप को इरिटेट समझता है और वो अटैक करता है। जो हमारे अपने पालतू कुत्ते भी हैं उसमें भी छोटे बच्चे हैं, उनको बिल्कुल अनसुपरवाइज ना छोड़ें, कोशिश ना करें कि उस पर ज्यादा आप प्यार उमड़े, बिकॉज वो जानवर है। जानवर डेफिनेटली वो हमसे भी डरता है, उसी डर में ही वो अपने आप को कोशिश करता है कि बचाने की वजह से वो काट लेता है।
1: डॉक्टर साहब, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी थी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू, धन्यवाद।
2: जानवरों के काटने पर उपचार, अभी आप डॉक्टर जुगल किशोर, डायरेक्टर एवं प्रोफेसर, सामुदायिक चिकित्सा विभाग, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली से ली गई ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। आपसे बात कर रही थी नीलू सूरी। इसी के साथ हमारी आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब यही समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अंत ही विरासत की, नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, बलयाचल के आंचल से, विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से, हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अंत ही विरासत की, नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, बलयाचल के आंचल से, विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से, हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी।

सितंबर को टोल फ्री नंबर 1800-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम धरती आकाश।

0: नमस्कार, धरती आकाश के इस अंक में आप सबका स्वागत है।
1: साथियों, पर्यावरण में बदलाव आज केवल वैज्ञानिकों या पर्यावरण विशेषज्ञों की चिंता का ही विषय नहीं है, बल्कि इसका सीधा सीधा असर आम आदमी के जीवन पर भी दिखाई दे रहा है। बढ़ता तापमान, वायु जल प्रदूषण, अनियमित वर्षा, बाढ़, सूखा, जंगलों का कम होना, बदलती जीवन शैली, ये सभी हमारे स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, जल संसाधन और दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे समय में लोगों को जागरूक करने और सही जानकारी उपलब्ध कराने में मीडिया की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब जो सिटी है, जो शहर है और जो गांव है, कि उन दोनों जगहों पर अलग अलग असर होते हैं। इन सब का असर किस प्रकार होता है, मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए, बदलते पर्यावरण को सुधारने के लिए उसको हम किस प्रकार से अलग कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इसको अपने क्लाइमेट को अच्छी तरह से रख सकते हैं, बदलते पर्यावरण में हम अपने को किस प्रकार से सस्टेन कर सकते हैं, इन सब विषयों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ में है क्लाइमेट एंड बिल्ट एनवायरमेंट एक्सपर्ट मीताक्षी सिरसी जी। हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: मीताक्षी जी। सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि जो बदलते पर्यावरण है उसका आम आदमी के जीवन पर किस प्रकार का असर हो रहा है।
2: हमारे बदलते पर्यावरण का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है आम आदमी की जिंदगी में वो है कि क्लाइमेट चेंज का जो क्राइसिस है वो स्पेशली भारत में हीट और वाटर, पानी का बहुत ही इम्पैक्ट है। जो हीट जो हम बोल रहे हैं उसको हीट स्ट्रेस और हीट रिस्क बोलते हैं। तो क्लाइमेट चेंज से जो ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, तो हमारे टेम्परेचर जो तापमान जो है बढ़ रहे हैं एंड उसके वजह से ह्यूमन हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट होता है।
1: ह्यूमन हेल्थ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होने लगा है, तो किस प्रकार का इम्पैक्ट होने लगा है?
2: सो हीट के वजह से हमारे बॉडीज को बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट होती हैं। जो अगर हम हीट के टेम्परेचर्स, जो हमारे तापमान होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। जैसे हम बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर और दूसरा होता है वेट बल्ब टेम्परेचर। हमारी बॉडी में अपने आप को मैनेज करने की क्षमता है। तो अगर हम हॉट हो जाए तो हमारे पोर्स से पानी निकलता है और जो पानी है वो ड्राई होता है बिकॉज एयर है बाहर, और उससे हमारा बॉडी कूल होता है। जब हीट होता है एनवायरमेंट में और जब ज्यादा, जो मैं वेट बल्ब टेम्परेचर की बात कर रही थी, अगर वो होता है तो हमारे एयर में बहुत ज्यादा पानी होता है। जब पानी ज्यादा होता है तो हम, हमारी बॉडी की क्षमता जो है अपने आप को कूल करने की, वो कम हो जाती है और उससे हमारे ऑर्गन्स भी इफेक्ट हो सकते हैं। स्पेशली छोटे बच्चे जिनको कोई डिजीजेज या कोई प्रॉब्लम्स हो, और ओल्डर जेनरेशन जो है उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है जो ऑलरेडी जिनका रिस्क फैक्टर हो। और ऑल्सो ये भी है कि हमारे जनरल लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे भी इम्पैक्ट होती है।
1: जी मीताक्षी जी, जब भी हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, बदलते पर्यावरण की बात करते हैं, तो हम लोग हीट की बात करते हैं, और जब हीट की बात करते हैं तो हम शहर की ओर देखते हैं कि शहर में कुछ ज्यादा ही क्लाइमेट चेंज हो जाता है और उसका असर होता है। और जब हम शहर की जब बात करते हैं तो हमें दौड़ती भागती गाड़ियां नजर आती हैं ज्यादातर, और साथ साथ में कॉन्क्रीट के जंगल नजर आते हैं। आप इसमें भी एक्सपर्टाइज हैं और आपने बिल्डिंग क्लाइमेट चेंज के विषय में काफी स्टडी किया है, काफी अध्ययन किया है, तो ये आम जनजीवन यानी कि बिल्डिंग जो है किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज को प्रभावित करता है, ये बताएं।
2: सो बिल्डिंग्स का इम्पैक्ट जो है क्लाइमेट चेंज पे वो टू फोल्ड होता है। वो एक चीज है कि हम जब बिल्डिंग बनाते हैं उसका इम्पैक्ट होता है हमारे एनवायरमेंट पे, और बिल्डिंग्स बनते हैं लोगों के लिए, तो बिल्डिंग का इम्पैक्ट होता है लोगों पे, तो वो इसीलिए मैं उसको टू फोल्ड बोलती हूँ। हम जब बिल्डिंग बनाते हैं हम मटेरियल्स यूज करते हैं, हम जो जमीन है उस पे कॉन्क्रीट डालते हैं, वो इम्पैक्ट जो होता है अपने एनवायरमेंट पे वो है कि पानी सीप नहीं हो सकता है ग्राउंड के अंदर, या हम कॉन्क्रीट यूज करते हैं तो उसका कॉन्क्रीट बनाने में, सीमेंट बनाने में उसका कार्बन इम्पैक्ट होता है, या हम जो भी अपने बिल्डिंग्स में डालते हैं

0: उन सब चीजों का एक इम्पैक्ट होता है जो ओवरऑल वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग के टूवर्ड्स कॉन्ट्रीब्यूट करता है। दूसरी बात जो है, जो बिल्डिंग्स हमको हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स के लिए नहीं बनाई जाती, बिल्डिंग्स लोगों के लिए बनाई जाती,
1: इंसान के लिए
0: बनाई जाती है। तो इंसान को सपोर्ट करने की जरूरत होती है वो बिल्डिंग्स। तो वो जो एक चीज है वो हमें बहुत इम्पोर्टेंटली देखनी चाहिए कि हमारी बिल्डिंग्स हम जो बना रहे हैं वो कैसे इंसानों को सपोर्ट कर रहे हैं।
1: ये तो बात हुई मैम कि इंसानों को किस प्रकार से बिल्डिंग सपोर्ट करे, तो बिल्डिंग को किस प्रकार से हम एनवायरमेंट फ्रेंडली बना सकते हैं।
0: बिल्डिंग को हम एनवायरमेंटली फ्रेंडली ऐसे बनाएंगे कि जो हम बिल्डिंग एक जगह में डाल रहे हों, जो उसका पर्यावरण उसके अराउंड है और ओवरऑल वर्ल्ड पे जो इम्पैक्ट होता है उसको हम कैलकुलेट करके समझते हैं। और बहुत सारे ट्रेडिशनल विजडम भी है जिसके हिसाब से हम बिल्ड कर सकते हैं कि हमारा पानी, अगर बारिश पड़े तो हमारा पानी फ्लो ना हो जाए, हमारे वाटर टेबल के अंदर जाए, वो सोक करके वाटर टेबल के अंदर जाए कि हमें पानी का लॉस ना हो। हम अगर जितना ज्यादा सीमेंट वगैरह डालते हैं उससे हीट बढ़ता है, क्योंकि हीट उसको सीमेंट और सर्टन टाइप्स ऑफ मटेरियल्स जो होते हैं वो हीट को पकड़ के रखता है,
1: अब्सॉर्ब कर लेता है,
0: एंड उसको रिलीज करने पे जो हमारा नेचुरल साइकिल जो होते हैं कि दिन में हीट आता है और रात में हीट कम होता है। तो अब जब हमारे हीट वेव्स होते हैं तो जब दिन में हीट आता है वो हीट को अगर हमारी बिल्डिंग्स ने पकड़ के रखी हो और रात में जब टाइम है कूलिंग का टाइम है नेचुरल साइकिल में, अगर हमारे बिल्डिंग्स और हमारी सिटीज हीट निकाले बाहर, तो कंटिन्यूअस हीट के हिसाब से वो ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है। जो हमारी बिल्डिंग्स ना कूल हो तो हम भी कूल ना होंगे।
1: तो ये किस प्रकार से इम्पैक्ट हो सकता है, क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं अपने हेल्थ पे?
0: बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट होते हैं, बट मेनली हीट स्ट्रेस जो है हमारे सारे ऑर्गन्स को इम्पैक्ट करती है, हमारी थिंकिंग एबिलिटी को इम्पैक्ट करती है, हमारे काम करने की एबिलिटी को इम्पैक्ट करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर लोग ओपन एरिया में काम कर रहे हो तो हीट जब बहुत ज्यादा हो जाता है, ट्रीज ना हो, पास में कोई ग्रीन एरिया ना हो, तो और बहुत सारा कॉन्क्रीट हो, रोड हो, सब कुछ हो, तो वो हीट हमें डायरेक्टली बॉडी पे इम्पैक्ट करती है और हमें डिजीजेज या हमें इल कर सकती है हमें।
1: तो हम ये देखते हैं कि जैसे अभी आपने बात की कि जो शहर है, जो अर्बन एरिया है, वहां पर बिल्डिंग्स की मात्रा, यानी कि बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, एक दूसरे से सटे हुए बिल्डिंग्स हैं, तो वहां पर एनवायरमेंट का असर ज्यादा हो सकता है। जबकि क्या हम कह सकते हैं कि क्योंकि गांव में जो बिल्डिंग्स हैं या तो फिर नहीं है या कम है या छोटे हैं, तो वहां पर असर कुछ अलग ही हो सकता है?
0: जी हाँ, तो एक चीज ये है कि हमारे गांव और एरियाज में जहां पे ज्यादा बिल्डिंग्स नहीं बनी है, एक बात तो ये है कि ट्रेडिशनल हमारे जो बिल्डिंग मेथड्स थे वो बहुत कम यूज हो रहे हैं अभी। तो हमारे ट्रेडिशनल बिल्डिंग मटेरियल्स में जैसे वो बड़ा वॉल हो या कोर्टयार्ड हो या विंडो के शेड्स हो या बहुत सारे पेड़ पौधे हो, तो वो अभी कम हो रहे हैं। वो जब वैसे डिजाइन होते थे तो अपने बिल्डिंग को कूल रखते थे।
1: यानी कि हम पुराने दौर में अगर लौट के जाए तो हम ये कह सकते हैं कि पुराने दौर में जो मिट्टी की दीवारें होती थी और ऊपर जो खपरेल होते थे, अब वो कुछ बदलने लगा है जिसकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज भी बहुत हुआ है।
0: जी, एक तरफ से क्लाइमेट चेंज है जो हीट बढ़ा रही है और दूसरी तरफ से हम ऐसे मटेरियल्स से बिल्डिंग्स बना रहे हैं हमारे गांव में भी जो वो इम्पैक्ट को कम नहीं कर पा रही है। जैसे हम मिट्टी के घर बनाए या खपरेल के रूफ बनाए तो हम जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका इम्पैक्ट कम कर सकते हैं, बट वो हम बना नहीं रहे हैं। और हमारा जो सोसाइटी है जो चेंज हुआ है, अभी ऐसा नहीं है कि हम सिटीज के अंदर भी मिट्टी के घर बना सकेंगे, मिट्टी के तो 20 फ्लोर के बिल्डिंग्स नहीं बन सकते। तो हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि क्या है जो टेक्नोलॉजी, जो डिजाइन की बातें हैं जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं, पहले वो अडॉप्ट करके हम उसको सिटीज में हो या रूरल एरिया में हो यूज करें। क्योंकि अभी हमारे जो रिस्क है, जो हमारे फ्लड्स हो रहे हैं, हमारे बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हमारे आ रहे हैं जहाँ पे ग्लेशियर्स इम्पैक्ट हो जाए या कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए, वो इसीलिए हो रही है क्योंकि हमारे लैंड को बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं।
1: जी।
0: जब ट्रेडिशनल वेज में हम बिल्ड करें तो लैंड डिस्टर्ब नहीं होता है उतना।
1: जी, तो अक्सर शहरों में देखा जाता है कि हर घर में अब एसी लग गया है, एसी की वजह से हीट जनरेट होने लगा है और साथ साथ में एनवायरमेंट में जो चेंजेस आए हुए हैं, चाहे तो प्रदूषण की वजह से, यानी कि जल प्रदूषण की बात हो, चाहे तो वायु प्रदूषण की बात हो, चाहे तो मिट्टी प्रदूषण की बात ही क्यों ना हो, इससे काफी कुछ बदला हुआ है। तो इसको आप किस प्रकार से देखती हैं, इसमें इसको रिड्यूस करने के क्या उपाय हो सकते हैं?
0: हर घर में एसी इसीलिए लग रहे हैं आज क्योंकि हीट जो हमारी क्लाइमेट चेंज के हिसाब से बढ़ रही है, वो उसको हम 20 साल पहले बेयर कर सकते थे, अभी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बाहर का हीट और हमारा ह्यूमिडिटी, ये सब बहुत चेंजेस हो रहे हैं हमारे पर्यावरण में जो हमारे इमीडिएट कंट्रोल में नहीं है। दूसरी बात यह है कि एनर्जी जो

0: होती है बिल्डिंग्स में एसी वगैरह डालने के लिए, तो हमारा जो एनर्जी का डिमांड है इंडिया में, क्योंकि अभी इंडिया स्टिल बढ़ रहा है, अभी हम सिटीज बना रहे हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स और सिटीज बनाने की जरूरत भी है हमें, तो ये कहा जाता है कि जितने भी बिल्डिंग्स 2050 में रहेंगे इंडिया में वो तो अभी बने ही नहीं है। तो हम अगर सही दौर से शुरुआत करें बिल्डिंग्स बनाने में कि जो इम्पैक्ट सस्टेनेबल बिल्डिंग्स बनाएं और जो उनका क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट कम हो, तो हम हीट को कम ट्रैप करेंगे, तो हम ऐसे डिजाइन बनाएं कि बिल्डिंग को जरूरत ही कम हो एसी यूज करने की। तो हमारा अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि हम ऐसे बिल्डिंग्स बनाएं कि बिना एसी के भी वो कूल रह सके, जब एसी की जरूरत हो तो एनर्जी जो एसी यूज करता है वो कम यूज करे, क्योंकि हम जो एनर्जी बनाते हैं वो हमारे हीट जनरेट कहीं और भी करता है और कार्बन जनरेट कहीं और भी करता है जो इम्पैक्ट होता है उसका क्लाइमेट चेंज।
1: तो बिल्डिंग्स पे काफी ध्यान भी दे रहे हैं, हीट कम करने की कोशिश भी कर रहे हैं और इसका असर आगे चल करके हो सकता है, इसके विषय में लोग काफी जागरूक हो भी गए हैं। तो आजकल देखा जा रहा है कि लोगों को जागरूक करने के लिए एक मीडिया की एक बड़ी भूमिका होती है, और इसमें मीडिया की बड़ी भूमिका में हम किस प्रकार से लोगों को जागरूक कर सकते हैं?
0: जब इंजीनियर आर्किटेक्ट बिल्डिंग्स और सिटीज बनाते हैं तो ये एक कॉम्प्लेक्स साइंस है जो हम बहुत सालों के लिए पढ़ते हैं और समझ के उसको अप्लाई करते हैं,
1: क्योंकि वहाँ पर जो जरूरत है, जो सुविधाएं है, उसी के अनुसार कोई बिल्डिंग बनाता है या फिर जो सुविधाएं लेता है, तो उसके अनुसार तो हो नहीं सकता है हर चीज। अगर हम कहना चाहें कि सुविधा के अनुसार ही हम कर लें या फिर सुविधा की जगह पर जो भी हमें फैसिलिटी मिल रही है उस फैसिलिटी का हम उपयोग कर रहे हैं, तो पता चलता है कि क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं। क्या करना चाहिए?
0: सुविधा इम्पोर्टेंट है सबके लिए, बट हमें उसकी वजह से हमें एनवायरमेंट को इम्पैक्ट ना करे वैसे स्टेप्स हमको लेने चाहिए। तो पहली चीज तो है हमें अच्छे रेगुलेशंस बनाने चाहिए कि बिल्डिंग्स कैसे डिजाइन होने चाहिए, कि कूलिंग एक्शन प्लान्स होती है सिटीज की वो बनानी चाहिए सब सिटीज में, लोगों के जो चॉइसेस हैं उनको सिंपल चॉइसेस दे, कैसे वेंटिलेशन ज्यादा करना हो, कैसे हमारी बिल्डिंग्स को शेड करना हो, या हमारे रिफ्लेक्टिव पेंट्स होते हैं जो हीट को कम जाने देती है बिल्डिंग्स के अंदर, वो करना हो, वो ज्यादा एक्सपेंसिव या ऐसा कुछ नहीं होती है, वो करे तो हमारी एसी की भी यूज कम हो जाए तो इलेक्ट्रिसिटी भी कम यूज हो जाए।
1: मिताक्षी जी, यहाँ पर देखा गया है कि शहर में घर तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अगर एक दूसरे से ना जुड़े तो बिल्डिंग्स जो है दूर दूर बनेंगे तो लोगों को कॉस्ट भी ज्यादा हो जाता है, लेकिन जब यही बात अगर हम गांव में करते हैं तो गांव में बिल्डिंग्स या घर जो है दूर दूर बने हुए हैं, वहां पर मटेरियल्स कुछ अलग टाइप के यूज कर रहे हैं, वहां की एनवायरमेंट अच्छी है, वहां की मिट्टी अच्छी है, वहां का जो पानी है वो अच्छा है, लेकिन शहर में ऐसी सुविधा नहीं है, सब चाहते हैं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा जगह में अपनी बिल्डिंग्स बनाए, तो वहां पर वेंटिलेशन की जो सुविधा होनी चाहिए वो हो नहीं पाती है।
0: वेंटिलेशन जो है वो हमारे एयर मूवमेंट के लिए होती है, वो इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी को भी कूल करने के लिए, एयर को मूव कर रही है, पर्यावरण में अगर कोई प्रदूषण हो उसको निकाल सकती है। यस, हमारे सिटी में प्रदूषण हो तो हमारे घर के अंदर भी आएगी, तो इसीलिए हमारे विंडोज वगैरह बंद कर लेते हैं। तो वेंटिलेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे डिजाइन की।
1: हम देखते हैं कि घरों के बीच में, बिल्डिंग्स के बीच छोटी छोटी गलियां हैं जिसमें कि वेंटिलेशन यानी कि हवा का जो बहाव है, जो निकलना है या फिर आना है, वो नहीं हो पाता है।
0: अब मैं ऑनेस्टली बताऊं तो छोटी गलियां अच्छी होती है हीट में, हम डिजाइन अगर ऐसा करें कि तब बिल्डिंग्स अपने आप को शेड करती है, बट हमें छोटी गलियां अच्छी नहीं लगती क्योंकि हमें कार चलानी होती है। तो सिटीज को हमें ऐसे हिसाब से डिजाइन करना होता है, उसको जैसे हम अप्रोच करते हैं डिजाइन, वो ह्यूमन सेंट्रिक होनी चाहिए। अभी हमारे सिटीज कार सेंट्रिक हो गए हैं, हमें ह्यूमन सेंट्रिक सिटीज बनानी चाहिए, ह्यूमंस को सपोर्ट करने के लिए सिटीज बनानी चाहिए। एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जानी हो तो चलने के लिए जगह चाहिए, और चलना इम्पोर्टेंट है लोगों के हेल्थ के लिए। तो अगर हमारे पास चलने के लिए जगह नहीं हो और कार खरीदनी हो पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने के लिए, तो सब लोग तो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं बताती हूँ कि हमें ह्यूमन सेंट्रिक सिटीज के टूवर्ड्स जाना हो। बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और आइडियाज हैं जो साइंटिस्ट और थिंकर्स ने सोची है कि ऐसे सॉल्यूशंस आ सकते हैं, वो सॉल्यूशंस को हमको इम्प्लीमेंट करना होता है। उसमें हमें रूल्स की जरूरत होती है, लोगों की सपोर्ट की जरूरत होती है, सबको साथ में आके डिसाइड करना होता है कि हम हमारे पर्यावरण को बेटर बनाएंगे।
1: मिताक्षी जी, मीडिया इसमें किस प्रकार की भूमिका निभा सकते हैं, किस प्रकार का रोल अदा कर सकता है?
0: जो आम आदमी होते हैं उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो समझे कि क्या है जो सस्टेनेबल होता है, और जो हम चॉइसेस कर रहे हैं जो ना ही तो बहुत सस्टेनेबल हो। जो कम्युनिटीज हैं उनका होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सबको सपोर्ट करें, तो कूल सिटीज में कूल एरियाज करें, या हमारे लीडर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि समझे कि किस कम्युनिटीज को कूल एरियाज की जरूरत हो, किसको इम्पैक्ट होता है। हमारे रूल बनाने वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम समझे कि हमारे सिटीज में कैसे रूल्स होने चाहिए, बिल्डिंग के हिसाब से कितना ओपन

0: होना चाहिए, कितना ग्रीन स्पेस होना चाहिए। तो सबका एक डिफरेंट रोल होता है। साइंटिस्ट का ये रोल होता है कि समझे कैसे बेटर मटेरियल्स बनाए, एनवायरमेंटली फ्रेंडली, सर्कुलर इकोनॉमी बोलते हैं उसको, जो हम मटेरियल्स, जो रिसोर्सेस हमारे अर्थ में है उसको ना ज्यादा यूज करें, जितना की अवेलेबल है जो हमारे अर्थ को सस्टेन करेगा उतना ही यूज करें।
1: तो साथियों, मीडिया यदि सही जानकारी को सरल भाषा में जन जन तक पहुंचा दे तो पर्यावरण समस्याओं के साथ साथ उनके व्यवहारिक समाधान भी सामने रखे तो वो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रभावी जन जागरूकता का माध्यम बन सकता है। मिताक्षी जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने इतना कीमती वक्त दिया। आपने एक बिल्डिंग किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज को प्रभावित कर सकता है, हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होता है, इसके विषय में आपने बहुत सारी जानकारियां दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: इसी के साथ धरती आकाश का ये अंक यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
3: धरती आकाश, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

टीम की खिदमत में आदाब अर्ज है। ये आकाशवाणी है मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की पहली मजलिस का अब आगाज होता है। तमाम सुनने वालों का खैर मकदम।

वहीं नजर डालें आज की इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर। अब से थोड़ी ही देर के बाद सुबह का ही प्रोग्राम होगा। आज के प्रोग्राम में आप भजन सुन सकेंगे। 9:45 पर आज सवेरे प्रोग्राम होगा और खबरें 9:50 पर नशर होंगी। 10 बजे आप सुनेंगे अखबार जरी का प्रोग्राम शमे फरोजा। 10:05 पर हुस्ने गजल प्रोग्राम में सुनिएगा गैर फिल्मी गजलें। 10:30 पर आज आप सुनेंगे फिल्मसाज हिदायतकार और गुलकार हेमंत कुमार पर एक फीचर सुन जा दिल की दास्तां। 11 बजे मेरी पसंद प्रोग्राम होगा। 11:30 पर एक ड्रामा नशर होगा हार श्रृंगार के फूल। दिन में 12 बजे खबरें नशर की जाएंगी और 12:10 से आप सुन सकते हैं प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। दौरानी प्रोग्राम तारीख सास प्रोग्राम होगा। 1 बजे आलमी खबरें नशर होंगी और 1:15 पर आज की पहली मजलिस खत्म हो जाएगी। ये थी एक नजर इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस की नशरियात सुन रहे हैं। पेश खिदमत है प्रोग्राम सुबह का ही। आज के प्रोग्राम में सुनिए भजन।

0: सुबगाहिन प्रोग्राम के तहत अभी आप भजन सुन रहे थे। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। अब पेश है प्रोग्राम आज सवेरे।
1: And as you were mentioning about the history, what exactly has happened on 26th of September, so let's talk about the year 1580 when Francis Drake completed his circumnavigation of the world, sailing into Plymouth, England, aboard the Golden Hind.
2: And if we talk about the year 1872, then New York City was made on the same day, the first temple was made on the same day. 1960 में अमेरिका में राष्ट्रपति पद के दो उम्मीदवारों जॉन एफ कैनेडी और रिचर्ड निक्सन के बीच बहस का पहली बार टेलीविजन पर प्रसारण भी आज ही की तारीख को हुआ था। 1984 की अगर हम बात करें तन्वी, तो यूनाइटेड किंगडम हांगकांग को चीन के हवाले करने के लिए सहमत भी आज ही की तारीख को हुआ था। 2009 में पूजा श्री वेंकटेश ने रश्मि चक्रवर्ती को हराकर ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट का खिताब भी आज ही के दिन अपने नाम किया था। और इसके दो बरस बाद यानी कि 2011 में दिल्ली मेट्रो दुनिया का पहला ऐसा रेलवे नेटवर्क बना जिसे संयुक्त राष्ट्र ने ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाने के लिए कार्बन क्रेडिट दिया था। और अब समय है कुछ विशेष महानुभावों की पुण्यतिथियों, जयंतियों और जन्मदिन के बारे में बात करने का। तो इस कड़ी में सबसे पहले हम जिक्र करते हैं लक्ष्मण काशीनाथ किर्लोस्कर के बारे में। आज इनकी पुण्यतिथि है। ये भारत के प्रसिद्ध उद्योगपतियों में से एक रहे। किर्लोस्कर उद्योग समूह के वे संस्थापक थे। वे विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इंस्टीट्यूट मुंबई में अध्यापक के रूप में भी उन्होंने काम किया। लक्ष्मण काशीनाथ किर्लोस्कर जी ने एक साइकिल की दुकान से अपने व्यवसायिक जीवन की शुरुआत की और जीवन पर्यंत इतनी विशेष सफलताएं उन्होंने हासिल की। अब हम बात करते हैं टीवी कुन्हा के बारे में। जी हाँ, आज उनकी भी पुण्यतिथि है। वे गोवा के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। ये व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर करके गोवा को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। डॉक्टर टीबी कुन्हा जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपार कष्ट सहकर गोवा को वर्ष 1961 में स्वतंत्रता दिलाई। 1953 में भारत वापस आने के बाद टीबी कुन्हा ने मुंबई में गोवा एक्शन कमेटी का भी गठन किया था। आज ही के दिन पुण्यतिथि है हिंदी फिल्म जगत के महान पार्श्व गायक और संगीतकार हेमंत कुमार मुखोपाध्याय की। वे हेमंत दा के नाम से भी प्रसिद्ध हुए, जिनके गीत आज भी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। बांग्ला और हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने बेहतरीन फिल्मों का निर्देशन भी किया। अगर हम बात करें तभी उनकी मुख्य फिल्मों के बारे में जिन्होंने उनमें संगीत का निर्देशन किया, तो उनके नाम हैं अनारकली, नागिन, प्यासा, गंगा जमुना, फरार, बात एक रात की, कोहरा, झनक झनक पायलबाजी, 20 साल बाद, साहब बीबी और गुलाम आदि।

आज जयंती है विख्यात भारतीय अभिनेता निर्माता निर्देशक देवानंद की। उनका पूरा नाम धर्मदेव आनंद था। वे देव साहब के नाम से भी विख्यात रहे। भारतीय सिनेमा में दो पीढ़ियों तक लगातार हीरो बने रहने वाले कलाकार के विषय में यदि हम विचार करें तो केवल एक ही नाम उभरता है।

उनकी जिंदगी को अच्छी तरह से परिभाषित करने के लिए काफी है। देवानंद का नाम हिंदी सिने जगत में स्टाइल गुरु बनकर जगमगाता है। सदाबहार अभिनेता देवानंद को लोग एवरग्रीन देव साहब कहकर भी पुकारते थे। देवानंद पर फिल्माए गए ये कुछ और गाने आपके समक्ष अब पेश हैं।

0: सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद शहजाद से खबरें सुनिए। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में शहरों और गांवों के दरमियान फर्क में पिछले 12 साल के दौरान खातिरख्वाह कमी आई है। उत्तर प्रदेश के बहुत से जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके सबब अलर्ट जारी किए जाने के बाद कई जिलों में स्कूल बंद रखे गए हैं। भारत ने खलीज बुलेरे अहमर और बुलेरे अस्वद में तजारती जहाजों और जहाजियों पर बार बार हमले किए जाने पर तश्वीश जाहिर की है। सावन बरवाल ने जापान में एशियन गेम्स में मर्दों के मैराथन मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल किया है और डी कुकेश ने समरकंद में फिगर शतरंज ओलंपियाड के 9वें राउंड में भारत को जर्मनी पर जीत दिलाई। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 साल के दौरान भारत में शहरों और गांवों के दरमियान फर्क में खातिरख्वाह कमी आई है। उन्होंने गांवों के बुनियादी ढांचे में काबिले जिक्र बेहतरी को उजागर किया और कहा कि मुल्क भर की खवातीन भी लगातार खुद इन्हिसार और इकतसादी तौर पर बाख्तियार बन रही हैं। जनाब मोदी ने यह रायजनी सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल वसीले से बात करते हुए की। ये यात्री सेवा संकल्प अभियान के तहत वाराणसी से वडनगर जा रहे थे। उन्होंने समाजी खिदमत, समाजी इस्लाह और मुस्बत तब्दीली को उजागर किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत को हकीकी शक्ल उसी वक्त दी जा सकती है जब इसमें हर एक का ताउन और शिरकत हो। जनाब मोदी ने खास तौर पर कहा कि वडनगर ने उन्हें ऐसी अकदार अता की है जिनसे उनकी जिंदगी को एक शक्ल मिली, जबकि काशी ने उन अकदार को मुख्तलिफ किस्म की खिदमात के बेशुमार रंग अता किए। उन्होंने खुशी का इजहार किया कि नौजवान इन खिदमात से इस सफर को और ज्यादा अहम बना रहे हैं। यात्रियों ने इस बातचीत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म से अपने तजुर्बात का इजहार किया। जनाब मोदी ने यात्रियों से जोर देकर कहा कि वो एक डायरी रखें और इसमें यात्रा के अपने तजुर्बात लिखें। उत्तर प्रदेश में मुसलसल जारी शदीद बारिश के सबब कई अजला में मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम हो गए हैं। शदीद बारिश के अलर्ट की वजह से कई अजला में 12वीं जमात तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। रियासत की राजधानी लखनऊ समेत कई अजला में तूफान की सूरत हाल के पेश नजर गुज़िश्ता 24 घंटे से शदीद बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आमदोरफ्त में रखना पड़ा है। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में कई हादसे भी रूनुमा हुए हैं। रियासत के राहत रसानी के काम से मुतालिक कमिश्नर डॉ ऋषिकेश भास्कर यशोद ने मौसमी सूरत हाल और उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ अजला के जिला मजिस्ट्रेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। भारतीय महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक इसी तरह की मौसमी सूरत हाल आज और कल भी रहेगी। मशरकी उत्तर प्रदेश के लिए गरज चमक और तेज हवाओं के साथ शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। मगरबी उत्तर प्रदेश में भी 27 सितंबर तक गरज चमक के साथ शदीद बारिश के इम्कान जाहिर किए गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने गुज़िश्ता 2 दिन से जारी बारिश की वजह से रियासत में आज सभी स्कूल बंद करने का ऐलान किया है। शदीद बारिश के सबब इंद्रावती महानदी और शिवनाथ समेत कई दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हुआ है। कई शहरों और कस्बों के नसीबी इलाकों में पानी भर गया है। वज़ीर आला विष्णुदेव साय ने सैलाब और पानी भरने की सूरत हाल के तनाजुर में बचाव व राहत रसानी की कार्रवाइयां अंजाम देने के लिए जिला कलेक्टरों को चौकसी बरतने की हिदायत जारी की है। उत्तराखंड में आज और कल मुतअद्दिद मुकामात पर शदीद से मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने लोगों और सयाहों से इस दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की अपील की है। अलबत्ता चारधाम यात्रा फिलहाल जारी है। शिमाली छत्तीसगढ़ और मुल्का इलाकों में मौजूद हवा के कम दबाव के निजाम बदस्तूर ओडिशा के मौसम को मुतासिर कर रहा है, जिसकी वजह से रियासत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है। बैतरणी और जलाका दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे नशेबी इलाकों में पानी भर गया है और शिमाली ओडिशा में सैलाब का खदशा पैदा हो गया है। मिट्टी के तोदे गिरने और पानी जमा होने के सबब सड़कों पर आमदोरफ्त मुतासिर हुई है, जबकि एहतियात के तौर पर

0: भद्रक जिले के 7 ब्लॉकों में 399 स्कूलों समेत कटक, मलकानगिरी, मुबरंगपुर और रोमापाड़ा के स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर ने खलीज बहर अहमर और बहर अस्वद में तजारती जहाजों और जहाजियों पर बार बार किए गए हमलों पर तशवीश जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हमलों को अब मजीद नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डॉक्टर जयशंकर न्यूयॉर्क में अकवामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 81वें इजलास के दौरान जहाजरानी और जहाजियों की हिफाजत और सलामती पर दोस्तों के ग्रुप की पहली मीटिंग से खिताब कर रहे थे। उन्होंने इस सिलसिले में मजीद तवज्जो हासिल करने के लिए भारत और लाइबेरिया दोनों की तरफ से किए जाने वाले नए इकदाम का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारत जहाजियों का एक बड़ा वसीला है और लाइबेरिया जहाजरानी की दुनिया की सबसे बड़ी रजिस्ट्री है। ये दोनों मुल्क समंदर में हिफाजत और सलामती को मुस्तहकम बनाने के मकसद से यकजहत हुए हैं। इस कदम का मकसद समंदर में मजीद हिफाजत के लिए एक मुशावरती फ्रेमवर्क कायम करना और इस बात को यकीनी बनाना है कि इस शोबे के तहत किए जाने वाले मुजाकरात में अहम फरीकैन की और ज्यादा अहमियत है। उन्होंने खलीज अमान में एंटीगुआ और बरबुदा के परचमबरदार एक बड़े जहाज एमवी कैप गांव पर हालिया हमले की तरफ इशारा किया, जिससे एक भारतीय जहाजी की मौत हो गई थी। जनाब जयशंकर ने पनामा के परचमबरदार तेल टैंकर गाया का भी जिक्र किया, जिस पर आबनाए हुर्मुज में हमला किया गया था, जिसके नतीजे में भारतीय जहाज के हमले का एक रुकन लापता बताया गया था। वजीर खारजा एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में अकवामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली की 81वीं आला इजलास से खिताब करेंगे। ये इजलास एतमाद की बहाली, तब्दीली के अमल का मौसर इंतजाम, एक ऐसी अकवामे मुत्तहिदा जो सबके लिए मौसर खिदमत अंजाम दे के मौजू के तहत मुनाकिद किया जा रहा है। यूएन जनरल असेंबली अपने सभी 193 मेंबर ममालिक के सदूर, वज़ीरे आज़म और आला नुमाइंदों को यकजा होने का मौका फराहम करता है, जो अहम बैन अल-अक़वामी मामलात पे अपनी तरजीहात और मौकफ पेश करते हैं। अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के आला सतही हफ्ते के दौरान आलमी तनाज़ात, तरक्की, आबोहवा की तब्दीली, इंसानों को दरपेश चैलेंजेस और दीगर अहम बैन अल-अक़वामी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। भारतीय मैराथन रनर सावन बरवाल ने एशियन गेम्स 2026 में मर्दों के मैराथन मुकाबले में चांदी का तमगा जीतकर तारीख रकम कर दी है। उन्होंने इस खेल में पोडियम फिनिश के भारत के 44 साल तवील इंतजार को खत्म किया। बरवाल ने 2 घंटे 11 मिनट 37 सेकंड का वक्त लेकर न सिर्फ जाती बेहतरीन स्कोर दर्ज किया, बल्कि मर्दों के मैराथन फाइनल में एक कौमी रिकॉर्ड भी बनाया। वो जापान के यामाशिता से पीछे रहे, जिन्होंने ये दौड़ जीतकर सोने का तमगा हासिल किया। फिडे शतरंज ओलंपियाड में दिफाई आलमी क्लासिकल शतरंज चैंपियन नीकुकेश ने फैसला कुन जीत हासिल करते हुए भारत को मर्दों के ओपन जुम्बे के 9वें राउंड में गुज्तर मुश्तक सहरे फेरिस्त टीम जर्मनी के खिलाफ 2.5 और 1.5 से कामयाबी दिलाई। इस जीत के साथ भारत पॉइंट टेबल में दूसरे मकाम पर पहुंच गया है। इस कामयाबी के साथ भारत एक बार फिर खिताब की दौड़ में शामिल हो गया है। इस अहम मुकाबले में आर प्रगनंदा, अर्जुन एरिगेसी और निहाल सरीन को इब्तदाई टीम बोर्ड पर बराबरी पर इतफा करना पड़ा था। इसके बाद गुकेश ने जर्मनी के खिलाफ वाहिद जीत दिलाई। खवातीन के जुमरे में बी सविता श्री की मुसलसल 7वीं मरतबा जीत का सिलसिला उज्बेकिस्तान की करीमोवा गुडोना के खिलाफ ड्रा के साथ खत्म हो गया। तमाम वो भी काबिले शिकस्त हैं। सरे फहरिस्त उज्बे खिलाड़ी अफरोजा खरमदामोवा ने कुनेरू हेम्पी को ड्रा पर रोक दिया, जबकि खवातीन आलमी कप की चैंपियन दिव्या देशमुख और अवंतिका अग्रवाल ने अपने अपने मुकाबले जीतकर भारत को 1-3 से जीत दिलाई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज चीनागोया में एशियाई खेलों में मर्दों के 10,000 मीटर दौड़ के मुकाबले में गुरवीर सिंह के चांदी के तमगा जीतने पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि गुरवीर सिंह ने इससे कबल कांसे का तमगा जीतने के बाद एक बार फिर मुल्क को फख्र का एहसास दिलाया। वज़ीर-ए-आज़म ने एशियाई खेलों 2026 में शॉटपुट में कांस्य का तमगा जीतने पर मनप्रीत कौर को भी मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने बारानिका एलांगोवन को अपने पहले ही एशियाई खेलों में खवातीन के पोल वाल्ट में कांस्य का तमगा जीतने पर मुबारकबाद पेश की और उनकी छलांग को खसूसी करार देते हुए इस तमगे को भारत के लिए मुनफरिद करार दिया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में शहरों और गांवों के दरमियान फर्क में पिछले 12 साल के दौरान खातिर ख्वाह कमी आई है। उत्तर प्रदेश के बहुत से जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके सबब अलर्ट जारी किए जाने के बाद कई जिलों में स्कूल बंद रखे गए हैं। भारत में खलीज मुगीरह अहमर और मुगीरह अस्वत में तिजारती जहाजों और जहाजियों पर बार बार हमले किए जाने के पर तस्वीर जाहिर की है। सावन बरवाल ने जापान में एशियन गेम्स में मर्दों के मैराथन मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल किया है और कुकेश ने समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 90 राउंड में भारत को जर्मनी पर जीत दिलाई। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री देश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। पेश है अखबार ज़री का प्रोग्राम शम्मे फरोजा।
2: इस दुनिया में रहकर इंसान बहुत से आमाल इख्तियार करता है, जिनमें से कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे। अच्छे आमाल जिनको इंसानी समाज और मुआशरा अच्छा समझता है, मसलन किसी के साथ भलाई करना, हमदर्दी करना, कमजोरों बेसहाराओं और ज़ईफों की मदद करना, सच बोलना, हर काम ईमानदारी से करना, बड़ों का अदब करना वगैरह। बुरे आमाल जिनको इंसानी समाज और मुआशरा मज़मूम समझता है, मसलन किसी के साथ बदसलूकी करना, रिश्तेदारों से कता ताल्लुक करना और किसी के साथ बदजुबानी करना वगैरह। इन्हीं बुरे आमाल में से एक अमल दिल आज़ारी है। दिल आज़ारी किसी का दिल दुखाने और किसी को दिली तकलीफ देने को कहते हैं। एक शरीफ और महज़ब इंसान के लिए दिल आज़ारी से इज्तिनाब ज़रूरी है। इंसान उंसियत और मोहब्बत से बना है, जबकि दिल आज़ारी उंसियत और मोहब्बत के लिए मानिंदे जहर है। इसलिए इंसानी फितरत का तकाजा ये है कि इंसान दिल आज़ारी से इज्तिनाब करे। दुनिया का हर दीन और मज़हब दिल आज़ारी को बुरा समझता है और अपने मानने वालों को दिल आज़ारी से इज्तिनाब की तलकीन करता है। दिल आज़ारी ज़बान से भी की जा सकती है, मसलन किसी को सख्त सुस्त कहना, पीठ पीछे किसी की बुराई करना, किसी पर बोहतान बांधना, ज़बान से किसी की नकल उतारना। ज़बान के अलावा जिस्म के दीगर आज़ा के ज़रिए भी किसी की दिल आज़ारी की जा सकती है, मसलन किसी के साथ मारपीट करना, किसी को सताना, परेशान करना, किसी माज़ूर शख्स की ऐसी नकल उतारना जिससे उसे तकलीफ हो। जिस तरह दिल आज़ारी के कई तरीके हैं, इसी तरह जिन लोगों की दिल आज़ारी की जाए और जिनको दिली तकलीफ दी जाए उनकी भी कई किस्में हैं। मसलन वालदेन की दिल आज़ारी, असातिज़ा की दिल आज़ारी, आइज़ा अक्रबा दोस्त अहबाब और पड़ोसियों की दिल आज़ारी, मातहतों की दिल आज़ारी और ज़रूरतमंदों की दिल आज़ारी। इस दुनिया में वालदेन हमारे सबसे बड़े मोहसिन हैं। उन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, हमें इस काबिल बनाया कि हम मुआशरे और समाज में बाइज्जत ज़िंदगी गुजार सकें। लिहाजा हमें चाहिए कि हम वालदेन की इज्जत करें, उनकी दिल आज़ारी से इज्तिनाब करें। वालदेन की दिल आज़ारी की बहुत सी सूरतें हो सकती हैं, मसलन वालदेन की इजाज़त और मशवरे के बगैर तमाम काम अंजाम देना, बुढ़ापे में उनकी खिदमत न करना, उनके साथ ऐसा बर्ताव करना कि गोया हमारी जिंदगी में उनकी कोई ज़रूरत नहीं है या गोया हमारे लिए वो एक बोझ हैं। उनके साथ बदसलूकी और बदजबानी से पेश आना। हम अपनी जिंदगी में जो कुछ सीखते हैं वो अपने असातिज़ा से सीखते हैं। असातिज़ा हमें जहालत की तारीकी से निकाल कर इल्म की रोशनी में ला खड़ा करते हैं, हमें जीने का सलीका और तहजीब सिखाते हैं। हमें चाहिए कि हम असातिज़ा की दिल आज़ारी से इज्तिनाब करें, कोई ऐसा काम न करें जिससे असातिज़ा की शान में गुस्ताखी हो और जिसके नतीजे में हम इल्म से महरूम हो जाएं। दुनिया के तमाम इंसान एक दूसरे से किसी न किसी ताल्लुक की बिना पर जुड़े हुए हैं। किसी के साथ ताल्लुक की बुनियाद रिश्तेदारी होती

इस गजल के साथ ही आज का हुस्ने गजल प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। समीन आज फिल्म साज हिदायतकार और गुलकार हेमंत दा की यौम वफात है और इसी मौके की मुनासिबत से हम आपको सुनवा रहे हैं उन पर एक फीचर सुन जा दिल की दास्तां। तहरीर जनाब इदरीस अहमद खान की है और पेशकश अली मोहतशिम रजा की है।

40 से लेकर 60 की दहाई तक के अरसे को हिंदी के फिल्मी गानों का गोल्डन दौर माना जाता है। मौसीकार हेमंत कुमार ने फिल्मी नगमों के इस गोल्डन दौर को यादगार बनाने में कई दूसरे मौसीकारों के हमरा एक अहम किरदार अदा किया था।

हेमंत कुमार को बचपन से ही कई तरह के शौक थे। उनको मौसीकी से गहरा शगफ था। सन 1933 में जब उनकी उम्र बमुश्किल तमाम 13 बरस होगी, उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो से अपना पहला गाना रिकॉर्ड कराया। दूसरी जानिब हेमंत कुमार को पढ़ने लिखने का भी काफी शौक था। उस जमाने में बंगाल में शायर अदीब अवाम की आंख के तारे हुआ करते थे। नतीजे में हर नौजवान के दिल में ये ख्वाहिश छुपी होती थी कि उसे एक मुसन्निफ बनना है। चुनांचे हेमंत कुमार ने सबसे पहले कहानियां लिखने से शुरुआत की और उनकी एक कहानी एक अहम बंगाली रिसाले में शाई हुई। लेकिन काफी पसोपेश के बाद हेमंत कुमार को इस बात का एहसास हुआ कि उनकी पहली मोहब्बत कुछ और नहीं मौसीकी है।

रविंद्र संगीत सीखने के लिए हेमंत अन्नादी दोस्तीदार के शागिर्द बने, लेकिन सबसे अहम बात यह हुई कि हेमंत कुमार को उस्ताद फैयाज खान जैसे अजीम मौसीकार से इस्तफादे का भी मौका हासिल हुआ। हालांकि बदकिस्मती से ये साथ बहुत दिन तक नहीं चला, क्योंकि सन 1950 में ही उस्ताद फैयाज खान अपने शागिर्द की तालीम अधूरी छोड़कर चल बसे।

एक फिल्मी गुलकार के तौर पर हेमंत कुमार के करियर की शुरुआत सन 1941 में निमाई सन्यासी नाम की फिल्म से हुई और फिर उन्होंने यके बाद दीगरे कई फिल्मों के लिए गाने गाए। एक तरह से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि हेमंत कुमार के शुरू के काम ने उन्हें एक ऐसी मजबूत फिल्मी बुनियाद फराहम की जो हर किसी को आसानी से नहीं मिलती।

हेमंत कुमार के दिल में हमेशा से एक वसी कैनवस पर काम करने की ख्वाहिश मौजूद थी और वो चाहते थे कि उनको हिंदी फिल्मों के लिए गाने का मौका मिले। उनका ये इरादा 1944 में आई फिल्म राजा के जरिए पूरा हुआ, जिसके मौसीकार पंडित अमन

लेकिन हेमंत कुमार का असली इरादा फिल्म इरादा से पूरा नहीं हुआ, क्योंकि उनका इरादा तो म्यूजिक डायरेक्टर बनने का था, ताकि वो अपनी बनाई धुनें पूरे मुल्क में मकबूल होते देख सकें। और ये मौका उनको सन 1947 में पहली बार बंगाली फिल्म अभियात्री के जरिए से मिला। वैसे सन 1947 तक हेमंत कुमार के काम ने कई संगे मील तय किए, लेकिन जिसे असल तजारती कामयाबी कहते हैं वो न जाने क्यों उनके हाथ नहीं लग रही थी।

याद रखने की बात यह है कि हेमंत कुमार की मौसीकी के इर्तका का दौर बरतानवी राज की टूटी सांसों का भी दौर था। सियासी इंतशार अपने नुक्ते उरूज पर था। ऐसे माहौल में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के काम में हर फनकार और हर हस्ताफ इंसान हत्तल इम्कान ताउन देने के लिए कमर बस्ता था। हेमंत कुमार ने आजादी की जद्दोजहद में हाथ बटाने के लिए इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा से अपने आप को वापस

सहील चौधरी और हेमंत कुमार का वो साथ जो यहाँ से शुरू हुआ था उसने बाद के दौर में कई शाहकार नगमों को जन्म दिया जो आज भी सुनने वालों को माजी के उस हसीन दौर में वापस ले जाते हैं।

उसी दौर में हेमंत कुमार ने हेमंत गुप्ता नाम के एक हिदायतकार के साथ काम करना शुरू किया और दोनों का ये साथ एक लंबे ताबून की बुनियाद साबित हुआ। कुछ ही दिनों के बाद यानी 1951 के आसपास हिंदी फिल्मों में किस्मत आजमाई के लिए हेमंत गुप्ता बम्बई चले गए, जो आजादी के बाद फिल्मों के सबसे बड़े मरकज का रूप लेती जा रही थी। मुंबई में जैसे ही हेमंत गुप्ता ने अपनी पहली हिंदी फिल्म पर काम शुरू किया, उनको सबसे पहले हेमंत कुमार का ख्याल आया और उन्होंने हेमंत कुमार को मुंबई बुलवा लिया। हेमंत गुप्ता की पहली फिल्म फिल्मिस्तान के लिए बनाई गई फिल्म आनंद मठ थी। हालांकि फिल्म ज्यादा बिजनेस नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी हेमंत गुप्ता और हेमंत कुमार ने मिलकर

हेमंत कुमार अपना काम बहुत दिल जमाई और मेहनत से करते थे, लेकिन न जाने क्यों कोई बड़ी कामयाबी उनके हाथ नहीं आ रही थी। आखिरकार सन 1952 में वो मौका कुछ यूं आया कि फिल्म जाल के गाने के लिए एक दिन एस डी बर्मन ने साहिल लुधियानवी से एक धुन पर गीत लिखने को कहा। साहिल लुधियानवी के करीबी दोस्त जानिसार अख्तर ने फिल्म जाल के इस वाकये के बारे में बात करते हुए एक दिलचस्प वाकया सुनाया था। उन्होंने बताया था कि एस डी बर्मन ने कहा था, ए साहिल इसे सुनो तुम ध्यान से और इसे कुछ गुनगुनाया। साहिल ने उसी को बड़ी खूबसूरती से मुखड़ा बना दिया जो कुछ यूं था, सुन जा दिल की दास्तां। मुखड़ा सुनकर एस डी बर्मन जोश में आ गए और सांस के साथ वहीं गाने लगे। इसी शोर शराबे में साहिल लुधियानवी ने पूरा गीत लिख डाला। एस डी बर्मन ने कहा, हेमंत अब तुम इसे गाओ। और इस तरह से एक ऐसा शाहकार गीत तख्लीक हुआ जिसने कई जिंदगियां बदल दी।

इस गीत की कामयाबी ने हेमंत कुमार को अचानक पूरे मुल्क का पसंदीदा फनकार बना दिया। जल्द ही ये गीत पूरे मुल्क की जबान पर था और इसी गीत की कामयाबी की बदौलत हेमंत कुमार के घर के सामने फिल्म साजों की कतार लग गई और चंद दिनों में उनके पास काम ही काम था।

इस फिल्म ने ये बात दुनिया के सामने साबित कर दी कि हेमंत कुमार एक बहुत उम्दा गुलकार होने के साथ साथ मुनफरिद मौसीकार भी थे। फिल्म नागिन अपने जमाने की जबरदस्त हिट साबित हुई और इस फिल्म ने हेमंत कुमार की दुनिया बदल दी। इस फिल्म के लिए पहली मर्तबा हेमंत कुमार को सदर जमहूरिया हिंद की जानिब से एजाज पेश किया गया। फिल्म नागिन का ही एक दूसरा गाना तेरे द्वार खड़ा एक जोगी भी अपने जमाने का मशहूर तरीन गाना था, जिसे लता मंगेशकर और हेमंत कुमार ने गाया था।

हेमंत कुमार की मौसीकी और शकील बदायूनी के अल्फाज के साथ इस फिल्म के कुछ नगमों में लता मंगेशकर की आवाज ने एक ऐसा जादू जगाया जिसके सहर में आज तक लोग गिरफ्तार हैं। 1942 में रिलीज हुई इस फिल्म को उस साल 4 फिल्मफेयर अवार्ड्स मिले थे। बेहतरीन गीतकार शकील करार दिए गए थे कहीं दीप जले कहीं दिल के लिए, और इसी गाने के लिए लता मंगेशकर को बेहतरीन गुलूकारा का इनाम मिला था। खुद हेमंत कुमार की आवाज में गाए इस फिल्म के कई गाने लोगों को बहुत पसंद आए थे और उनमें से कुछ तो आज तक पसंद किए जाते हैं।

हेमंत कुमार ने खामोशी के नगमे तुम पुकार लो में अपने ही पुराने कहीं दीप जले कहीं दिल को खिराज पेश किया। दोनों ही गानों की शुरुआत वायलिन और गिटार की मखसूस मौसीकी से होती है।

फिल्म खामोशी का लता मंगेशकर का गाया एक गाना हिंदी फिल्मी मौसीकी के अजीम तरीन गानों में शुमार होता है। शेरी इजहार के हिसाब से एक जदीद तर गाना है, लेकिन इस नगमे की मौसीकी में हेमंत कुमार ने एक ऐसी पुरसोज और उदास कैफियत रखी है जो दिल को अपनी मुट्ठी में कर लेती है। सुनने वाला एक नादीदा अनोखी अनदेखी दुनिया में पहुंच जाता है, जहां मौसीकी की तान और नगमे के अल्फाज के अलावा कुछ भी नहीं बचता।

अनुपमा फिल्म में एक अजीबोगरीब गाना है, वो भी लता मंगेशकर का पसंदीदा गाना है और हेमंत कुमार का तो है ही। हेमंत कुमार ने बगैर किसी रिदिम को इस्तेमाल किए इस गाने को कंपोज किया, यानी कोई तबला या ड्रम इस गाने में इस्तेमाल नहीं किया गया और एक अजीब तरह की पुर असरारियत इस गाने में रच बस गई जिसकी कोई दूसरी मिसाल मिलनी मुश्किल है।

लता ने हेमंत कुमार के साथ कई यादगार गाने गाए। अपने गुलगारी के शुरुआती दिनों में लता मंगेशकर को हेमंत कुमार के साथ गाने का मौका मिला। उस जमाने में दोनों गुलकार गाने के लिए एक ही माइक्रोफोन इस्तेमाल किया करते थे। हेमंत कुमार के साथ गाने में लता मंगेशकर को एक मुश्किल का हमेशा सामना करना पड़ता था। हेमंत कुमार काफी लंबे थे, चुनांचे साउंड स्टूडियो में माइक्रोफोन को हेमंत कुमार के कद की मुनासिबत से ही सेट किया जाता। माइक से कुर्बत के लिए लता मंगेशकर को एक स्टूल या कभी किसी छोटे से बॉक्स पर खड़े होकर गाना पड़ता था।

0: ठहरो।
1: गुलजार के अलावा म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी भी जब शुरू शुरू में मुंबई आए तो उन्होंने भी हेमंत कुमार के असिस्टेंट के तौर पर ही जिंदगी की शुरुआत की और मौसीकी के बहुत से इसरार और रमूज कल्याण जी ने हेमंत कुमार से ही सीखे थे।

1952 के आसपास मुंबई की गलियों में गुलकार और मुसिकार हेमंत कुमार ने रवि को दरियाफ्त किया। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हेमंत कुमार की वजह से रवि, गुलजार और कल्याण जी जैसे लोगों को आगे आने का और आगे बढ़ने का मौका मिला।

सलील चौधरी ने एक बार कहा था कि खुदा को मैं अगर कभी गाते हुए सुनता तो मुझे यकीन है खुदा हेमंत कुमार की आवाज में ही गाता। सलील चौधरी और हेमंत कुमार एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन बदकिस्मती से दोनों के बीच में लोगों ने नया तफाकियां पैदा कर दी, यहां तक कि दोनों के बीच में बातचीत भी बंद हो गई। कई वर्षों बाद जब नया इतफाकियां दूर हुई तो दोनों की जिंदगी का बहुत सारा वक्त गुजर चुका था, मसाले से वो पुरानी वाली बात पैदा नहीं हो सकी।

बदलते वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। हेमंत कुमार अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद खुद को बदलते वक्त के साथ न ढाल सकी और धीरे धीरे तेज रफ्तार जमाने ने उन्हें नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। हेमंत कुमार मजबूर होकर मुंबई से कोलकाता वापस आ गए। उनकी सेहत खराब रहने लगी।

सन 1989 में उन्हें हुकूमत बांग्लादेश ने माइकल मधुसूदन अवार्ड के लिए ढाका बुलाया। ये अवार्ड उनकी जिंदगी का आखिरी अवार्ड साबित हुआ। ढाका से वापसी पर हेमंत कुमार को दिल का भयानक दौरा पड़ा। 26 सितंबर सन 1989 को दिल के इस दौरे से जाबर न हो पाए और हेमंत कुमार की वफात हो गई।

समीन अभी आप समाप्त कर रहे थे हेमंत कुमार के यौमे वफात पर यह फीचर सुन जा दिल की दास्तां। तहरीर जनाब इदरीस अहमद खान की थी और पेशकश थी अली मोहतशिम रजा की। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री देश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात आप सुन रहे हैं। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद, और आज के प्रोग्राम में हम भी याद करेंगे हेमंत दा को।

नेशन था ये नगमा जो हमने आपको 16 साल फिल्म से सुनवाया। बहरहाल इस वक्त इस प्रोग्राम में हम आपको हेमंत कुमार के गाए हुए नगमे सुनवाएंगे। अगली पेशकश फिल्म का नाम है मजबूर।

अक्सर जो शम्मी साहब को देखते हैं सैड हो या फिर पैपी हो, मोहम्मद रफी साहब की आवाज का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर हेमंत कुमार साहब ने भी क्या खूब गाया शम्मी कपूर साहब के लिए। वैसे जहां तक सुटेबल वॉइसेज की बात है तो बहुत सारे अदाकारों पर उनकी आवाज सूट हुई, जैसे कि देवानंद साहब हो गए, बिश्वजीत हो गए, प्रदीप कुमार हो गए, या फिर यहां एक शम्मी कपूर साहब का भी आ गया नगमा। अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं हेमंत कुमार साहब की ही आवाज में है, बात एक रात की फिल्म से।

ये नगमा था खामोशी फिल्म से और हमारे आज की प्रोग्राम की आखिरी पेशकश समाप्त कीजिए फिल्म का नाम है प्यासा।

दोस्तों, नगमे के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। आज के प्रोग्राम में आपने हेमंत कुमार के गाए हुए नगमे सुने। हमारी नशरियात मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और डीडी फ्री डिश पर दस्तयाब है। अब सुनिए जनाब गुलाम जिलानी का तहरीर करदा ड्रामा हार श्रृंगार के फूल। पेशकश है प्रेम वोहरा की।

0: आ जाओ, दरवाजा खुला है बिहारी, चाय रखकर चले जाओ, थोड़ी देर बाद मैं खुद बना लूंगी।
1: अभी पी लो रानी, नहीं तो ठंडी हो जाएगी।
0: नवीन, मैं समझी बिहारी लाया है चाय, तुम कब आए?
1: कहां से?
0: घर से।
1: तुम्हें नहीं मालूम, मैं रात को यहीं ठहर गया था।
0: ओ, तो तुम नहीं माने। माताजी कहां हैं?
1: सो रही हैं, रात बहुत देर से सोई थी, बहुत कमजोर हो गई हैं। दिन भर घर की देखभाल में थक जाती हैं और फिर तुम्हारी वजह से और भी परेशान रहती हैं। मैं साथ रहता हूं तो उनका दिल लग जाता है, इसीलिए रात को।
0: मगर तुम्हारे माता पिता तुम...
1: मैंने खबर कर दी थी रानी। ये तुम क्यों पूछ रही हो?
0: नहीं कुछ नहीं, यूं ही।
1: लो चाय पियो। वो लोग तो खुद चाहते हैं जब तक तुम बिल्कुल ठीक ना हो जाओ मैं यहीं रहूं तुम्हारे पास, तुम्हारे माता जी के साथ, मगर तुम हमेशा बिगड़ जाती हो। सुनो, आज मम्मी आ रही हैं डैडी के साथ तुमसे मिलने।
0: क्यों?
1: आज तुम्हारे हाथ की पट्टियां खुल जाएंगी ना, वो तुम्हें अच्छा होने की बधाई देने आ रहे हैं।
0: मगर मुझे तुमने अच्छा किया है नवीन, तुम मुझे मौत के मुंह से खींच लाए। मैं उनसे कहूंगी बधाई तुम्हें दे।
1: वो एक ही बात तो हुई रानी, मैंने जो कुछ किया है तुम्हारे लिए नहीं अपने लिए किया है, नया जीवन तुम्हें नहीं मुझे मिला है। सोचो तो, तुम्हारे बिना मैं एक दिन भी रह सकता था?
0: मगर मुझे तो अब इस हाथ के बिना ही रहना पड़ेगा।
1: इसकी चिंता मत करो रानी, बस तुम्हारे घाव भर जाए पूरी तरह, फिर तुमने बहुत दुख झेले हैं मेरी वजह से।
0: नहीं नवीन, सारे कष्ट तो तुम झेल रहे हो।
1: क्या कह रही हो? वो तकलीफ, वो दर्द जिससे तुम गुजरी हो, और फिर वो दिन जब तुम्हारा हाथ, अब भी सोचता हूं तो आंखों में अंधेरा सा छाने लगता है, वो सारा दुख जिसका कारण मैं ही तो हूं रानी, मैं ही तो हूं।
0: तुम कैसे हो नवीन? मैं तो पहले भी कह चुकी हूं कि
1: मोटर मैं चला रहा था, तुम नहीं।
0: मगर मैंने तुम्हें बातों में लगा लिया था।
1: नहीं रानी, सारी गलती मेरी थी, मोहब्बत ने मुझे अंधा बना दिया था, मैं ये भूल गया था कि कार चला रहा हूं मैं। सजा मुझे मिलनी चाहिए थी, मुझे, रानी को नहीं। हाथ तो
0: नवीन
1: मेरा...
0: आगे कुछ मत कहो नवीन, कुछ मत कहो। तुम बच गए, इसी ख्याल ने तो मुझे जिंदा रखा, वरना शायद मैं कभी अच्छी नहीं होती, कभी अपने आप को माफ न करती।
1: मुझे भी तो यही ख्याल सताता है।
0: सुनो कि... नवीन, सुनो मेरी बात, तुम सा हैंडसम कॉलेज भर में कोई नहीं, तुम्हें बिगाड़ देना कुदरत का कितना बड़ा जुल्म होता। जो कुछ भी हुआ ठीक हुआ।
1: अब इन बातों से क्या हासिल? शायद भगवान की यही मर्जी थी। है? ये कौन सा मैगजीन है तुम्हारे पास?
0: स्पोर्ट्स का ताजा नंबर है, तुमने नहीं देखा?
1: यहाँ कौन लाया इसे? मैंने

0: तुझे को मना कर दिया था,
1: फिर भी मैंने मंगवा ही लिया। हाँ, इसमें मेरी तस्वीर आई है नवीन, कॉलेज की चैंपियन गर्ल की तस्वीर। ये देखो, ये देखो, ये रही मेरी जीती हुई ट्रॉफीज और ये रही मैं ट्रैक सूट में, और ये रहे मेरे दोनों हाथ जिनके बलबूते पर मैंने ये सारे प्राइजेस जीते थे और जिनकी खुशी में उस दिन तुम्हें जोर से भींच लिया था। ये तस्वीर उसी दिन की यादगार है जब कामयाबी और खुशी से मेरी आंखों में कुमार छा गया था और फिर हमारी कार और वो दरख्त।
0: लाओ, इधर दो ये मैगजीन।
2: ये सब क्यों सोच रही हो रानी?
1: तुम्हें मेरे जिस्म पर नाज था ना नवीन, कहते थे सारी लड़कियां मुझसे जलती हैं, जया भी, जिससे इतनी मेहनत के बाद मैंने चैंपियनशिप छीनी थी।
0: अरे नहीं रानी, कॉलेज में तो सब तुमको अब भी याद करते हैं। कल शीला कह रही थी सब तुम्हें देखने आना चाहती हैं।
1: अच्छा, फिर?
0: मैंने बता दिया, तुम आजकल किसी से नहीं मिलती हो, मना कर रखा है। और हाँ, एक दिन जया भी आई थी।
1: कहाँ? अस्पताल में?
0: नहीं, यहाँ घर पर, तुम्हारे आ जाने के बाद, लेकिन मैंने मना कर दिया।
1: क्या वो मुझे देखने आई थी?
0: और क्या, तुम नहीं जानती वो इस वाकये से कितनी दुखी है। कहती थी अब कंपटीशन में मजा नहीं आता, तुम्हारे ही दम से फील्ड्स की रौनक थी। अब और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं रानी, कुछ नहीं कहा उसने, बस वापस चली गई। और देखो, आज तुम्हारा ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा, परसों हम सब किसी पहाड़ पर चले जाएंगे कुछ दिनों के लिए, किसी भी जगह जहां ऊंचे ऊंचे दरख्तों में बलखाती हुई पगडंडियां हों, पहाड़ों से रिसते हुए झरने हों और ढलानों पर छोटे छोटे गांव आबाद हों, वहां हम दिन दिन भर घूमेंगे फिरेंगे। मैं अपना कैमरा साथ ले चलूंगा। है? ये कह रानी, फिर सोच में पड़ गई। क्या सोच रही थी बताओ ना, बताओ रानी।
1: कुछ नहीं, कुछ भी नहीं।
0: तुम इस तरह मेरी आंखों में क्या देख रही थी?
1: कुछ भी नहीं नवीन। तुमने जो प्रोग्राम सोचा है बहुत अच्छा है, मगर क्या तुम्हारा साथ चलना जरूरी है? नहीं, मेरा मतलब है कि तुम पहले कॉलेज से बहुत ज्यादा एब्सेंट रह चुके हो, और फिर मेरे साथ माताजी भी होंगी।
0: नहीं, हम सब साथ साथ जाएंगे, मैं और मेरी माताजी भी, और कॉलेज में अब उस वक्त तक मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम अच्छी होकर जाना शुरू नहीं कर देती। तुम्हारे बगैर एक मिनट भी जी नहीं लगता क्लास में।
1: एक बात बताओ नवीन, क्या मेरा मेरा हाथ जुदा कर देना जरूरी था?
0: हाँ, बहुत जरूरी था, वरना सारे जिस्म को खतरा हो जाता। और फिर डॉक्टर कहता था हाथ चूरा चूरा हो चुका है, इसे जिस्म से चिपकाए रखना बेकार है। मगर तुम ये क्यों पूछ रही हो?
1: क्यों ही, बस एक ख्याल आ गया था।
0: मैंने कहा था ना रानी, शायद भगवान की यही मर्जी हो। इधर देखो, ये मेरे हाथ भी तो तुम्हारे हैं पगली। अच्छा, अब चलता हूँ, कल से घर नहीं गया ना।
1: सुनो नवीन, अब से इस तरह रात को मत ठहर जाया करो।
0: क्यों?
1: अभी हमारी शादी नहीं हुई है, लोग
0: लोग फिर वही लोग, सब जानते हैं कि सारी बातें तय हो चुकी हैं, एग्जाम के बाद ब्याह हो जाएगा। मैं लोगों से नहीं डरता।
1: शायद ये बात खुद मुझे अच्छी नहीं लगती।
0: ओह, ये बात है
1: नवीन, मुझे माफ कर दो, पता नहीं इस वक्त मुझे मुझे क्या हो रहा है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मुझे मुझे गलत मत समझो नवीन, बस थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, मैं सोचना चाहती हूँ। तुम अब घर चले जाओ।
0: अच्छी बात है, शाम को मेरे साथ पिताजी और माताजी आएंगे। रानी, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है।
2: ज्यादा सोचना अच्छा नहीं।
0: अरे हाँ, तुम्हारी माता जी पूछे तो कह देना वो सो रही थी इसलिए बगैर मिले चला गया।

0: नवीन कब किया बेटी, तुमने जाने क्यों दिया?
1: मुझे जगा दिया होता।
2: तुम सो रही थी माँ।
0: अरे तू यहाँ आईने के सामने खड़ी क्या कर रही है? बिस्तर से उठी क्यों?
1: देख रही थी कि रानी अब कैसी लग रही है।
0: तेरा चेहरा आज इतना उतरा हुआ क्यों है? चल बैठ वहां चलकर।
1: पगली कहीं की, आज तेरी पट्टियां खुल जाएंगी। आज तो खुशी का दिन है बेटा।
2: मैं सोच रही थी माँ।
0: फिर वही बातें, जानती है डॉक्टर ने तुझे सोचने से मना किया।
2: माँ मेरी बात सुनो माँ, क्या क्या मेरा हाथ काट देना बहुत जरूरी था क्या इसके बगैर?
0: बेटी हाँ, डॉक्टर का यही ख्याल था। पर तू आज ये सब क्यों सोच रही है?
2: अब सोचने की जरूरत नहीं रही, मुझे अब यकीन हो चला है।
0: तेरा दिमाग थक गया है रानी बेटा, रोज जाने क्या क्या सोचती रहती है। मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ तू क्या सोचती रहती है।
2: नहीं माँ, तुम कुछ नहीं जानती। मैं अब तक तुम्हारी बातें मानती रही, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती माँ। माँ जरा जरा मेरे दिमाग से सोचो, जरा मेरे दिल से महसूस करके देखो।
0: मैं रानी बेटा, मैं अब भी वही कहती हूँ जो पहले कहा था।
2: माँ माँ, तुमने तुमने उसकी आंखों में देखा है?
0: कई बार देख चुकी हूँ।
2: जानती हो आज मैंने वहां क्या देखा? आज पहली बार मुझे उन आंखों में रहम झांकता नजर आया माँ, रहम।
0: ये सब तुम्हारा वहम है रानी।
2: मैं नफरत भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, क्योंकि नफरत एतराफ है बराबरी का, मगर रहम नहीं माँ, नहीं, ये मेरे बस के बाहर है।
0: अपने ऊपर भरोसा रख बेटी। बेटी तू बहुत जल्द अपने नए जीवन से समझौता कर लेगी।
2: समझौता? अब मैं जहां जाऊंगी, जिधर से गुजरूंगी, लोग मुझ पर रहम खाया करेंगे, कहेंगे हाय कैसी अच्छी एथलीट थी बेचारी। जानती हूँ माँ,
0: हाँ
2: परसों जब नवीन और उसकी बहन मुझे सोता देखकर आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे ना, तो मेरी आंख खुल गई। मेरा जिक्र करते हुए नवीन कह रहा था बेचारी रानी।
0: बेटा
2: इसका दुख देखकर कलेजा मुंह को आता है। तुमने सुना माँ, बेचारी रानी।
0: ये कैसी बातें कर रही है तू रानी, कैसी बातें कर रही है?
2: मैंने अपनी तमाम जिंदगी का ताना बाना अपने अपने दोनों हाथों से बुना था। अपने सपनों के सुंदर महल खड़े करते वक्त मैंने कभी नहीं सोचा था कि इनमें से एक मेरा साथ छोड़ देगा।
0: ओ बेटी, बेटी।
2: मुझे अपने जिस्म पर नाज था माँ।
0: नवीन को अब भी है रानी।
2: ये गलत है माँ, बिल्कुल गलत है। उसे अधूरी चीजों से हमेशा चिढ़ रही है। उसे वही चीज पसंद है जो मुकम्मल हो। कोई मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता माँ, कोई नहीं।
0: मगर नवीन को है बेटा।
2: वो मोहब्बत खूबसूरत और मुकम्मल रानी के लिए थी, कमजोर और अपाहिज के लिए नहीं। क्या वो मुझसे अब मिलता तो भी ऐसी मोहब्बत कर सकता था?
0: शायद हाँ, कर सकता था।
2: नहीं माँ, मैं नहीं मानती।
0: लेकिन जो मोहब्बत उसे आप तुझसे है, क्या तू उसे भी नहीं मानती?
2: नहीं नहीं,
0: तू आखिर चाहती क्या है? खुद ही सारी बातें सोच लेती है और गम में बह जाती है। रानी मुझे बता, जो मोहब्बत उसके लिए तेरे सीने में भरी पड़ी है, उसका क्या होगा? ये भी सोचा है तूने?
2: मैं उसका गला

0: मैं उसका गला काटूंगी। रानी रानी बेटी, ये तुझे क्या हो गया है? नवीन जैसा लड़का सारी दुनिया में नहीं है।
1: पर ये मेरा दोष भी तो नहीं माँ। मैं कब चाहती हूँ कि मुझे और मत सताओ माँ, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। काश मैं अच्छी नहीं होती
0: रानी।
1: मुझे मर जाने दिया होता माँ, मुझे मर जाने दिया होता।
0: रानी रानी बेटी रानी। क्या हुआ रानी, इतनी जल्दी क्यों चली आई? क्या पार्टी खत्म हो गई?
1: नहीं, मैं बीच में से उठ आई।
0: वहां बैठा नहीं गया, मगर क्यों?
1: कोई वजह तो नहीं थी, बस यूं ही चली आई।
0: तूने अच्छा नहीं किया बेटा, वो सब तेरे दोस्त हैं, तेरी ही वजह से आए थे।
1: मुझे लग रहा था जैसे जैसे वो सब मेरे लिए नहीं, नवीन के लिए आए हैं।
0: रोज तेरा हाल बिगड़ता ही जा रहा है, आखिर तुम चाहती क्या है?
2: रानी बिटिया,
1: क्या बात है बिहारी?
2: नवीन बाबू आ रहे हैं।
1: तुम्हें कैसे मालूम?
2: अभी अभी उनकी मोटर फाटक से अंदर आई है। क्या उन्हें भी रोक दो बीबी जी? आपने कहा था किसी को ना आने दूं।
1: तू जा बिहारी, नवीन को आने दे, मैं खुद जाती हूँ उसे लाने।
2: ठीक है माँ जी।
0: रानी, हर बाप की एक हद होती है बेटा।
1: आओ नवीन, क्या सब लोग चले गए?
3: हाँ।
1: मगर इतनी जल्दी, अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई थी।
3: मैंने उनसे जाने को कह दिया।
1: मुझे माफ कर दो नवीन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से तुम्हारी पार्टी।
3: मुझे इसका दुख नहीं है।
1: मालूम नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं मुझे यूं लगा जैसे।
3: माता जी मुझे बता चुकी हैं।
1: सुनो नवीन, मैं उन सब लोगों से माफी मांग लूंगी, कल ही एक एक के घर जाकर।
3: मैं इस वक्त ये बातें करने नहीं आया हूँ रानी, मैं पूछने आया हूँ आखिर तुम्हें क्या हो गया है। इतने दिनों से नहीं पूछा, मगर अब पूछता हूँ।
1: कौन सी बात नवीन?
3: मैं शुरू से जानता था तुम आज की पार्टी में नहीं आना चाहती थी। पहाड़ पर जाने का प्रोग्राम भी तुमने खत्म करवा दिया। पिछले कई दिनों से तुम बिल्कुल बदल गई हो या बदलने की कोशिश में लगी हुई हो।
1: क्या माता जी ने तुम्हें कुछ बताया है?
3: हाँ, पर उन्होंने जो कुछ कहा है मुझे उस पर यकीन नहीं आ सका था।
1: हाँ नवीन, वो सब सच है।
3: तो माता जी ठीक कहती थी, रानी ऊपर से जितनी मजबूत नजर आती है अंदर से उतनी खोखली है।
1: नहीं नवीन, सच से आंखें न मोड़ना बुजदिली नहीं है।
3: मैं समझा नहीं।
1: तो अब समझ लो, मुझे आज कहना ही पड़ेगा, अब मैं वो रानी नहीं रही जिसे तुम कॉलेज की चैंपियन कहा करते थे, जिसकी फिगर पर तुम्हें नाज था। मैं तो अब एक बेकार क्रिपल्ड, दुनिया की कोई ताकत मुझे अब ये हाथ वापस नहीं दिला सकती। नवीन, तुम अभी मुझसे मोहब्बत करते हो, लेकिन अब उसमें रहम शामिल हो चुका है, और शायद तुम्हें इसकी खबर भी नहीं।
3: रानी,
1: मुझे कह लेने दो नवीन, शायद इतनी हिम्मत फिर जमा ना कर सकूं। मैं जानती हूं तुम मुझे पागल समझ रहे हो, तुम्हें मुझ पर बेहद गुस्सा भी आ रहा है, मगर यही सच्चाई है नवीन, और ऐसा होना लाजमी है। फिर भला मेरी खातिर तुम अपनी जिंदगी क्यों तबाह कर लो? जिंदगी के रास्ते में अभी बहुत सी खुशियां, बहुत सी कामयाबियां तुम्हारे इस्तकबाल के लिए बेचैन है। तुम्हें उनकी तरफ बढ़ना है नवीन, मेरी तरफ नहीं। और मैंने सोचा है कल यहां से चली जाऊंगी माताजी के साथ एक लंबे सफर पर। तुमने कहा था ना मुझे चेंज की जरूरत है, और नवीन मैंने सब तस्वीरें सारे खत जला दिए हैं, और मैं चाहती हूं कि तुम भी, मैं चाहती हूं कि हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी हो जाएं, शायद अब हम कभी न मिल सकें।

0: मैं शायद कभी वापस ना आऊं।
1: तुम इस कदर चुप क्यों हो?
2: नहीं तो मैं सब सुन रहा हूं, शायद हम फिर कभी ना मिल सके, शायद तुम कभी वापस ना आओ।
0: हाँ नवीन, यही ठीक है।
3: तुम मालूम भी है तुम क्या कह रही हो?
0: क्या नवीन, तुम घबरा जाओगे तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। मेरे कदम मत डगमगाओ नवीन।
2: मुझे नहीं मालूम था रानी तुम इतनी दूर निकल आई हो, तुम सचमुच पागल हो गई हो। कभी मुझसे भी तो पूछा होता, मुझे भी तो समझा होता।
0: नहीं नवीन, नहीं, अब कुछ नहीं। मैं सचमुच बहुत दूर आ चुकी हूं, मुझे पीछे मत बुलाओ नवीन।
2: रानी, क्या तुम मुझे भुला सकोगी?
0: इसे मजाक मत समझो नवीन, तुम नहीं जानते कितने सोच विचार के बाद मैं
2: मजाक
0: नवीन, यह हंसी की बात नहीं है, आई एम सीरियस।
2: सॉरी, नहीं रानी, यह हंसी की बात नहीं, यू आर सीरियस। तुम मेरी फिक्र न करो, मैं भी सीरियस हो जाऊंगा। तो तुम कल चली जाओगी, फैसला कर लिया है।

हेलो, कौन? सुषमा? हाँ, मैं नवीन बोल रहा हूं। सुनो, क्या तुम्हें मालूम है? तो फिर बताओ कहां गई है? कलकत्ते मौसी के यहां या फिर इलाहाबाद अंकल के यहां? तुम ठीक सोच रही हो, मैं खुद जाऊंगा वहां। हाँ, रुक नहीं सकता। अच्छा, थैंक यू।

0: कौन हो भैया, आवत रहें।
1: कहो बाबूजी, का काम है?
2: रानी की मौसी का घर यही है ना?
1: हाँ, यही तो है।
2: क्या रानी और उनकी माताजी यहाँ आई हैं?
1: ना बाबूजी, यहाँ तो कोई ना आवा, तुमसे बोला था का आने को।
2: अच्छा तो फिर।
1: अरे रीका, अरे भैया तुम तो जा रहे हो।
0: लो भला, ऐसी भी क्या जल्दी। अरे ठहरो बाबूजी।

0: क्या तू भी पागल हो गया है नवीन? मैं समझी थी सिर्फ रानी का ही दिमाग चल गया है, कहां कहां की खाक छांक कर आ रहा है।
1: पहले ये बताइए माताजी, आप लोग मुझे बताए बिना क्यों चले आए?
0: रानी ने मना कर दिया था।
1: वह है कहां? अच्छी तो है ना?
0: बिहारी के साथ भवनकुट के मंदिर गई है।
1: मगर वो तो दूर है, जंगल और पहाड़ों में।
0: मोटर से गई है, शाम तक आ जाएगी। मगर तू कहाँ जा रहा है नवीन? नवीन

0: Nevím, Tom?
1: Háraný, ne.
0: To... Tom nehý mani.
1: Tom bhi to nehý man saki.
0: Magar Tom... Tom kis liye aaye ho? ये कैसे समझ लिया कि मैं...
1: मैंने कुछ नहीं समझा है रानी, मैं तो बस...
2: कमल! कमल! कमल! कमल, कहाँ हो तुम?
0: ये कौन है?
2: कहाँ जा छुपी हो? आओ घर चलें, शाम हो चली है। कमल, आखिर मैंने तुम्हें पा लिया ना? देखो, अब मत भागना कमल, अब मत भागना।
0: मैं कमल नहीं हूँ बाबा।
2: मैं? तुम कमल नहीं हो? तो... वो कहाँ गई? तुमने देखा भी नहीं उसे?
0: नहीं तो, मैंने तो देखा भी नहीं।
2: मगर ये कैसे हो सकता है? अभी अभी तो गुजरी है यहाँ से। तुम तुमने भी नहीं देखा उसे?
1: जी नहीं, यहाँ से कोई नहीं गुजरा।
2: अच्छा, ये बात है। यहीं से तो आवाज आई थी उसकी, आवाज भी नहीं सुनी उसकी।
1: जी नहीं, हमने कोई आवाज नहीं सुनी
2: उसकी। आवाज नहीं सुनी? बड़ी शरीर है, अभी यहाँ थी और अब कहीं और जा छुपी। मुझे बहुत सताती है। देखो ना, ये हार सिंगार के फूल कब से लिए फिर रहा हूँ। मेरे हाथों में पड़े पड़े मुरझा गए हैं ये।
0: क्या कमल को बहुत पसंद है?
2: हाँ बहुत। तुम्हें नहीं मालूम, वो जब झाड़ियों के पीछे से निकलकर एकदम हंस पड़ती है तो यह हार सिंगार की सारी कलियां फूल बन जाती है और मैंने तोड़कर उसके बालों में सजा देता हूँ। उस वक्त तो कितनी सुंदर दिखाई देती है, मगर तुमने तो कमल को देखा ही नहीं, तुम क्या जानो?
1: बाबा,

0: आप यहीं जंगल में रहते हैं?
1: हाँ, उस तरफ मेरा घर है, हमारा घर है, हमारा पहाड़ के दामन में। देखो कमल के पीछे पीछे कितनी दूर चला आया हूँ। रोज सुबह होते ही वो ये आंख मिचोली शुरू कर देती है।
2: आंख मिचोली?
1: हाँ, कब से ढूंढ रहा हूँ उसे। वो कभी इन झाड़ियों में से, कभी उन पेड़ों की ओर से मुझे पुकारती है, और जब मैं वहां पहुंचता हूँ तो कहीं और जा छुपती है। मुझे बहुत सताती है, बहुत सताती है मुझे।
0: पर बाबा अब तो अंधेरा होता जा रहा है।
1: हाँ देखो ना, इस अंधेरे में किसी खाई में पैर फिसल जाए तो कमल, कमल।
2: मैं आपको यकीन दिलाती हूँ बाबा, वो यहाँ नहीं है, कहीं और छुपी है।
1: नहीं, वो यही है। ओह माफ करना, मगर वो है यही कहीं। तुमने उसकी आवाज नहीं सुनी शायद? सुनो, वो आ रही है, उसकी आवाज, वो आवाज सुना तुमने? वो रही बस यूं ही मुझे परेशान करती है और हाथ नहीं आते। कमल, कमल, कमल, ठहरो, मैं आ रहा हूँ।
0: भगवान ने आपको बाल बाल बचा दिया, उठिए। अभी इस खौफनाक खड्ड में गिर गए होते आप।
1: खड्ड में? खड्ड में? इस खौफनाक खड्ड में? यही तो वो जगह है जहाँ से मेरी कमल, मगर नहीं, तुम तो जानते हो वो खिली नहीं है, है ना? बताओ कहते क्यों नहीं? बोलो, बोलो। मेरी कमल, मेरी नाजुक सी कमल, भला उस खौफनाक खड्ड में गिर सकती है क्या? बताओ, चुप क्यों हो? बोलो। वो देखो, वो तो वहां खड़ी हंस रही है। कमल, कमल, कमल, अब आगे मत जाना, अब मुझसे चला नहीं जाता। कमल, मैं थक गया हूँ। कमल, मैं बहुत थक गया हूँ। चलो अब घर चले, शाम हो चली है। कमल, कमल।
2: ये सब क्या था नवीन?
0: रानी, किसी को इतना चाहना खेल नहीं होता।
2: हाँ, खेल नहीं होता। चलो अब चले।
0: कहाँ?
2: घर, शाम हो चली है।

हार श्रृंगार के फूल। अभी आपने ये ड्रामा सुना। पहली थी जनाब गुलाम जिलानी की और पेशकश प्रेम बोहरा की थी। हिस्सा लेने वाले फनकार थे वीना होरा, श्याम अरोड़ा, राजेश्वर नाथ, सरला नागिया, सुरेंद्र कौशिक, एसके बैक्टर, प्रेम कुमार शर्मा और बाबला कोचर। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।

संवेग से खबरें सुनिए। वजीर खारजा एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के आला सतह के जलसे से खिताब करेंगे। भारत ने खलीज बहरे अहमर और बहरे अस्वद में तिजारती जहाजों और जहाजियों पर बार बार हमले किए जाने पर तशवीश जाहिर की है। ईरान ने तजवीज रखी है कि अगर अमरीका उसकी शर्तें मान लेता है तो वह 7 दिन में आबनाए हुर्मुज को दोबारा खोल देगा। सावन बरवाल ने जापान में एशियन गेम्स में मर्दों के मैराथन मुकाबले में

0: कार बातचीत दोबारा शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सात दिन की यह मुद्दत अमेरिका की तरफ से इस मंसूबे को तस्लीम किए जाते ही शुरू हो जाएगी। भारतीय मैराथन रनर श्रवण बरवाल ने एशियन गेम्स 2026 में मर्दों के मैराथन मुकाबले में चांदी का तमगा जीतकर तारीख रकम की है। उन्होंने इस खेल में पोडियम फिनिश के भारत के 44 साल तवील इंतजार को खत्म किया। बरवाल ने 2 घंटे 11 मिनट 37 सेकंड का वक्त लेकर न सिर्फ जाती बेहतरीन स्कोर दर्ज किया बल्कि मर्दों के मैराथन फाइनल में एक कौमी रिकॉर्ड भी बनाया। वो जापान के यामाशिता से पीछे रहे जिन्होंने ये दौड़ जीतकर सोने का तमगा जीता था। छब्बीस के एशियन गेम्स में भारतीय खवातीन की कबड्डी टीम ने ईरान को शिकस्त देकर सोने का तमगा हासिल किया है। भारतीय खवातीन को अपनी मुहिम में कोई भी शिकस्त नहीं हुई। भारतीय टीम जिसे शुरू से आखिर तक गलबा हासिल रहा तो कई सिटीजन जिम्नेशियम में फाइनल कबड्डी में ईरान को 37-34 के फर्क से हराया। भारत की मर्दों की कबड्डी टीम का सामना भी आज देर गए ईरान से होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आईची नागोया में एशियाई खेलों में मर्दों के 10,000 मीटर दौड़ के मुकाबले में कुलवीर सिंह के चांदी तमगा जीतने पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि कुलवीर सिंह ने इससे कबल कांसे का तमगा जीतने के बाद एक बार फिर मुल्क को फख्र का एहसास दिलाया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनकी ये कामयाबी पूरे भारत में लंबी दौड़ में हिस्सा लेने वाले नौजवान एथलीट्स के लिए बाई से तरगीब होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने एशियाई खेलों 2026 में शॉटपट में कांसे का तमगा जीतने पर मनप्रीत कौर भी मुबारकबाद दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में उनकी असरअंगेज कारकर्दगी की तारीफ की और मुस्तकबिल की कामयाबियों के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बारानिका इरांगवान को अपने पहले ही एशियाई खेलों में खवातीन के पोल वॉल्ट में कांसे का तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी है और उनकी छलांग को खुसूसी करार देते हुए इस तमगे को भारत के लिए मुनफरिद करार दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉ मनमोहन सिंह को उनके यौम पैदाइश के मौके पर खिराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि जनाब सिंह ने आवामी जिंदगी में बहुत साल गुजारे और मुल्क के लिए खुद को वक्फ करते हुए खिदमत अंजाम दी। फिडे शतरंज ओलंपियाड में दिफाई आलमी क्लासिकल शतरंज चैंपियन डी गुकेश ने फैसलाकुन जीत हासिल करते हुए भारत को मर्दों के ओपन जुमरे के 9वें राउंड में गुजश्ता मुश्तरका सरफेस टीम जर्मनी के खिलाफ 2.5 और 1.5 से कामयाबी दिलाई। जीत के साथ भारत 5 टेबल में दूसरे मकाम पर पहुंच गया है। इस कामयाबी के साथ भारत एक बार फिर खिताब की दौड़ में शामिल हो गया है। इस अहम मुकाबले में आर प्रगनंदा अर्जुन एरिगासी और निहाल सलीम को इब्तदाई टीम बोर्ड पर बराबरी पर इत्तफा करना पड़ा था। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के आला सतह के जलसे से खिताब करेंगे। भारत ने खलीज बहरे अहमर और बहरे अस्वद में तजारती जहाजों और जहाजियों पर बार बार हमले किए जाने पर तशवीश जाहिर की है। ईरान ने तजवीज रखी है कि अगर अमरीका उसकी शर्तें मान लेता है तो वो 7 दिन में आबनाए हुर्मुज को दोबारा खोल देगा। श्रवण बरवाल ने जापान में एशियन गेम्स में मर्दों के मैराथन मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल किया है और डी कुकेश ने समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 9वें राउंड में भारत को जर्मनी पर जीत दिलाई। खबरें खत्म हुई।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। अब पेश खिदमत है फिल्मी दोगानों का प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा।

लता मंगेशकर के साथ ये थे मोहम्मद रफी। ये नगमा था असली नकली फिल्म से। इससे पहले इन्हीं दोनों आवाजों में आपने सुना एक और नगमा, फिल्म थी जब प्यार किसी से होता है। प्रोग्राम की अगली पेशकश आप सबकी नजर है, फिल्म है तेरे घर के सामने।

0: उल्फत में ताज बने, ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: देखी

0: छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मिलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: जुल्मी फिल्म का नगमा भी आपने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में सुना। हमारे ये प्रोग्राम अभी जारी है, वक्त हुआ है तारीख साज प्रोग्राम का। आज का मौजू है कबीर।
1: कबीर की शायरी हिंदुस्तानी तहजीब की उन शमों की ताबानी है जो यगानगत और इत्तेहाद के कदमों को मुनव्वर करती है। कबीर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर की शायरी में अपना मुनफरिद मकाम रखते हैं। अपने सारे लेकिन मफाहिम से भरपूर चौपाइयों और दोहों में उन्होंने इंसानी जहन और रूह की पेचीदा गुत्थियों को फनकाराना अंदाज में सुलझाया है। कबीर के कलाम की इस खसूसियत को उनकी एक चौपाई के तर्जमे से जहन नशीन किया जाता है।

तीन देवियां फिल्म का नगमा भी आप सुन रहे थे, आशा भोसले और किशोर कुमार का गाया हुआ। हमारे आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश हम दोनों फिल्म से है, आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।

0: हम दोनों फिल्म कदम आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हुआ। आज के प्रोग्राम में सामीन आपने सुने देवानंद पर फिल्माए हुए कुछ दो गाने। देवानंद साहब का आज यौम पैदाइश था और अपनी रवायत के मुताबिक आकाशवाणी की उर्दू सर्विस ने खराज अकीदत पेश किया इस अजीम अदाकार को। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, हमारे नशरियात का सिलसिला जारी है। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। अब से चंद ही लम्हों के बाद आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
1: जी आकाशवाणी है, अब आप हबीब रहमान से आलमी खबरें सुनिए। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के आला सतह के इजलास से खिताब करेंगे। सेहत से मुतालिक सेक्रेटरी पुनिया सलीला श्रीवास्तव ने अक़वामे मुत्तहिदा की आला सतही मीटिंग में आलमी सतह पर वबा से निपटने के लिए तैयारी और कार्रवाई के तहत भारत के अज़्म का इआदा किया। भारत ने खलीज, बहरे अहमर और बहरे अस्वद में तिजारती जहाजों और जहाजों पर बार बार हमले किए जाने पर तशवीश जाहिर की है। ईरान ने तजवीज रखी है कि अगर अमरीका उसकी शर्तें मान लेता है तो वो 7 दिन में अपनाए हुरमुज को दोबारा खोल देगा। और भारतीय खवातीन की कबड्डी टीम ने 2026 के एशियाई खेलों के फाइनल में ईरान को 37-34 से शिकस्त देकर सोने का तमगा जीत लिया है। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 81वें आला सतही इजलास से खिताब करेंगे। ये इजलास एतमाद की बहाली, तब्दीली के अमल का मुअस्सर इंतजाम, एक ऐसी अक़वामे मुत्तहिदा जो सबके लिए मुअस्सर खिदमात अंजाम दे के मौजू के तहत मुनाकिद किया जा रहा है। यूएन जनरल असेंबली अपने सभी 193 मेंबर ममालिक के सुदूर, उज़राए आज़म और आला नुमाइंदों को यकजा होने का मौका फराहम कर

0: ईरान ने पेशकश की है कि अगर अमरीका ईरान की बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी खत्म कर दे, ईरान की तेल की फरोख्त पर से बंदिशें हटा ले और लेबनान समेत जंग बंदी पर अमल करे तो वह आबनाए हुर्मुज को दोबारा खोल देगा और 7 दिन के अंदर अंदर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत दोबारा शुरू कर देगा। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराकची ने तजवीज की तफसीलात अक्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के बाहर नामा निगारों को बताई। उन्होंने कहा है कि ईरान अमरीका के साथ अपने न्यूक्लियाई प्रोग्राम के बारे में तातुल का शिकार बातचीत दोबारा शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 7 दिन की यह मुद्दत अमरीका की तरफ से इस मंसूबे को तस्लीम किए जाते ही शुरू हो जाएगी। 2026 के एशियन गेम्स में भारतीय खवातीन की कबड्डी टीम ने ईरान को शिकस्त देकर सोने का तमगा हासिल किया है। भारतीय खवातीन को अपनी मुहिम में कोई भी शिकस्त नहीं हुई। भारतीय टीम जिसे शुरू से आखिर तक गलबा हासिल रहा तो काई सिटीज एंड जिमनेजियम में फाइनल कबड्डी में ईरान को 37-34 के फर्क से हराया। भारत की मर्दों की कबड्डी टीम का सामना भी आज दिन गए ईरान के साथ होगा। भारतीय मैराथन रनर सावन बरवाल ने एशियन गेम्स 2026 में मर्दों के मैराथन मुकाबले में चांदी का तमगा जीतकर तारीख रकम कर दी है। उन्होंने इस खेल में पोडियम फिनिश के भारत के 44 साल तवील इंतजार को खत्म किया। बरवाल ने 2 घंटे 11 मिनट 37 सेकंड का वक्त लेकर न सिर्फ जाति बेहतरीन स्कोर दर्ज किया बल्कि मर्दों के मैराथन फाइनल में कौमी रिकॉर्ड भी बनाया। वो जापान के यामाशिता से पीछे रहे जिन्होंने यह दौड़ जीतकर सोने का तमगा हासिल किया। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने आईची नागोया में एशियाई खेलों के मर्दों के 10,000 मीटर दौड़ के मुकाबले में कुलवीर सिंह के चांदी का तमगा जीतने पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा है कि कुलवीर सिंह ने इससे कम कांसे का तमगा जीतने के बाद एक बार फिर मुल्क को फख्र का एहसास दिलाया है। वजीर आजम ने कहा कि उनकी यह कामयाबी पूरे भारत में लंबी दौड़ में हिस्सा लेने वाले नौजवान एथलीट्स के लिए बाईस तरगीब होगी। वजीर आजम ने एशियाई खेलों 2026 में शॉटपुट में कांसे का तमगा जीतने पर मनप्रीत कौर को भी मुबारकबाद दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में उनकी असर अंगेज कारकर्दगी की तारीफ की और मुस्तकबिल की कामयाबियों के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर खारजा एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के आला सतह के जलसे से खिताब करेंगे। सेहत से मुतालिक सेक्रेटरी पुनिया सलीला श्रीवास्तव ने अक्वामे मुत्तहिदा की आला सतही मीटिंग में आलमी सतह पर वबा से निपटने के लिए तैयारी और कार्रवाई के तईन भारत के आजम का इरादा किया। भारत ने खलीज, बहरे अहमर और बहरे अस्वद में तिजारती जहाजों और जहाजियों पर बार बार हमले किए जाने पर तशवीश जाहिर की है। ईरान ने तजवीज रखी है कि अगर अमरीका उसकी शर्तें मान लेता है तो वो 7 दिन में आबनाए हुर्मुज को दोबारा खोल देगा। और भारतीय खवातीन की कबड्डी टीम ने 2026 के एशियाई खेलों के फाइनल में ईरान को 37-34 से शिकस्त देकर सोने का तमगा जीत लिया है। इसी के साथ आलमी खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप हमें सुन रहे हैं।

मीडियम न्यूज 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों की सुर्खियों पर। वजीर खारिजा एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में अक्वामी मुत्तहदा की जनरल असेंबली के आला सतह के जलसे से खिताब करेंगे। सेहत से मुतालिक सेक्रेटरी पूनिया सलीला श्रीवास्तव ने अक्वामी मुत्तहदा की आला सतही मीटिंग में आलमी सतह पर वबा से निपटने के लिए तैयारी और कार्रवाई के तहत भारत के अजम का इरादा किया। भारत ने खलीज बहराए अहमर और बहराए असवद में तिजारती जहाजों और जहाजियों पर बार बार हमले किए जाने पर तश्वीश जाहिर की है। ईरान ने तजवीज रखी है कि अगर अमरीका उसकी शर्तें मान लेता है तो वह 7 दिन में आबनाए हुरमुस को दोबारा खोल देगा। और भारतीय खवातीन की कबड्डी टीम ने 2026 के एशियाई खेलों के फाइनल में ईरान को 37-34 से शिकस्त देकर सोने का तमगा जीत लिया है। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। इसके साथ ही उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात का वक्त अब खत्म होता है। दिन में 3 बजे दूसरी मजलिस के साथ हम एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें।

श्रोताओं, आगे की जो कहानी है वह कुछ इस तरह है कि एक रात एक लोकल मेले में जाने के बाद सोनिया पर शंकर ने हमला किया। वे भागते भागते अमर के घर चली जाती है और तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। अकेले घर में जहां सोनिया शारीरिक उत्पीड़न का शिकार हो जाती है, बाद में अमर का जमीर उसे कचोटता है क्योंकि वह अपनी गलती छिपाने और अंजू से सगाई करने की कोशिश करता है। अंजू को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि बात क्या है।

जब अंजू को कुछ लगता है कि कुछ गड़बड़ है, उसी बीच सोनिया को पता चलता है कि वह मां बनने वाली है। वह अपने बच्चे के पिता का नाम

बताने से मना कर देती है और गांव वाले उसे गांव से निकाल देते हैं। शंकर किसी तरह ये पता लगा लेता है कि सोनिया के बच्चे का पिता कौन है और वह उससे बदला लेना चाहता है। आखिर में वह अपने ही हाथों मारा जाता है।

शंकर के मरने के बाद अमर पर उसकी हत्या का आरोप लगता है और उसकी और सोनिया के बारे में सच्चाई सामने आ जाती है। गांव वाले आखिरकार सोनिया को मारना चाहते थे। अंजू उसका साथ देती है और उसकी रक्षा करती है। आखिर में वे ये पक्का करती है कि अमर ऑफिशियली सोनिया से शादी कर ले और अपना काम पूरा होने के बाद गांव छोड़ दे।

0: पार्टी चाहिए।
1: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और हमारी आज की जो फिल्म है वो है 1954 की फिल्म अमर। और इस कार्यक्रम में मैं आपकी होस्ट दीक्षा आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो श्रोताओ, हमारे पास भर भर के संदेश आ रहे हैं, और जो हमारे पास पहला संदेश है वो है सुदर्शन शाह का। इनके साथ हैं पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्रजीत शाह। ये हमें लिखकर भेज रहे हैं नेपानगर मध्य प्रदेश से। नितेश देवांगन हमें लिखकर भेज रहे हैं, और इनके साथ है दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूनाराम देवांगन, कृष्ण देवांगन छत्तीसगढ़ से। दिग्दर्शन कौर हमें संदेश भेज रहे हैं, इनके साथ है कविता गौर। अगला जो संदेश है वो है पूनम गजनेजा का, जलालाबाद से, और इनके साथ है सुरेश गजनेजा। अजीत भावसर हमें लिखकर भेज रहे हैं, और जो अगला संदेश है वो है किशोर हिवराले का, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं कल्याण।

मुंबई से सुजाता हिबराले, प्रतीक हिबराले, गुरमीत सिंह हमें संदेश भेज रहे हैं। इनके साथ है मीता साउथ एक्सटेंशन शालीमार बाग से, अशोक कुमार सहगल, आर कुमार हमें लिखकर भेज रहे हैं मंडीखेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, फागुराम यादव हमें लिखकर भेज रहे हैं संबलपुर कांकेर से, इनके साथ हैं ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। अगला जो संदेश है वो है हरजिंदर शिंदा का, गांव नथाना पंजाब से, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता इनके साथ हैं। पिपरिया से हमें लिखकर भेज रहे हैं कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा गुप्ता, शिप्रा गुप्ता, धर्मेंद्र छीपा हमें लिखकर भेज रहे हैं और इनके साथ हैं कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार, भोपालगढ़ राजस्थान से, संजय ढींगिया हमें लिखकर भेज रहे हैं और इनके साथ हैं नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक हमें लिखकर भेज रहे हैं पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, सुर संगम रेडियो श्रोता संगम हमें लिखकर भेज रहे हैं, गुजरात से अजीत भावसर, प्रेमिका भावसर, डोल राना हमें लिखकर भेज रहे हैं और इनके साथ ये हमें लिखकर भेज रहे हैं नेहरू विहार दिल्ली से, यशमीत, यशो हमें लिखकर भेजा, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह, अविरल सिंह, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। तो आइए श्रोताओं इस फिल्म की अगली गीत की ओर बढ़ते हैं लता मंगेशकर की आवाज में।

श्रोता, हमारे पास जो अगला संदेश है वो है देवशंकर तामुरिया का। इनके साथ है अजय देव, तुषार देव, डॉली बीबी, पूजा, तामुरिया, राधिका, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं बालो छत्तीसगढ़ से। अगला जो संदेश है वो है फारूक अली खान का है। मुकेश बट्टा हमें लिखकर भेज रहे हैं कनेरा मोहल्ला पटियाला से। रोजी डिकैस्ट्रो में लिखकर भेज रहे हैं, इनके साथ है जोन डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो। और जो अगला संदेश है वो है भूषण खेरा का। इशक मोहम्मद हमें संदेश लिखकर भेजे, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर, पानीपत से हमें लिखकर भेज रहे हैं, सोनीपत से हमें लिखकर भेज रहे हैं, रोहित वशिष्ठ, इनके

आधे प्रेम सागर शुभलता अमृतसर से हमें लिखकर भेज रहे हैं। तो श्रोताओं आइए सुनवाती हूँ इस फिल्म का अगला गीत, और इसी गीत के साथ हमारा आज का कार्यक्रम भी यही समाप्त होगा।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम एक ही फिल्म से यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर ये कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे ठीक दिन के 1:10 पर। तब तक के लिए मुझे आने दीक्षा को दीजिए इजाजत। अब से कुछ ही देर में यानी 1:40 पर आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरें दे इस बुलेटिन नाल मैं यादविंदर सिंह। पहले सुनो बुलेटिन दियां खास खबरां। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अज न्यूयॉर्क च संयुक्त राष्ट्र महासभा दे 81वें उच्च पदरी सैशन नूं संबोधन करनगे। विदेश सकत्तर विक्रम मिसरी ने विकासशील देशां दी आवाज अते नुमाइंदगी नूं वधाउण लई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद च सुधार दी लोड़ ते जोर दिता। सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय दी सकत्तर पुन्या सलीला श्रीवास्तव ने आलमी महामारी नाल नजिठण लई तैयारियां नूं मजबूत करन प्रति भारत की वचनबद्धता दोहराई। भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्याकांत अज पटना च देश के पहले पीड़ित अधिकार केन्द्र का उद्घाटन करनगे। एशियाई खेड च भारत की महिला कबड्डी टीम ने ईरान नूं हरा के सोने का तमगा अपने नां कीता। हुण खबरां विस्थार दे नाल। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अज न्यूयॉर्क च 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च पदरी सैशन नूं संबोधन करनगे। इस सैशन का विषय है विश्वास बहाल करना, तब्दीली का प्रबंध, एक अजिहा संयुक्त राष्ट्र जो सारिआं लई काम करे। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सारे 193 मैंबर देशों के राष्ट्रपतियां, प्रधानमंत्रियां और सीनियर नुमाइंदे शामिल ने जो अहम अंतरराष्ट्रीय मुद्दों से अपने देशों की तरजीहां और नजरिए पेश करनगे। संयुक्त राष्ट्र मुताबक 81वां सैशन आलमी सहयोग नूं मुड़ सुरजीत करन, निरंतर विकास टीचियां नूं अगे वधाउण अते शांति, मान सम्मान ते समानता लई समूहक कार्रवाई नूं उत्साहित करन ते केंद्रित होवेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क च 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा तों अलावा रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव नाल मुलाकात कीती ते दुवल्ले मुद्दियां दे नाल नाल कई मौजूदा मुद्दियां ते चर्चा कीती। सैशन दौरान उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची नाल भी मुलाकात कीती। दोनों आगुआं ने खाड़ी संघर्ष नाल संबंधित ताजा घटनाक्रम उत्ते चर्चा कीती। ब्राजील, चीन, मिसर, इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका अते संयुक्त अरब अमीरात वाली इस समूह का जिक्र करदे जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों के आगुआ ने ब्रिक्स सहयोग की समीक्षा भी की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने एआई दीआं संभावनावां दा इस्तेमाल करन दे नाल नाल इस दे संभावी प्रभावां दा अनुमान लाउण अते जोखमां नूं घट करन दी लोड़ उत्ते जोर दित्ता है। ओह अज ग्रीस दे विदेश मंत्री जॉर्ज गेरा पेट्रिटिस दे नाल अंतरराष्ट्रीय शांति अते सुरक्षा दे संदर्भ च एआई खासकर समुद्री सुरक्षा विषय ते होए प्रोग्राम की सह प्रधानगी कर रहे सन। डॉ जयशंकर ने कहा कि एआई अते समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र विच भारत दीआं अहम तरजीहां ने। उन्हां कहा कि नवी दिल्ली ऐलाननामे विच एआई स्रोतां तक लोकतंत्रिक पहुंच, सुरक्षित अते भरोसेयोग प्रणालियां दे निर्माण, मनुखी समर्था च निवेश अते आर्थिक विकास ते समाजिक भलाई लई एआई दी वरतों ते जोर दिता गया है। विदेश सकत्तर विक्रम मिसरी ने विकासशील देशों की आवाज अते नुमाइंदगी नूं वधाउण लई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद च सुधार की लोड़ ते जोर दिता है। न्यूयॉर्क विच संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सैशन दौरान G77 के विदेश मंत्रियों की 50वीं सालाना मीटिंग च भारत की नुमाइंदगी करदिआं श्री मिसरी ने कहा कि समूहक यत्नां राहीं घट विकसित अते विकासशील देशों नूं सिर्फ नियमां की पाला करन वालिआं तों भूमिका तों अगे वध के नियम तय करन विच भाईवाल बनना चाहिदा है। उन्होंने बहुपक्षीवाद नूं लोक केंद्रित अते विकासमुखी बनाउण विच G77 की निरंतर सार्थकता ते भी जोर दिता। सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय दे सकत्तर पुन्या सलीला श्रीवास्तव ने आलमी महामारी नाल नजिठण दीआं तैयारियां नूं मजबूत करन लई भारत दी वचनबद्धता दोहराई है। ओह न्यूयॉर्क विच संयुक्त राष्ट्र दी उच्च पदरी मीटिंग नूं संबोधन कर रहे सन। उन्हां कहा कि भारत ने महामारी ते होर सेहत एमरजेंसियां नाल नजिठण लई लैबोरेटरी नैटवर्क, एमरजेंसी तालमेल, सेहत कर्मियां, जरूरी दवाईयां ते मैडिकल सहूलतां दी समर्था वधाई है। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਕਰੀਬ 100 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ 2 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਹਾਂਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ ਟੇਡਰੋਸ ਅਧਾਨੋਮ ਘੇਬ੍ਰੇਯੇਸਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ @AIR_RNU ਜਲੰਧਰ, ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ @RNU-AIR ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ @AIR ਜਲੰਧਰ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਕੇਰਲਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਕੁੰਦਰਾ ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪੁਰੀ ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਪੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਵੀ ਭਲਕੇ ਕੇਰਲਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅੱਜ ਪਟਨਾ ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੀੜਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਪੀੜਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਪਟਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ 1 ਸਾਲਾ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 3 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਏ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ SSP ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸ਼ਾਖਾ ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਪ ਬਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
2: ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਾਸੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ I-20 ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਿਲੋ 350 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਵਨ ਤੇ 6 ਪਿਸਤਲ ਸਮੇਤ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, 4 ਹੋਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ 17 ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੌਂਗ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। 1 I-20 ਕਾਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 6 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਾਊਂਟਰ

0: गंडक और बागमती समेत कई दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। सुपौल में वीरपुर कोसी बैराज के 40 गेट खोल दिए गए हैं। ये कोसी दरिया में पानी की सतह में इजाफे के तनाजुर में एहतियाती इकदाम के तौर पर किया गया है। इस दौरान मगरबी चंपारण में गंडक दरिया में पानी की सतह में इजाफा होने से नशेबी इलाकों में सैलाब का खतरा बढ़ गया है। गुज़श्ता 4 दिन के दौरान पटना और कई दीगर इलाकों में लगातार बारिश के सबब मामूलात जिंदगी भी मुतासिर हुए हैं। कई मकामात पर पानी भरने की इत्तला मिली है। पटना से सविता पारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए कौनैन हैदर।
1: छत्तीसगढ़ में बस्तर डिवीजन और वस्ती इलाकों समेत रियासत के कई अजला में 3 दिन से जारी शदीद बारिश के सबब दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो गया है। इंद्रावती दरिया खतरे के निशान से 7 फीट ऊपर बह रहा है। धमतरी जिले में गंगरेल डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं। ईरान ने पेशकश की है कि अगर अमरीका ईरान की बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी खत्म कर दे, ईरान की तेल की फरोख्त पर से बंदिशें हटा ले और लेबनान समेत जंगबंदी पर अमल करे तो वो आबनाए हुर्मुज को दोबारा खोल देगा और 7 दिन के अंदर अंदर अपने न्यूक्लियाई प्रोग्राम पर बातचीत दोबारा शुरू कर देगा। जापान के नागोया में जारी एशियाई खेलों में कबड्डी में खवातीन की भारतीय टीम ने सनसनीखेज फाइनल मैच में आज ईरान को 34 के मुकाबले 37 से शिकस्त दी। इस तरह भारत ने अपना 3रा सोने का तमगा हासिल किया। इससे पहले भारतीय मैराथन खिलाड़ी सामन बारवाल ने मर्दों के मैराथन जुमरे में 44 बरस के वक्फे के बाद भारत के लिए चांदी का तमगा जीतकर तारीख रकम की। भारत ने खवातीन के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम मुकाबलों में आज चांदी का तमगा जीता। तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की 3 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम ने 1763 प्वाइंट के साथ ये कारनामा अंजाम दिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेल 2026 में मर्दों के मैराथन में चांदी का तमगा जीतने पर सावन बारवाल को मुबारकबाद पेश की है। इस दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने स्क्वाश में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। नौम्र भारतीय खिलाड़ी अनाहत सिंह ने आलमी नंबर 6 जापान की सातोमी वातानाबा के खिलाफ मैच में जबरदस्त वापसी करते हुए फाइनल में दाखिला हासिल कर लिया। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मसनूई जहानत के जरिए पैदा होने वाले इम्कान तलाश करने की अपील की है। जनाब जयशंकर ने न्यूयॉर्क में बैन अवी अमन सलामती के पस मंजर में मसनूई जहानत के जोखिम से मुतालिक तकरीब की मुश्तरक सदारत की। जनाब जयशंकर आज दोपहर न्यूयॉर्क में 81 में अकवा मुतहदा जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने तरक्की पदी मुल्कों के लिए ज्यादा नुमाइंदगी की वकालत करते हुए अकवा मुतहदा सलामती कौंसिल में फौरी इसलाहत की अपील की है। भारतीय महकमे मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द मिडडे न्यूज। The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar calls to leverage AI-created opportunities while addressing associated risks. Co-chairs event on AI in the context of international peace and security in New York. Mr. Jayashankar to address 81st United Nations General Assembly in New York this afternoon. Foreign Secretary Vikram Misri calls for urgent UNSC reform to give developing nations greater voice. Continuous rain in Odisha, Chhattisgarh, Bihar and Uttar Pradesh disrupts normal life. Heavy rainfall alert for today over parts of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh. Iran proposes deal to reopen Strait of Hormuz in 7 days if US meets its conditions. US rejects the proposal. Indian women's kabaddi team clinches gold beating Iran at Asian Games, wins 2 silver medals in women's shooting and men's marathon. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has emphasized the need to harness the possibilities offered by AI, anticipate its consequences and mitigate its risks. The minister made these remarks while co-chairing an event on AI in the context of international peace and security with an emphasis on maritime security alongside Foreign Minister of Greece George Yerapetrates. During the event, Dr. Jayashankar reaffirmed that AI and maritime security remain important priorities for India at the United Nations. He highlighted that the New Delhi Declaration emphasizes democratic access to AI resources, building secure and trustworthy systems.

0: frame of social change. Union Home Minister Amit Shah will arrive in Keralam today. Mr. Shah will inaugurate women empowerment initiatives in the cooperative sector at Kundara. Later, he will attend the Amrita Kirti Puraskar ceremony at Amritapuri. Minister of State for Science and Technology Dr. Jitendra Singh launched 5 new popular science magazines in Tamil, Telugu, Marathi, Bengali and Assamese on the occasion of the 85th Foundation Day at the Council of Scientific and Industrial Research or CSIR. The magazines were published by the CSIR National Institute of Science Communication and Policy Research. The ministry said that the release of the magazines mark an important expansion of CSIR National Institute of Science Communication and Policy Research's popular science publishing portfolio. India has made a strong medal haul at the IIT Nagoya Asian Games today, adding 4 medals across kabaddi, athletics, shooting and squash. The latest results have taken India's overall medal tally to 27. A report.
1: The Indian women's kabaddi team clinched the gold medal, defeating Iran 37-34 in a closely contested final. Captain Pushpa Rana led India to victory. In athletics, Savan Barwal bagged silver in the men's marathon, ending India's 44-year wait for a podium finish in the discipline, clocking 2 hours, 11 minutes and 37 seconds. His performance marked a personal best and a new national record. In shooting, Tilotama Sen, Vidarsaki Vinod and Ashi Choksi secured silver in the women's 50-meter rifle 3-position team event, scoring 1,763 points. In mixed double squash, Joshna Chinnappa and Vilvan Senthil Kumar won bronze. With these 4 medals, India are currently placed 12th in the medal standings and its overall tally has reached 27 with 3 gold, 11 silver and 13 bronze. Komadi Parikh, Akashwani News, Delhi.
0: And now before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar calls to leverage AI-created opportunities while addressing associated risks. Co-chairs event on AI in the context of international peace and security in New York. Mr. Jaishankar to address 81st United Nations General Assembly in New York this afternoon. Foreign Secretary Vikram Misri calls for urgent UNSC reform to give developing nations greater voice. Continuous rain in Odisha, Chhattisgarh, Bihar and Uttar Pradesh disrupts normal life. Heavy rainfall alert for today over parts of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh. Iran proposes deal to reopen Strait of Hormuz in 7 days if US meets its conditions. US rejects the proposal. Indian women's kabaddi team clinches gold, beating Iran at Asian Games, wins 2 silver medals in women's shooting and men's marathon. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। ईरान ने अमेरिका द्वारा उसकी शर्तें मानने पर 7 दिन के भीतर हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने का प्रस्ताव दिया। अमेरिका ने प्रस्ताव खारिज किया। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजी और पुरुष मैराथन में भी 2 रजत पदक हासिल किए। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने एआई की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरा पेट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे थे। एक रिपोर्ट।

0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा में एआई संसाधनों तक लोकतांत्रिक पहुंच, सुरक्षित और भरोसेमंद प्रणालियों के निर्माण, मानव क्षमता में निवेश तथा आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि समुद्री क्षेत्र में एआई से समुद्री गतिविधियों की निगरानी, खोज और बचाव, आपदा प्रबंधन तथा संदिग्ध गतिविधियों की पहचान में मदद मिल सकती है। एआई का उपयोग जहाजों, संचार नेटवर्क और समुद्र के भीतर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले साइबर अभियानों के लिए भी किया जा सकता है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों की आवाज और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G77 के विदेश मंत्रियों की 50वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री मिश्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से अल्पविकसित और विकासशील देशों को केवल नियमों का पालन करने वाले देशों की श्रेणी से आगे बढ़कर नियम तय करने में भागीदार बनना होगा। उन्होंने बहुपक्षवाद को जन केंद्रित और विकासोन्मुख बनाने में G77 की निरंतर प्रासंगिकता का भी उल्लेख किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं।
2: सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। उन्होंने कोविड महामारी से मिले अनुभवों को दीर्घकालिक निवेश, मजबूत संस्थागत क्षमता और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों में बदलने पर बल दिया। उन्होंने आवश्यक स्वास्थ्य उत्पादों तक सभी देशों की समान और उचित पहुँच की आवश्यकता का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के दौरान भारत ने करीब 30 करोड़ वैक्सीन की खुराक लगभग 100 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को उपलब्ध कराई। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परिसर में स्थापित किया गया है। ये केंद्र विभिन्न अपराधों के पीड़ितों, जिनमें अदृश्य पीड़ित भी शामिल हैं, को एक ही स्थान पर कानूनी अधिकार और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा। यहां पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक सहयोग, परामर्श और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि बच्चों में नशे की लत को केवल जन स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं बल्कि बाल संरक्षण के विषय के रूप में भी देखा जाना चाहिए। वे आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जोन ए में 16,726 अनधिकृत निर्माणों को सील कर ध्वस्त करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने शहर के 3 अन्य क्षेत्रों में अवैध निर्माण को लेकर भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 85वें स्थापना दिवस के अवसर पर तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और असमिया भाषाओं में 5 नई लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं का शुभारंभ किया।

0: इन पत्रिकाओं को सीएसआईआर राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान ने प्रकाशित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 358 तालुकों में से 265 को सूखा प्रभावित घोषित किया है, जो राज्य का 74% हिस्सा है। 32 जिलों में बारिश की कमी और लंबे समय तक सूखे की स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। ओडिशा में कम दबाव की वजह से लगातार हो रही बारिश ने राज्य के कई हिस्सों, खासकर उत्तरी जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। एक रिपोर्ट।
1: लगातार हो रही बारिश ने उत्तरी ओडिशा में तबाही मचा दी है, जिससे बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर में बाढ़ का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। आखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे भद्रक और जाजपुर के कुछ हिस्सों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के कारण केओंझर में जोड़ा के पास राणासाला घाट पर भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, जहां चट्टानों और मिट्टी के गिरने से लोगों और वाहनों को आवाजाही के लिए खतरा पैदा हो गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: बिहार में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है।
2: राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले चार दिनों से हो रही लगातार बारिश से कोसी, गंडक और बागमती समेत कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। सुपौल में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए एहतियातन वीरपुर कोसी बैराज के 40 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं पश्चिम चंपारण में गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पटना समेत कई स्थानों पर हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उत्तर प्रदेश में बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के 63 जिले तेज बारिश की चपेट में हैं और पूरे राज्य में सिर्फ एक दिन में औसत से 19 गुना ज्यादा बारिश हुई है। सभी जिलों में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी दिन में कुछ स्थान पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जनसेवा के जरिए देश सेवा के मंत्र और अटूट संकल्प के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 साल पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी विजन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि कैसे अहमदाबाद स्थित गिफ्ट सिटी जैसी दूरदर्शी पहलों के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है। एक रिपोर्ट।
3: वर्ष 2008 में परिकल्पित और भारत के पहले ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी आधुनिक शहरी नियोजन और वैश्विक वित्त के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। स्वचालित कचरा संग्रहण प्रणाली, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम और समर्पित यूटिलिटी टनल जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ निर्मित गिफ्ट सिटी भारत का पहला कार्यात्मक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बन चुका है। गिफ्ट सिटी की दूरदर्शी नींव और उसके विकास पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
4: 2008 में वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस और रिसेशन का दौर था, लेकिन उस समय गुजरात फिनटेक के क्षेत्र में नए और बड़े कदम बढ़ा रहा था। मुझे खुशी है कि वो आइडिया आज इतना आगे बढ़ चुका है। गिफ्ट सिटी कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के हब के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। गिफ्ट सिटी वेल्थ और विजडम दोनों को सेलिब्रेट करता है। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगता है कि गिफ्ट सिटी के जरिए भारत विश्व स्तर पर सर्विस सेक्टर में मजबूत दावेदारी के साथ आगे बढ़ रहा है।
3: इस अनूठे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
5: माननीय प्रधानमंत्री जी के गुजरात में निर्मित हुआ एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है गिफ्ट सिटी। आमतौर पर रियल एस्टेट के विकास का एक ट्रेंड होता है कि पहले उद्योग आते हैं, फिर लोग आकर बसते हैं और आवश्यकता अनुसार डेवलपमेंट होता है।
3: आज गिफ्ट सिटी भारत के बढ़ते प्रभुत्व का एक जगमगाता प्रतीक बन चुका है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: यह समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव

खारिज कर दिया है जिसमें 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और क्षेत्र में जारी संघर्ष समाप्त करने की बात कही गई थी। ईरान फिलहाल अमरीका के आधिकारिक जवाब का इंतजार कर रहा है। ईरान ने प्रस्ताव दिया था कि सभी मोर्चों पर 7 दिन के भीतर संघर्ष समाप्त किया जाए, अमरीका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाए, ईरान की जब्त धनराशि जारी करे और उसके तेल पर लगे प्रतिबंधों में छूट दे। इसके बाद होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की बात कही गई थी। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। एशियाई खेलों में भारत का यह तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने महिला कबड्डी टीम को खिताब बरकरार रखने पर बधाई दी है। एशियाई खेलों में भारत के सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पुरुष मैराथन में रजत पदक जीतने वाले सावन बरवाल को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन, धैर्य, टीम भावना और दृढ़ संकल्प ने देश को गौरवान्वित किया है। भारत की तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तुकड़ी ने एशियाई खेलों में आज महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता और तिलोत्तमा व्यक्तिगत स्पर्धा में 4थे स्थान पर रहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और कोचालुमकल और आशी चौकसी को बधाई दी है। स्क्वाश में अनाहत सिंह ने जापान की सतोमी वातानाबे को हराकर महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पुरुष सिंगल्स में अभय सिंह ने भी पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान को हराकर गोल्ड मेडल राउंड में प्रवेश किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्री आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजी और पुरुष मैराथन में भी 2 रजत पदक हासिल किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मेरे में 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो घड़ी में 2:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, किसी अभिनेता को सदाबहार कहना इतना आसान नहीं होता, लेकिन हिंदी सिनेमा में एक नाम ऐसा है जिसके साथ ये शब्द जैसे खुद ब खुद जुड़ जाता है। हम बात कर रहे हैं देवानंद साहब की। एक ऐसा चेहरा जिसमें जवानी की चमक थी, एक ऐसा अंदाज जिसकी नकल कईयों ने की, और एक ऐसी आवाज जिसमें रफ्तार थी, एक ऐसा दिल जो हमेशा आने वाले कल के सपने देखता। आज एक ही कलाकार ने सफर उस कलाकार की जिसने 6 दशकों से ज्यादा लंबे समय तक फिल्मी जीवन में 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया, अभिनेता के साथ निर्माता, निर्देशक, लेखक के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। तो आइए देव साहब की जिंदगी को उनके गीतों के साथ याद करते हैं।

किया। बाजी के बाद बॉम्बे नायर सिनेमा की शुरुआत हुई और इसे महत्वपूर्ण फिल्मों में गिना जाता है। यानी जिस सफर की शुरुआत एक संघर्षशील नौजवान ने की थी, वो धीरे धीरे स्टारडम की ओर बढ़ रहा था।

श्रोताओं, देवानंद साहब का सफर शुरू हुआ 1946 में। फिल्म थी हम एक हैं, लेकिन मंजिल इतनी आसान नहीं थी। 1948 की जिद्दी ने पहली बड़ी सफलता दी और 1951 की बाजी ने देवानंद साहब को उस दौर के प्रमुख सितारों की कतार में लाकर खड़ा

एक ही कलाकार कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेता देवानंद साहब की। श्रोताओं, 50 का दशक आया तो देवानंद साहब के नाम के साथ एक नया अंदाज जुड़ चुका था। टैक्सी ड्राइवर, सीआईडी, पेइंग गेस्ट, कालापानी, एक के बाद एक यादगार फिल्में। और देवानंद साहब सिर्फ अभिनय नहीं कर रहे थे, वो एक नया स्क्रीन परसोना भी गढ़ रहे थे। तेज संवाद, हल्की सी झुकी हुई चाल, गर्दन हिलाने का एक खास अंदाज और चेहरे पर हमेशा मौजूद वो आत्मविश्वास।

श्रोताओं, देवानंद साहब का रोमांटिक अंदाज दर्शकों के दिलों में जगह बना चुका था। लेकिन देव साहब की कहानी सिर्फ रोमांस की कहानी नहीं है, वो जोखिम लेने वाले कलाकार भी थे। 1949 में उन्होंने अपने भाई चेतन आनंद और विजय आनंद के साथ नवकेतन की स्थापना की और आगे चलकर यही बैनर उनके कई महत्वपूर्ण सिनेमाई कार्यक्रमों का यानी कि प्रयोगों का माध्यम बना। और फिर आया 1961।

यहीं रुकने वाले नहीं थे। इसके लिए उन्होंने सिनेमा को एक नए अंदाज में देखना शुरू किया, हर बार कुछ नया। और इसी तलाश में 1965 की उस फिल्म तक वो पहुंचे जिसने उनके कैरियर को एक नई ऊंचाई थी। फिल्म का नाम था गाइड। तो आइए इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं।

दोस्तों गाइड में देवानंद साहब ने राजू का किरदार निभाया था और ये वही देवानंद साहब थे जिनको दर्शकों ने रोमांटिक नायक के रूप में देखा। लेकिन राजू आसान किरदार नहीं था, इसमें प्रेम था, महत्वाकांक्षा थी, गलतियां थी और अंत में आत्मबोध भी। फिल्म देवानंद के लिए अभिनय की बड़ी उपलब्धि बनी और गाइड फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। इस फिल्म में और बहुत सारे पुरस्कार जीते और देवानंद साहब की अगर हम बात करें तो 60 का दशक खत्म होते होते देवानंद साहब सिर्फ एक अभिनेता नहीं रहे, वो एक स्टाइल बन चुके थे। और फिर आया 1970 जॉनी मेरा नाम। यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफल फिल्मों में शामिल रही। आइए इस फिल्म का एक गीत आपको सुनाते हैं।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: हमारे श्रोता सुन रहे कार्यक्रम में एक ही कलाकार और आज हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेता देवानंद साहब की। श्रोताओं, देवानंद साहब की खासियत ये थी कि वो अपने समय से बहुत आगे चलते और कभी कभी वो समय के साथ भी चलते। जहां एक तरफ वो रोमांटिक नायक की पहचान बना चुके थे, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक मुद्दों और नए विचारों को फिल्मों में जगह देने की उनकी इच्छा और सरोकार हमेशा आगे रहता। उनके सिनेमा में सामाजिक सरोकार में उन मुद्दों को जरूर शामिल किया जो लोगों की जिंदगी को छूते थे।

श्रोताओं, देवानंद साहब को पद्मभूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 6 दशकों से ज्यादा लंबा सफर। लेकिन देवानंद साहब को शायद पुरस्कारों से ज्यादा पसंद था काम करते रहना। वो आखिरी वर्षों तक फिल्मों में काम करते रहे और उनकी अंतिम फिल्म चार्जशीट 2011 में आई। देवानंद साहब की पूरी जिंदगी को अगर एक गीत में समेटना हो तो इससे बेहतर पंक्ति मिलना मुश्किल है। जिंदगी जैसी मिली उसे स्वीकार किया, मुश्किलें आई तो आगे बढ़ते रहे, दौर बदला तो खुद को बदलते रहे और उम्र बढ़ी लेकिन उनके भीतर का कलाकार कभी बूढ़ा नहीं हुआ। इसलिए देवानंद साहब सिर्फ एवरग्रीन स्टार नहीं थे, वो हिंदी सिनेमा के उस दौर की याद हैं जब गीत कहानी का हिस्सा हुआ करते थे, जब नायक का अंदाज फैशन बन जाता था, जब एक अभिनेता अपने सपनों के साथ पूरी फिल्म इंडस्ट्री को भी आगे ले जाने की कोशिश करता। ये थे देवानंद हमारे

आज के एक कलाकार के सितारे श्रोताओ, मैं हूं आपका दोस्त। अब मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे किसी और कलाकार की कहानी और उसके सदाबहार गीतों के साथ। नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के कलाकार थे देवानंद साहब। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 800 नीति।

से कुछ ही देर के बाद यानी 3:05 पर खबरें नशे की जाएंगी और 3:15 पर मेरी पसंद प्रोग्राम के तहत आप सुनेंगे चंद फिल्मी नगमे। सुबह 3:30 सूबाई लोकगीतों के प्रोग्राम में आज हम आपको सुनवाएंगे राजस्थानी लोकगीत। शाम 4:00 आप लुत्फंदोज होंगे फिल्मी मौसीकी से। फिल्मी नाफमों का यह प्रोग्राम जारी रहेगा 4:50 तक। शाम 4:50 पर खबरें नशे की जाएंगी और शाम 5:00 उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। सामिन, ये था एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशो नारे प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: तमगा जीता। वहीं कजाकिस्तान ने 1754 पॉइंट्स के साथ कांस्य का तमगा अपने नाम किया। सदर जमहूरी द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेल 2026 में मर्दों के मैराथन में चांदी का तमगा जीतने पर सावन बारवाल को मुबारकबाद पेश की है। इस दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने स्क्वैश में भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। नवंबर भारतीय खिलाड़ी अनहत सिंह ने आलमी नंबर 6 जापान की सतोमी वतानबे के खिलाफ मैच में जबरदस्त वापसी करते हुए खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में दाखिला हासिल कर लिया। वहीं मर्दों के सिंगल्स में भारत के अभय सिंह ने भी पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान को 3-0 से शिकस्त देकर सोने के तमगे वाले राउंड में पहुंच गए हैं। इन कामयाबियों के बाद भारत 27 तमगों के साथ 12वें पायदान पर पहुंच गया है। इनमें सोने के 3, चांदी के 11 और कांसे के 13 तमगे शामिल हैं। इस दौरान सदर जमहूरी द्रौपदी मुर्मू ने एशियन गेम्स 2026 में खवातीन के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम मुकाबले में चांदी का तमगा जीतने पर तिलोत्तमा सेन, विदर्श विनोद और आशी चौकसी को मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि इन खिलाड़ियों की कामयाबियों से टीम वर्क की ताकत पर मुश्तरक अजम का इजहार होता है। सदर जमहूरिया ने मिक्स डबल्स स्क्वैश मुकाबले में कांस्य का तमगा जीतने पर जोशना चिनप्पा और सेंथिल कुमार वेलवन को भी मुबारकबाद दी है। इसके अलावा सदर जमहूरिया ने खवातीन की भारतीय कबड्डी टीम के लिए भी शानदार कारकर्दगी पर उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मसनू जहानत के जरिए पैदा होने वाले इम्कान तलाश करने की अपील की है। जनाब जयशंकर ने न्यूयॉर्क में बैन अवी अमन सलामती के पास मंजर में मसनू जहानत के जोखिम से मुतालिक तकरीब की मुश्तरक सदारत की। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिसरी ने तरक्की पजीर मुल्कों के लिए ज्यादा नुमाइंदगी की वकालत करते हुए अकवा मुतहदा सलामती काउंसिल में फौरी असलाहत की अपील की है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत में सेक्रेटरी पुण्या सलीला श्रीवास्तव ने न्यूयॉर्क में अकवा मुतहदा की आला सतही मीटिंग में आलमी सतह पर वबा से निमटने के लिए तैयारी और कार्रवाई के तई भारत के अजम का इदा किया। और ईरान ने अमरीका की जानब से शरायत मान लिए जाने की सूरत में 7 दिन के अंदर आबनाए हुरमुज दोबारा खोलने से मुतालिक तजवीज पेश की है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडेज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। मेरी पसंद ये प्रोग्राम लेकर आपका मेजबान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश नागिन फिल्म का नगमा लता मंगेशकर और हेमंत कुमार का गाया हुआ। मौसीकी तरतीब दी खुद हेमंत कुमार ने।

सूबाई लोकगीतों के प्रोग्राम में अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोकगीत, फनकार थी रेखा व्यास और हमनवर।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। डीएम से खेदारे खत्ते के लोग मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फेडेश पर हमारे नशा जारी हैं। और लीजिए सुनिए फिल्मी नगमे। फिल्मी मौसीकी का आगाज करें CID फिल्म के नगमे से, आवाज आशा भोसले, शमशाद बेगम और मोहम्मद रफी की। नगमा निगार मजरू सुल्तानपुरी, मौसीकी OP नैयर की।

यह है बम्बई का बाबू फिल्म का नगमा आशा भोसले और मोहम्मद रफी का गाया हुआ, मौसीकी एस जी बर्मन की।

यंगेस्ट फिल्म का नगमा सुन रहे थे अभी किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में मौसीकी एसडी बर्मन की थी। और लीजिए सुनिए जब प्यार किसी से होता है, इस फिल्म का नगमा मोहम्मद

16 साल फिल्म का ये नगमा सुन रहे थे आशा भोसले, मोहम्मद रफी और सुधा मल्होत्रा की आवाजों में। और इसे सुनिए माया फिल्म का दो गाना, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की है।

तेरे घर के सामने। इस फिल्म का नाम सुनिए, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। इस नाटक को कलमबंद किया हसन जयपुरी ने और तर्ज बनाई एस जी बर्मन ने।

अमरती फिल्म का ये नगमा सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। नगमा निगाह थे राजेंद्र कृष्ण, मौसीकी सी राम चंद्र की थी। वाली जब सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में इस प्रोग्राम का अगला नगमा, माफ कीजिए, किशोर कुमार का साथ दे रही हैं आशा भोसले। फिल्म है 9/11।

और लाइबेरिया दोनों की तरफ से किए जाने वाले नए इकदाम का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारत जहाजियों का एक बड़ा वसीला है और लाइबेरिया जहाज रानी की दुनिया की सबसे बड़ी रजिस्ट्री है। ये दोनों मुल्क समंदर में हिफाजत और सलामती को मुस्तहकम बनाने के मकसद से यकजा हुए हैं। इस कदम का मकसद समंदर में मजीद हिफाजत के लिए एक मुशावरती फ्रेमवर्क कायम करना है और इस बात को यकीनी बनाना है कि इस शोबे के तहत किए जाने वाले मुजाकरात में अहम फरीकों की और ज्यादा अहमियत है। उन्होंने खलीज ओमान में एंटीगुआ और बरबूदा के परचम बरदार एक बड़े जहाज एमवी कैप दाओ पर हालिया हमले की तरफ इशारा किया जिसमें एक भारतीय जहाजी की मौत हो गई थी। जनाब जयशंकर ने पनामा के परचम बरदार तेल टैंकर एल गाइया का भी जिक्र किया जिस पर आबनाई हुरमुज में हमला किया गया था जिसके नतीजे में भारतीय जहाज के अमले का एक रुकन लापता बताया गया था। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने अकवाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में इसलाहात की फौरी जरूरत पर जोर दिया है ताकि इस इदारे में तरक्की पजीर मुल्कों की ज्यादा से ज्यादा नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जा सके। न्यूयॉर्क में अकवाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 81वें इजलास के मौके पर G77 वज़राए खारजा की 50वीं सालाना मीटिंग के मौके पर भारत की तरफ से बयान देते हुए जनाब मिस्री ने आलमी खित्ते जनूब के मुल्कों को जाब्तों पर अमल आवरी करने वाले मुल्कों के बजाय जाब्ते तश्कील देने वाले मुल्क बनाने की खातिर मुश्तरका इकदामात पर जोर दिया है। उन्होंने अवाम पर मरकूज और तरक्की पजीर मबनी कसीर रुखे निजाम में G77 की मुसलसल अहमियत पर भी जोर दिया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ईरान ने पेशकश की है कि अगर अमरीका ईरान की बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी खत्म कर दे तो ईरान की तेल की फरोख्त पर से बंदिशें हटा ले और लबनान समेत जंग बंदी पर अमल करे तो वो आबनाए हुरमुज को दोबारा खोल देगा और 7 दिन के अंदर अंदर अपने न्यूक्लियाई प्रोग्राम पर बातचीत दोबारा शुरू कर देगा। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराग़ची ने तजवीज की तफसीलात अकवाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के बाहर नामा निगारों को बताई। उन्होंने कहा कि ईरान अमरीका के साथ अपने न्यूक्लियाई प्रोग्राम के बारे में तातुल के शिकार बातचीत दोबारा शुरू कर दी गई जाएगी। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत में सेक्रेटरी पूनिया सलीला श्रीवास्तव ने न्यूयॉर्क में अकवाम मुत्तहिदा की आला सतही मीटिंग में आलमी सतह पर वबा से निपटने के लिए तैयारी और कार्रवाई के तई भारत के अज़्म का इआदा किया। मीटिंग से खिताब करते हुए सेक्रेटरी मौसूफ ने हुकूमत और समाजी सतह पर वबाई बीमारियों की रोकथाम और कार्रवाई के तई भारत के मरबूत हिकमत अमली पर जोर दिया जिसमें सेहत से मुतालिक मुमकिन तौर पर कई हंगामी हालात का इहाता किया गया है। उन्होंने सेहत से मुतालिक हंगामी सूरतहाल से मौसर तौर पर निमटने के मकसद से निजाम को सहूलियात से आरास्ता करने की खातिर लेबोरेटरी नेटवर्क हंगामी हालात में तालमेल तिब्बी अफरादी कुव्वत और तिब्बी निगहदाश्त की सलाहियत के सिलसिले में भारत की तरफ से किए गए इकदाम के बारे में बताया। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। वहीं महकमा मौसमियात ने आज बिहार हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली हिमाचल प्रदेश झारखंड ओडिशा जैली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम के कुछ मकाम पर दरमियाने से दर्जे से शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। छत्तीसगढ़ में बस्तर डिवीजन और बस्ती इलाकों समेत रियासत के कई अजला में 3 दिन से जारी शदीद बारिश के सबब दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो गया है। इंद्रावती दरिया खतरे के निशान से 7 फीट ऊपर बह रहा है। धमतरी जिले में गंगरेल डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं जिसके सबब महानदी दरिया में पानी की सतह में तेजी से इजाफा हो गया है। बारिश के मद्देनजर रियासती हुकूमत ने आज सभी स्कूलों में 1 दिन की छुट्टी का ऐलान किया। जापान के नागोया में जारी एशियाई खेलों में कबड्डी में खवातीन की भारतीय टीम ने सनसनीखेज फाइनल मैच में आज ईरान को 34 के मुकाबले 37 से शिकस्त दी। इस तरह भारत ने अपना तीसरा सोने का तमगा हासिल किया। इससे पहले भारतीय मैराथन खिलाड़ी सावन बारवाल ने मर्दों के मैराथन जुमरे में 44 बरस के वक्फे के बाद भारत के लिए चांदी का तमगा जीतकर तारीख रकम की। भारत ने खवातीन के 50 मीटर
رائفل تھری پوزیشن ٹیم مقابلوں میں آج

0: गांधी का तमगा जीता। तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तीन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम ने 1763 पॉइंट्स के साथ ये कारनामा अंजाम दिया। सभी जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेल 2026 में मर्दों के मैराथन में चांदी का तमगा जीतने पर सावन बारवाल को मुबारकबाद पेश की। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर खारजा डॉ एस जय शंकर ने मसनू जहानत के जरिए पैदा होने वाले इम्कान से इस्तीफादा करने की अपील की है। जनाब जयशंकर आज न्यूयॉर्क में 81वें अकवाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली इजलास से खिताब करेंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 5 बजे जाते हैं हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात, अब इख्तिताम पजीर होती हैं। शब के 9:15 पर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। 15 मिनट पर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
2: नमस्कार। एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी दा ए अमृतसर केंद्र है। तो सुन रहे हो आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस दिन दे पंजाबी सेवा। शाम दे 5 बजे ने हुन साडी दूजी सभा शुरू हुंदी है। सभा दी शुरुआत चो सब तो पहला सुनदे हां सारा एक प्रोग्राम चोक माहिती।

0: नहीं पता कि कितनी बड़ी खुशखबरी है, मेको है सुन के कितना सुकून मिलया, मैं दस निम्मी सकदी। मलिका ने खुशी खुशी अपने गले तो हार लहाया ते फौरन अपने सिपाही को दे दिता। सिपाही दे वेंदे ही कुछ देर बाद ओ बोना शख्स रोशनी दे नाल वलन नमुदार थिया ते पुछया, हाँ मलिका आलिया, ते दसो के क्या है मेरा नाम। मलिका ने पहले जान बुझ के एक गलत नाम दसा, तेरा नाम है जैक। बोना खिलन लगा, नहीं ए मेरा नाम कैनी। अच्छा वल हैरी तेरा नाम है, मलिका ने आख्या। बोने का जवाब भाई बिल्कुल नहीं। हुन मलिका ने बोने को आख्या के तेरा नाम है रंपल स्टील। रंपल स्टील सुन दे ही बोना शख्स हैरान थी गया, तो आकू मेरा नाम क्या डसाया। उस गुस्से नाल अपना पैर जमीन ते मारा ते हुंदा गोडा टूट गया ते वो जमीन ते ढह पिया। वल्ला हूं अपने खब्बे पैर को इतनी जोर नाल छिकिया के ओ दो हिस्सा विच तकसीम थी गया। हूं वेले ही रोशनी दी दल लकीर चमकी ते रंपल स्टील दा खात्मा थी गया। मलिका अपने बाल ते बादशाह नाल खुशी खुशी रावण लग गई।
1: मैं ब्याजन नारायण तुम्हारे सामने समाजिक अंधारे को पेश करना चाहना, आप गौर से सुनेंगे। तो पहला अंधारा हया कहनी, वफा कहनी, गरीबा ते दया कहनी, इतना लुट मार डाढ़ी है तो मिलती भी सजा कहनी। तो हम जी कोई नहीं सुनता जिन्हें मुंह अला कहनी, अंधारा ही अंधारा है किसे भी सोझला कहनी। अंधारा सुनो, इलेक्शन में तो नारे हम असा पैरस बना दे सुन, असा सिमर बना दे सुन, नया सड़का बना दे सुन, वह चाल बेडंगी जो पहले है वो आम भी है। वह चाल बेडंगी किसे लंगड़ा रहा को नहीं, अंधारा ही अंधारा है किसे भी सोझला कहनी। एक ब्याह धारा कड़े वसल नहीं मिलते, वसल समझ जाओ आलू आलू का वसल, वसल प्याज का कड़े वसल नहीं मिलते, कड़े आलू दे हिलाले, गऊ माता दे गावे भी कड़े न लोग घोटाले। कड़े वसल नहीं मिलते, कड़े आलू दे हिलाले, गऊ माता दे गावे भी कड़े न लोग घोटाले। हर एक जो भ्रष्टाचारी है कोई डोदा बजा कहनी, अंधारा ही किसे भी सोझला कहनी। ब्याह धारा देखो, कोई हक मार दूजे का बनेगा पे नवी कोठी, कोई हक मार दूजे का बनेगा पे नवी कोठी, कोई मेहनत करेगा है तो मिलती है सुखी रोटी। लुटे नहीं कुटे नहीं करेगा कोई भला कहनी, अंधारा ही अंधारा है किसे भी सोझला कहनी। एक अंधारा देखो, आजकल बच्चे समझा वगैरह नहीं करेंगे और उन्होंने तरीके में हमर संध्या करेंदा नहीं, हमर संध्या करेंदा नहीं जरा हथा में है पालिया, हमर संध्या करेंदा नहीं जरा हथा में है पालिया। उम्र कच्ची है बल दे आख दे आती के खड्डा ला, हमर संध्या करेंदा नहीं जरा हथा में है पालिया, उम्र कच्ची है बल दे आख दे आती के खंडा ला। जिथा देखो है बेशर्मी किसे शर्मो हया कहनी, अंधारा ही अंधारा है किथे नहीं सोझला कहनी। एक अंधारा ना मारो पेट दे अंदर, ना मारो पेट दे अंदर अल्ट्रासाउंड करवा के, ना मारो पेट दे अंदर अल्ट्रासाउंड करवा के, बनो ना पाप दे भागी कच्ची कली को तड़पा के, न बनो पाप दे भागी कच्ची कली को तड़पा के। मैं कन्या हाँ मैं कमसन हाँ, मेरे मुंह च आला कहनी, अंधारा ही अंधारा है किथे नहीं सोझला कहनी। हम इंतजार करती है स्वामी दयानंद को, हम आ स्वामी दयानंद आ, हम आ स्वामी दयानंद आ तेरी दाढ़ी जरूरत है, हम आ स्वामी दयानंद आ तेरी दाढ़ी जरूरत है। अंधी श्रद्धा है हर जाते दिला में भी कदूरत है, अंधी श्रद्धा है हर जाते दिला में भी कदूरत है। इथा स्वामी बहु आगन, इथा स्वामी बहु आगन, मगर तेरे जिया कहनी, अंधारा ही अंधारा है किसे भी सोझला कहनी, अंधारा ही अंधारा है। आखिरी बंद नारंग करना सच्ची गाल, नारंग करना सच्ची गाल क्या तू नेकनियत है, नारंग करना सच्ची गाल क्या तू नेकनियत है, नसीहत बेग प्यारे नी मगर खुद तू फसीयत है। इतना सच कूड़ आखण दे रत्ती भर भी जगा कहनी, ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਕੋਲ ਆਖਣ ਦੇ ਰੱਤੇ ਭਰੇ।

देश पंजा प्रोग्राम सुनने वाले सारे ही श्रोतियां नूं करमजीत वालों प्यार भरी नमस्कार आदाब ते सत श्री अकाल। हाजिर हो दोस्तों अज के देश पंजा प्रोग्राम के सिलसिले लैके। अज देश पंजाब दे विच की खास है उस तुहानु जाणू करवा दवां। अज तुम तो थोड़ी देर बाद अज दी गल तुहाडे नाल मैं सांझी करांगी। 5:40 ते खबर सार सिलसिला तुहाडी नजर करांगी, जिस दे विच अज चर्चा च शामिल होंगे गीता वर्मा ते कुलदीप सिंह बेदी ते 6:10 ते पंजाबी गीत थानू सुनवाए जाणगे। सो दोस्तो शुरुआत करदे आं प्रोग्राम दी अज दी गल दे नाल।

0: कार्यक्रम किसान वाणी दे प्रायोजित ने खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्रालय भारत सरकार।
1: किसान वीरों जे तुसी सरों सोयाबीन मूंगफली तिल सूरजमुखी या होर तेल बीज फसलां दी काश्त करते हो तो तुहाडे लई एक लाभदायक सहायता सेवा उपलब्ध है ऑल सीड्स किसान मित्रा। ए सेवा भारतीय खेतीबाड़ी खोज परिषद ICAR दे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड्स रिसर्च हैदराबाद वालों किसानां नूं तेल बीज फसलां संबंधी खेतीबाड़ी सलाह देने लई शुरू कीती गई है। किसान वीरो ए सेवा राही तुसी फसल दी किस्म बिजाई खादां दी वरतों सिंचाई कीड़े मकौड़ियां अते बीमारी दी रोकथाम अते फसल दी सुचज्जी संभाल नाल संबंधित सवाल पूछ सकते हो। इस लई अपने मोबाइल फोन विच 40 24 59 81 80 नंबर नूं ऑयल सीड्स किसान मित्रा दे नाम नाल सेव करो अते व्हाट्सएप राही अपना खेतीबाड़ी संबंधी सवाल पूछो। ए सेवा किसानां नूं तेल बीज फसलां बारे विज्ञानक अते खोज आधारित जानकारी प्राप्त करन विच मदद कर सकती है। सो किसान वीरो आधुनिक टेक्नोलॉजी नूं खेती नाल जोड़ो अते अपनी फसल दे नाल संबंधित सही जानकारी लई ऑयल सीड्स किसान मित्रा नाल व्हाट्सएप राही संपर्क करो। नंबर एक बार फिर तो नोट कर लो 40 24 59 81 80। वधेरे जानकारी लई जुड़े रहो आकाशवाणी जलंधर दे किसान वाणी प्रोग्राम नाल।
2: नमस्कार सत श्री अकाल जय हिंद किसान वीरो मैं जसप्रीत कौर आकाशवाणी ते हाजिर हां तुहाडा अपना प्रोग्राम किसान वाणी लैके ते किसान वाणी दे विच असीं तुहानूं जानकारी दिंदे हां खेती तकनीकां दे बारे साडे सलाहकार तुहाडे नाल जानकारियां सांझियां करदे हां अते होर भी बहुत कुछ तुहानूं खेती संबंधी इस प्रोग्राम दे विच दस्सिया जांदा है। ते आओ फिर प्रोग्राम दा आगाज करदे हां और तुहानूं दस दईए कि अज दे इस प्रोग्राम दे विच असीं तुहानूं दस्सांगे खेती संदेश और दाल नाल खेती खबरां और उस तों इलावा एक बहुत ही भरपूर जानकारी जो कि होवेगी कमाद दे बारे। ते लो फिर करदे हां प्रोग्राम दा आगाज इस खूबसूरत गीत दे नाल।

ਦੇਖ ਨਾ ਕਰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਆ ਜਾਵੀ।

0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सरकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
1: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
0: श्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी, राज्य सरकार के मंत्री एम लीजू, पीसी विष्णुनाथ, सांसद एनके प्रेमचंद्रन, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक राजीव चंद्रशेखर तथा अन्य गणमान्य उपस्थित थे। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO के बाद इन दस्तावेजों को इसी नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। यह निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने स्पष्ट किया कि ऐसे व्यक्तियों को मतदाता पंजीकरण अधिकारी सुनवाई के लिए नहीं बुलाएंगे। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। यह निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनिसंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान ATM से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेनदेन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम समूचे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग लेंगे। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश को विमानन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कुर्नूल को विमानन और ड्रोन गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल हवाई अड्डे पर एक कार्यक्रम में श्री नायडू ने कहा कि उनका ध्यान केवल हवाई अड्डों पर नहीं बल्कि पायलट प्रशिक्षण, रखरखाव, जमीनी संचालन और हवाई अड्डा प्रबंधन को शामिल करते हुए संपूर्ण विमानन इकोसिस्टम के निर्माण पर है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तरजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। उधर तिलोत्तम्मा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। प्राची चौधरी ने महिला 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। स्क्वॉश में जोशना चिनप्पा और वेलावन संथिल कुमार की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य समेत 30 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम किसान वाणी में आपसे साझा करते हैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो हमारे कृषि जीवन को आसान करती हैं, जिसमें विशेषज्ञ वैज्ञानिक और डॉक्टर्स की सलाह होती है। कहीं ना कहीं कार्यक्रम का उद्देश्य होता है कि घर बैठे हमारे किसान भाई बहनों को समसामयिक जो भी खेती किसानी कर रहे हैं, यदि उसमें कोई समस्या आ रही है तो उसका समाधान उन्हें कार्यक्रम किसान वाणी के माध्यम से मिल जाए।
4: बिल्कुल, और किसान वाणी कार्यक्रम के माध्यम से हम रोचक जानकारी तो देते ही हैं, साथ ही साथ मनोरंजन का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। और आपका समय की बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, तो समय का सदुपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम अपने पशुओं का देखभाल कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने परिवार के लिए और ज्यादा मदद कर सकते हैं और किस तरीके से उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, ये सभी जानकारी आपको मिल पाएगी किसान वाणी कार्यक्रम में।
3: बिल्कुल सीमा, और वहीं कार्यक्रम किसान वाणी में भाई किसी न किसी ऐसी योजना पर भी हम चर्चा करते हैं जो सीधे सीधे हमारे किसान भाई बहनों के लिए उपयोगी होती है। मित्रों, ऐसी ही एक योजना है किसान क्रेडिट कार्ड योजना।
4: बिल्कुल अमित, आज हम बात कर रहे हैं किसान भाइयों के लिए खास तौर पर किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जो कि हम केसीसी के नाम से भी इसे जानते हैं।
3: बिल्कुल,
4: और ये सरकार की पता है सबसे पुरानी और सबसे फायदेमंद योजना है।
3: जी, वहीं सरकार का मकसद है किसानों को साहूकार के महंगे कर्ज से बचाना। भाई, हमारे किसान भाई बहनों को जब कोई भी कार्य करना है, कृषि करनी है, तो धन जरूरी होता है, और धन के लिए अब कितनी जरूरत है ये भी हमें देखना है, तो हम सीधे बैंक से ऋण ले सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से। और मित्रों, इसमें ये भी लाभ रहेगा कि जितनी हमारी जरूरत है, जितनी हमारी जमीन है, उसके हिसाब से हमें ऋण मिल जाएगा।
4: बिल्कुल, और इसमें साथ ही साथ हम सस्ते लोन के बारे में तो जानेंगे ही, साथ ही साथ हम बात करेंगे बीज, खाद, ट्रैक्टर और इसके अलावा और भी जो यंत्र हैं, किस तरह से कि हम कम पैसों में ले सकते हैं, और अब ये एटीएम कार्ड की तरह काम करता है अगर हम बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड की।
3: बिल्कुल सीमा, और वहीं पशुपालन, डेयरी, मछली पालन आदि के लिए भी ऋण आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो सामान्य ब्याज दर 7% तक होती है, समय पर भुगतान करने वाले किसानों को इसमें छूट मिल जाती है, और यह लगभग 4% या उससे कम हो जाता है, तो हमारे किसान भाई बहन लाभ उठा सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना का।
4: और इसमें कौन कौन से किसान हैं जो इस योजना का फायदा ले सकते हैं, तो हम अपनी जमीन वाले किसान खासतौर पे हम बात करेंगे, या फिर बटाईदार जो होते हैं, किराए पर जो खेती करने वाले किसान होते हैं, या फिर हम बात करें मछली पालने वाले, मुर्गी पालन करने वाले, इस तरीके के जो किसान होते हैं और जिनकी उम्र 18 से 75 वर्ष के बीच होती है, वो इस योजना का फायदा लेने के लिए यहाँ पर उम्मीदवार हैं।
3: तो मित्रों, ये थी किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जिसके माध्यम से सरकार कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती है हमारे किसान भाइयों। हम जरूर कोई ना कोई ऐसी बातचीत, ऐसी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं जिसका लाभ हमारे सभी किसान भाई बहनों को, युवाओं को होता है। तो सीमा, आज हमारे कार्यक्रम किसान वाणी में एक ऐसी बातचीत जिससे आय किस प्रकार से हम बढ़ाएं, खाद्य पदार्थों में मूल्य संवर्धन द्वारा किस प्रकार अधिक लाभ ले सकते हैं, किस प्रकार से अधिक आय अर्जित कर सकते हैं, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर बिंदवी अरोड़ा, जो कि वैज्ञानिक हैं हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी डिवीजन, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
5: धन्यवाद।
3: जैसा कि बातचीत का विषय है खाद्य पदार्थों में मूल्य संवर्धन, तो हम अपने श्रोताओं की ओर से आपसे जानना चाहते हैं कि मूल्य संवर्धन क्या है।
5: मूल्य संवर्धन, जिसे कि हम वैलराइजेशन भी कहते हैं, इसका मतलब ये है कि हम किसी भी प्रोडक्ट की कुछ ऐसा उसमें करें कि उसका मूल बढ़ जाए, उसका वैल्यू बढ़ जाए, और ये कई प्रकार से किया जा सकता है। जैसे कि किसी भी चीज की वैल्यू बढ़ाने के लिए हम उसमें न्यूट्रिशन पोषक तत्वों में अगर कुछ बढ़ोतरी कर दी है तो वो एक तरीके का मूल्य संवर्धन हो गया, या हमने उसे किसी इस तरीके से प्रसंस्कृत कर दिया है, प्रोसेस कर दिया है कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ गई, उसकी लघु अवधि बढ़ गई, अब उसे ज्यादा समय तक भंडारण करके रखा जा सकता है। अगर हम तीसरे तरीके से बात करें तो हमने कोई प्रोसेस प्रोडक्ट बना दिया, मानिए हमारे पास कोई फल है, कोई फूल है, हमने उसका कोई जूस जैम ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना दिया जिसकी मार्केट में ज्यादा वैल्यू है, तो इससे भी उनकी आय का स्रोत बढ़ जाता है। ये सब अलग अलग कैटेगरी है जिसे हम खाने को या खाद्य पदार्थों को किसी तरीके से उसके नेटिव फॉर्म से उच्च कर देते हैं, कुछ बेनिफिट उसमें ऐड कर देते हैं ताकि उसका वैल्यू बढ़ाया जा सके। उसी वैल्यू बढ़ाने को हम मूल्य संवर्धन कहते हैं।
3: यानी कि अगर हम बात करें किसान भाइयों के लिए, तो जो कृषि उत्पाद हैं, जो किसान फसल बेच रहा है, यदि वो उस फसल से प्राप्त जो भी उत्पाद है उसके कई तरह के अलग अलग उत्पाद बना करके बाजार में बेचे तो उसे अच्छा मूल्य मिल सके। तो जब बात आती है कि उत्पादों की, तो सबसे पहले यही विचार करेगा कि ऐसे कौन कौन से उत्पाद हो सकते हैं जिनमें मूल्य संवर्धन किया जा सकता है।
5: ये मूल्य संवर्धन हर कृषि खेती से आए उत्पाद से किया जा सकता है। हम जनरली इसको दो भागों में बांटते हैं। अगर कृषि से जो उत्पाद आते हैं वो एक होता है बागवानी वाला, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो हमारे हो गए, उनका जो मूल्य संवर्धन का मेजर गोल हमारा होता है कि उसे हम किस तरीके से ऐसे प्रिजर्व कर सकें कि उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, या फिर हम उसे किस तरीके से ऐसा प्रोसेस कर सकें कि हम उसमें न्यूट्रिटिव कंटेंट बढ़ा सकें। जैसे हम टमाटर की ही बात करते हैं तो टमाटर की एक लघु अवधि कमी होती है, घर में लाने के बाद उसे 8-9-10 दिन के अंदर अंदर हमें इस्तेमाल करना ही है, तो किसानों को उससे भी पहले उसे बेच देना है वरना उनका भी वहाँ पड़ा खराब हो जाएगा। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा कर सकें कि या तो हम उसका ड्राई करके पाउडर बना लें। अब वो पाउडर बहुत समय तक रखा जा सकता है और वो बहुत सारी इंडस्ट्री भी खरीदती है, जैसे टोमेटो सूप बनाने वाली कंपनी है वो जरूर आपसे पाउडर खरीदेगी। इसी तरीके से कोई और कंपनी जो पल्प अगर आपने बना के रख लिया, तो टोमेटो केचप बनाना है, टोमेटो पेस्ट बनाना है, ये सब जो प्रोडक्ट्स बनते हैं टमाटर से इतने सारे उत्पाद बनते हैं। अगर हम ये टमाटर बहुत जल्दी जल्दी आता है उसी समय कम दामों में बेचने की बजाय अगर हम उसे इस तरीके से प्रसंस्कृत करें और फिर उसके बेचने पर उसमें हम थोड़ा ध्यान लगाएं तो हमारी जो आय है उसकी जरूर वृद्धि हो सकती है। वहीं दूसरे तरीके के जो हमारे प्रोडक्ट हैं जैसे कि सीरियल हो गए, पल्सेस हो गए, दाल अनाज, इतना जल्दी खराब तो नहीं होता है, एक बार मिलिंग कर दिया तो इसे घर में भंडार करके किसान अपने स्टोर में बहुत समय तक रख सकता है, तो शेल्फ लाइफ बढ़ाना मेजर गोल नहीं है। लेकिन इसको बनाने का तरीका, जैसे दाल उबालना है, चावल बनाना है, इस सब में बनाने में आटे का रोटी बनता है, ये हमारे नेटिव स्टेपल फूड्स हैं, हम ये सब खाते हैं, पर ये बनाने में काफी घर में मेहनत भी लगती है और समय भी लगता है। तो इन तरीकों के जो प्रोडक्ट्स हैं इनका जो प्रसंस्करण है वो इस तरीके से किया जा रहा है कि रेडी टू ईट फूड बन गया, जल्दी क्विक कुकिंग बन जाए। जैसे कि चावल अगर हम बाजार से खरीदते हैं उसे बनाने में हमें 20 मिनट लगता है, अगर उसे इस तरीके से प्रोसेस किया जाए कि वो 5 मिनट उबल के तैयार हो रहा है, तो हमने उसमें एक तरीके का वैल्यू एडिशन कर दिया, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी लगाया बट उसका वैल्यू बढ़ गया, तो अब लोग उसको ज्यादा मूल्य पर खरीदने के लिए तैयार हैं। तो यही अलग अलग तरीके हैं जिससे हम मूल्य संवर्धन कर सकते हैं।
3: तो यहां तक हमारे किसान भाई बहन समझ गए कि आखिर मूल्य संवर्धन क्या है और किस प्रकार हम इसे कर सकते हैं। अभी आपने बताया कि हम जैसे टमाटर है उसका सूप बना सकते हैं, पाउडर बना सकते हैं, अन्य सभी हमारे कृषि उत्पादों में भी मूल्य संवर्धन किया जा सकता है। अब किसान भाई बहन है या हम भी अपने मन में विचार करें कि हमें कुछ करना है, तो इसके लिए सबसे बड़ी बात होती है आधार चुनना, क्योंकि बिना मशीनरी के नहीं होगा, बिना श्रम के नहीं होगा, बिना लेबर के नहीं होगा। तो किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहनों के लिए, हमारे साथियों के लिए, माने कि इसको रोजगार की दृष्टि से वो शुरू करना चाहते हैं, तो उन्हें किस प्रकार अपना आधार मजबूत करना चाहिए कि वो इस काम से जुड़ सकें।
5: ये सबसे पहले तो अगर कोई ऐसा काम शुरू करना चाहता है या किसान भाई, उनको सबसे पहले तो ये सोचना है वो खुद क्या उगा रहे हैं। देखिए रॉ मटेरियल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, आपके पास क्या चीज उपलब्ध है उसी को आप प्रोसेस करेंगे, या कोई ऐसा भी है जो किसान नहीं है तो उसको भी ये सोचना है कि उसके आसपास क्या चीज अवेलेबल है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा रॉ मटेरियल ही हम कहीं बहुत दूर से मंगा रहे हैं। एक बार जब हम वो सोच लेते हैं क्या अवेलेबल है और हमें उसमें इंटरेस्ट है, हम ये काम करना चाहते हैं, ये दो चीजें अगर है तो उसके बाद हम सोच सकते हैं किस तरीके के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। हम अगर ऐसे बिजनेस में घुसना चाहते हैं तो हमें ये भी सोचना है सबसे ज्यादा जरूरी कि हमारा प्रोडक्ट बन तो जाएगा पर बनने के बाद कहाँ उसको बेचना है। तो मार्केट रिसर्च करना, ये समझना क्या

0: क्या मार्केट है, कहाँ उसे बेचा जाएगा, क्या कोई दूसरी इंडस्ट्री खरीदेगी, क्या मैं डायरेक्टली लोगों तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाना चाहता हूँ, क्या मेरा एंड प्रोडक्ट है, क्या मेरा एक मेड इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट है, जैसे कि टोमेटो का पेस्ट एक मेड इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट है, लेकिन अगर हम टोमेटो के केचप की बात करें तो वो तो एंड यूज प्रोडक्ट है, वो तो हम लोग डायरेक्टली खरीदते हैं। तो हमें सोचना है कि हम किस तरीके के लेवल के प्रसंस्करण तक जाना चाहते हैं, किस मार्केट को हम रीच करना चाहते हैं, क्या मेरा मार्केट इतना बड़ा हो सकता है कि मैं एंड कंज्यूमर तक पहुंच सकूं, या मैं कुछ आसपास की 5 इंडस्ट्री तक ही पहुंचना चाहता हूं। तो ये सब भी हमें सोचना होता है। साथ ही में इसके लिए बहुत ही अच्छी बात यह है कि आप जो भी सोचते हैं कि हम ये प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, ये हमारा आइडिया है, उसके लिए आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, इवन कृषि अनुसंधान संस्थान भी और बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो सब ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट करते हो, कुछ समझ जाते हो कि हम ये करना चाहते हैं, तो उसको सीखने के लिए कैसे बनाना है, कहां उसकी मार्केट की जा सकती है, उस सब की मदद करने के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग भी इंस्टीट्यूट्स में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं।
1: लेकिन बात आती है कि जब कोई भी हम काम करते हैं, विचार कर लिया कि कहां तक पहुंचना है, आवश्यकता होती है धन की। तो क्या सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं हैं कि जिसके माध्यम से हमारे युवा साथी हैं या किसान हैं उनको कुछ अनुदान मिले, कुछ सब्सिडी मिले, और जिसके द्वारा वो कोई भी प्रसंस्कृत यूनिट यदि लगाना चाहते हैं तो उसको स्थापित कर सके?
0: जी हाँ, देखिए बहुत सारे सरकार की ऐसी स्कीम्स हैं, बहुत सारी सरकारी मदद इसमें हमें मिलती है जो अलग अलग लेवल पे, जैसे कि बागवानी के लिए अलग है, सीरियल पल्सेस के लिए अलग, मशरूम के लिए आजकल सरकार बहुत मदद कर रही है। तो इसमें दो तरीके हैं इसको, या तो आप NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड या नाबार्ड के थ्रू आप अपनी इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल MSME के थ्रू आप अपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए अलग अलग स्कीम का अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप किसान भाई बहन मिलकर एक FPO एस्टेब्लिश करते हैं या किसी FPO से जुड़ जाते हैं तो उनको बहुत सारे तरीके की मदद मिल जाती है। अगर आप FPO करते हैं तो आप एक तरीके से इंडस्ट्री ही हो गई आपकी, जिसमें 50-100 लोग मिलकर सेम गोल की तरफ काम कर रहे हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट बहुत अच्छा सपोर्ट और बहुत सब्सिडी प्रोवाइड करती है अलग अलग स्टेट के हिसाब से। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो एक्सप्लोर कर सकते हैं।
1: तो बात चल रही है मूल्य संवर्धन के विषय में, लेकिन वहीं मैम कई बार होता है कि हमारे साथी हैं जो आज कार्यक्रम सुन रहे होंगे उनके मन में ये प्रश्न भी जरूर हो सकता है कि जो प्रसंस्करण की गई कोई भी उत्पाद की कोई भी वस्तु है, क्या उस पर पोषण के माध्यम से देखें तो उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ेगा या उसका पोषण बढ़ेगा, किस प्रकार से इस पर विचार किया जाए?
0: ये भी मूल्य संवर्धन की ना दो अलग अलग तरीके हैं। पहला तो मैंने आपने कुछ पोषक तत्व ऐड भी कर सकते हैं,
1: बिल्कुल,
0: तो जरूरी नहीं है कि हर प्रसंस्करण से कुछ ना कुछ नुकसान ही होगा। लेकिन हाँ, अगर हम गर्म हीट यूज करते हैं प्रोसेसिंग में या कोई हाई एनर्जी वाला प्रोसेस यूज करते हैं तो कुछ हद तक कुछ विटामिन डिग्रेड होते हैं, उनकी क्वालिटी कम होती है। लेकिन अब फूड साइंस इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है कि उन्हीं प्रोडक्ट्स को कैसे हम प्रोसेस करें कि ये सारा जो लॉस जो हम कह रहे हैं नकारात्मक जो काम हो सकता है उसको किस तरीके से बिल्कुल ही न्यूनतम रखें और प्रोसेसिंग हमको बेनिफिट सबसे ज्यादा दे। बहुत सारे वैज्ञानिक लोग आजकल इसी चीज पर रिसर्च कर रहे हैं कि नकारात्मक को कम कर सकें, सकारात्मक को सबसे ज्यादा बढ़ा सकें, और ये काम हम सबसे कम मूल्य इन्वेस्टमेंट करके कर सकें ताकि हमारे किसानों को और रोजगार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे भी प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम न्यूट्रिशन जो लॉस हो गया है प्रोसेसिंग प्रसंस्करण में, तो उसको किस तरीके से वापस भी मिलाया जा सके, तो वो भी किया जाता है।
1: बात आती है कि हमने प्रसंस्करण यूनिट कोई तैयार की और हम किसी भी कृषि उत्पाद का या अन्य किसी भी वस्तु का प्रसंस्करण कर रहे हैं, लेकिन जब वो बाजार में जाएगा तो हमने देखा है कि कोई भी चीज हम जब खरीदेंगे तो किसी डिब्बे में मिलेगी, किसी पैकेट में मिलेगी, उस पर कुछ ना कुछ लिखा भी होगा, जो भी उपभोक्ता होगा वो पढ़कर खरीदेगा। तो इसमें विशेष जो ध्यान देना है, जहां तक हमारे साथी और हम भी समझ रहे हैं, कि वो पैकिंग और लेबलिंग का होता है, तो इस पे आप जरूर हमारे साथियों को बताएं।
0: क्योंकि अब हम प्रसंस्करण की बात कर रहे हैं, यानी कि प्रोसेस प्रोडक्ट हो गया, और ये सिर्फ अपने लिए ही नहीं, ये जरूरी है। भारत सरकार FSSAI के थ्रू ये मैंडेटरी है, जरूरत है इसकी कि प्रोडक्ट पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए, जिसके बिना हम एक प्रोसेस प्रोडक्ट मार्केट में कंज्यूमर एंड यूजर को नहीं बेच सकते हैं। जिसके अंदर उस प्रोडक्ट का नाम, उसका उसमें कितना अमाउंट है, उसका वजन कितना है, और उसके साथ साथ क्या उसका न्यूट्रिशन है, उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना वसा है, कितना फैट है, ये सब चीजें लिखना जरूरी है। क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, किस किस रॉ मटेरियल से बनाया गया है, जैसे कि हम अगर मैं टोमेटो केचप या टोमेटो सॉस की ही बात करूं तो उसमें सिर्फ टमाटर तो नहीं है, उसमें कुछ चीनी भी मिला है तभी वो मीठा है, उसमें थोड़ा एसिड भी मिला है ताकि उसमें अलग खटास आए, तो वो सब चीजें लिखना अनिवार्य है। ये इन्फॉर्मेशन रीडर के पास पहुंचना मैंडेटरी है। साथ ही साथ किस तारीख को बनाया गया था, किस मैन्युफैक्चरर ने बनाया, क्या उसको यूज बाय डेट है, कब तक आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब चीजें लिखना इम्पोर्टेंट है। और एक बहुत लंबी लिस्ट है जो FSSAI ने जारी करी है कि ये सारी चीजें लेबल पे लिखना इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ FSSAI का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नंबर भी आपके पैकेट पे होना मैंडेटरी है।
1: यानी कि प्रसंस्करण यूनिट का हमें कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और तब हम इसको बाजार में बेच सकते। अगर हम रोजगार की दृष्टि से देखें, मान लिया कि जैसे भी आपने कहा कि हमारे बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो खेती कर रहे हैं, उनके पास रॉ मटेरियल है, लेकिन कुछ ऐसे साथी हैं जिनके पास कृषि से संबंधित कोई उत्पाद नहीं है, जो सीधा उत्पाद लेंगे

0: और बाद में इसको प्रसंस्कृत करेंगे, तो रोजगार की दृष्टि से इसको कैसे देखना चाहिए?
1: कि रोजगार की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और भारत में ये बढ़ता ही जा रहा है। प्रोसेस फूड का मार्केट, प्रसंस्करण, हेल्दी प्रसंस्करण का मार्केट बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम इस हिसाब से सोचते हैं तो जिन लोगों के पास अपनी जमीन नहीं भी है, उन लोगों को भी ये सोचना है कि उनके आसपास क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, रॉ मटेरियल कौन सा अवेलेबल है, ताकि वो उसे ले सकें और अलग अलग अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से प्रोडक्ट को प्रोसेस करके अपने निश मार्केट में बेचें। स्पेशलाइजेशन डिफरेंट प्रोडक्ट के, आप जो बना रहे हैं वो मार्केट के अवेलेबल प्रोडक्ट से थोड़ा सा फर्क हो, उसमें कुछ ज्यादा बेटर हो, ताकि आप उस मार्केट को टैप कर सकें। और ये रोजगार का आज की डेट में एक बहुत ही मेजर इंडिया में सपोर्ट करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है।
0: यदि हम बात करते हैं रोजगार की दृष्टि से अपने किसान भाई बहनों को या युवाओं को जो लाभ है वो निश्चित रूप से मूल्य संवर्धन से मिलेगा, लेकिन वहीं जब प्रसंस्कृत उत्पादों की बात आती है कि बेचने के लिए मार्केट कहाँ तैयार होगी, तो इसमें कौन कौन से ऐसे घटक हैं जो हमें मार्केट के लिए देखने चाहिए हमारे साथियों को, तब हमें वो कार्य शुरू करना चाहिए कि इससे अच्छा लाभ हमारे साथी ले सकें?
1: देखिए, ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम सीख तो लेंगे बनाना, बट प्रोडक्ट बनने के बाद उसको बेचना कहाँ है। अल्टीमेटली हमारा गोल तो यही है ना कि हमारी आय वृद्धि हो, तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जो चीज बना रहे हैं उसकी मार्केट क्या है। हमको ये सोचना चाहिए और किस मूल्य के उसका प्राइस होना चाहिए कि हम किस मार्केट में उसको बेचना चाहते हैं। क्या हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, क्या हम देश से बाहर उसे बेचना चाहते हैं, क्या हम अपने ही देश में बेचना चाहते हैं, हम अपनी रीजनल मार्केट में बेचना चाहते हैं। रॉ मटेरियल ले लिया, प्रोडक्ट प्रोसेस कर लिया, लेकिन किस कंपनी में जाएगा? क्या हम मिड सेगमेंट में बेच रहे हैं, किसी सेकेंडरी मार्केट में बेच रहे हैं, या हम एंड यूज प्रोडक्ट बना रहे हैं? तो अगर एंड यूज प्रोडक्ट बना रहे हैं तो क्या हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेचेंगे, क्या हम मंडी में बेचेंगे, क्या हम दुकानों पे बेचेंगे? तो ये सब कुछ मार्केट का पूरा रिसर्च करना, प्रोसेसिंग में घुसने से पहले हमें ये पूरा चैनल सोच कर रखना चाहिए। सिर्फ बना लेना प्रोडक्ट एक पार्ट ही है, उसको बेचना मूल्य संवर्धन का दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है।
0: यानी कि पहले से जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ इसको बेचा जा सकता है। तो कुछ ऐसे जो प्रगतिशील हमारे किसान भाई बहन होंगे या कोई ऐसे साथी होंगे, तो हमारे साथियों को यदि वो देखना चाहें पहले कि भाई ऐसा कौन कर रहा है और क्या क्या लाभ हो रहा है, जैसे प्रशिक्षण की बात आई या प्रशिक्षण की जानकारी वो वहां से लेना चाहें, तो उस पर आप क्या सलाह हमारे साथियों को देंगे?
1: देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, हर स्टेट में एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं, केवीकेज हैं, कृषि विज्ञान केंद्र, वहां पर भी प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है उसी एरिया के क्रॉप के हिसाब से। तो जिस एरिया में वो केवीके है उसके आसपास क्या क्रॉप उगता है उसी के हिसाब से उसकी ट्रेनिंग प्लान की जाती है। अगर मैं दिल्ली क्षेत्र की करूँ तो हमारे संस्थान में भी समय समय पर अलग अलग प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। उसी बेसिस पे अगर मैं एक इन्फॉर्मेशन दूं तो 5 से 10 अक्टूबर की हमारे ही संस्थान में फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है और इसकी इन्फॉर्मेशन IRI की वेबसाइट अवेलेबल है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो जरूर कर सकता है।
0: जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि हमारे जो किसान भाई बहन खेती कर रहे हैं और धान की फसल तैयार है, कटाई पे आ रही है, तो आप इन किसान भाई बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे? यदि ये प्रसंस्करण चुने धान के क्षेत्र में, तो कौन कौन से उत्पादों को लेकर ये बना सकते हैं?
1: धान के क्षेत्र में बहुत ही सारे तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम राइस प्रोडक्ट्स के बारे में अगर हम सोचते हैं तो राइस का पफ, राइस फ्लेक्स हो गए या फिर पोहा जिसे हम कहते हैं, ये राइस के डायरेक्ट प्रोडक्ट्स हैं। अदरवाइज राइस का आटा, राइस फ्लावर, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में यूज होता है, सूप में, गाढ़ा करने में। तो बहुत सारी इंडस्ट्री राइस के आटा को लेना चाहती है। इस तरीके से हम प्रोडक्ट को प्रोसेस कर सकते हैं, तो ये काम किया जा सकता है। कम कॉस्ट इन्वेस्टमेंट में भी ये काम किया जा सकता है।
0: यदि हम बागवानी के किसानों को कुछ ना कुछ सलाह देना चाहे, चाहे वो आम है, सेब है, नाशपाती है, अन्य कोई भी उन्होंने जैसे कि संतरा है, तो ये किसान भाई बहन क्या कुछ प्रसंस्करण अपने उत्पादों का कर सकते हैं?
1: सबसे पहले तो हमारे जो बागवानी फ्रूट्स हैं इनकी खुद की वैल्यू बहुत है। अगर ये फ्रेश कंज्यूमर तक पहुंच जाए तो बहुत ही अच्छा, सबसे अच्छा फॉर्म वही है, फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल सबसे अच्छा है। लेकिन और उसकी मूल्य भी अच्छा मिलता है। लेकिन अगर हम प्रसंस्करण की तरफ जाने की बात सोचते हैं, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी कम होती है, वो जल्दी खराब होता है, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। जूस एक ऐसा प्रोडक्ट हो गया, आजकल तो बहुत अच्छे बिना प्रिजर्वेटिव वाले जूसेस भी मार्केट में अवेलेबल हैं, तो अगर हम उस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं तो वो काम कर सकते हैं। जैम होता है एक प्रोडक्ट जिसे हम बना सकते हैं, कैंडी, इन सब चीजों का कैंडी भी बनाया जा सकता है। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से बनते हैं, जिनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और न्यूट्रिटिव वैल्यू भी रिटेन रहती है, तो हम वो बना सकते हैं और मार्केट में बेच सकते हैं।
0: आलू के उत्पादन में हम प्रथम हैं और हमारा क्षेत्र भी आलू का बहुत अच्छा उत्पादक क्षेत्र है, तो आलू के किसानों के लिए भी आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि आलू के तो बहुत सारे हमने देखा है कि परिवार में भी ऐसे उत्पाद होते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं और एक लंबे समय तक हमें परिवार में चाहिए, तो क्या आप सलाह हमारे किसान भाई?
1: आलू तो हमारे देश का मेजर फूड है, मतलब हमेशा से रहा है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। हमारे देश को हेल्दी बनाने में आलू का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो आलू के बहुत ही सारे प्रसंस्कृत उत्पाद बनाए जा सकते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है। आलू का पाउडर, आलू के आटा, आलू का चिप्स बनता है, आलू का पकौड़ा बनता है, तो ऐसे बहुत ही सारे प्रोडक्ट्स हैं पोटैटो के जो बनाए जा सकते हैं। अगर हम वैल्यू प्रसंस्करण की बात करते हैं तो आलू के चिप्स हमारे देश में बहुत समय से बन रहे हैं, लेकिन अब सोचिए उसको थोड़ा सा मूल्य संवर्धन की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम आलू का जब हम बैटर बना रहे हैं, दो तरीके के बनते हैं चिप्स, या तो काट के बन गए या फिर उसका पूरा मैश करके चूरा बना के फैला के बने। अगर मैश चूरा करके फैला के बनाया जा रहा है तो हम आलू के साथ अगर हम उसमें कुछ और सब्जी भी मिला दें, मानिए बीटरूट मिला दिया या मोरिंगा मिला दिया, मोरिंगा बहुत आयरन का रिच सोर्स है, बीटरूट बहुत अच्छा न्यूट्रिशन का सोर्स है, उसके जब हमने चिप्स बनाए तो हमारे चिप्स दिखने में भी अच्छे हैं क्योंकि वो थोड़े लाल रंग के हो गए, साथ ही साथ उसका न्यूट्रिशन लेवल बढ़ गया है। तो मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा बनती है। मूल्य संवर्धन का मतलब ये है, एक तो प्रोसेस करके प्रोडक्ट बनाया, साथ ही साथ उसमें हम कुछ ऐसा इंटरवेंशन कर दें कि हमने उसको पहले से बेटर बना दिया है, तो उस तरीके के आलू के बहुत ही सारे उत्पाद बनाए जा सकते हैं।
0: चलते चलते हम अपने कार्यक्रम में बताना चाहें कि हम प्रसंस्करण को क्यों चुने, हमें चुन लेना चाहिए, हमें तैयार रहना चाहिए, हमें इसके विषय में जागरूक रहना चाहिए, तो आप हमारे श्रोताओं को क्या कहेंगे?
1: जी, मैं ये कहूंगी कि सच तो ये है कि फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश खाना बहुत अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ जैसे हमारी दिनचर्या बढ़ रही है, जैसे हम लोगों कामकाजी होते जा रहे हैं, थोड़ा सा चैलेंज आता है, तो हमारा गोल ये है कि प्रसंस्कृत उत्पाद जो हमें थोड़ा सा कन्वीनियंस दे वो इस तरीके से बनाया जाए कि वो बहुत न्यूट्रिटिव हो, उसमें कोई नकारात्मक चीज नहीं आए, उसकी मार्केट भी बढ़े और हम सबको उसमें मल्टी लेवल बेनिफिट हो। किसानों को बेनिफिट होना चाहिए कि उनकी आय की वृद्धि हो रही है, प्रोसेसर्स को बेनिफिट होना चाहिए कि उनको कामकाजी मिल रहा है, और कंज्यूमर उनको बेनिफिट होना चाहिए कि उनको न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट, अच्छी पोषक तत्वों वाला प्रोडक्ट आसानी से मिल रहा है। तो ये तीनों लेवल में हमें मदद करता है।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, जब आप जैसे देश के वैज्ञानिक कार्यक्रम में आते हैं, उनकी सलाह हमारे श्रोताओं तक पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं मन में रोमांच होता है, एक उत्साह उन्हें मिलता है कि इतनी अच्छी जानकारी के साथ हम अपनी आय में निश्चित रूप से वृद्धि करेंगे। डॉक्टर बिंदवी अरोड़ा, आप कार्यक्रम में उपस्थित हुई, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे खाद्य पदार्थों में मूल्य संवर्धन द्वारा अधिक आय, और हमारे बीच जानकारी दे रही थी डॉक्टर बिंदवी अरोड़ा, वैज्ञानिक, हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी डिवीजन, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से।
0: मित्रों, कार्यक्रम किसान वाणी में बातचीत के बाद समय है मनोरंजन का, तो आइए सुनते हैं एक लोकगीत।

0: तो अभी आपने सुना एक बहुत ही सुंदर सा लोकगीत।
1: मित्रों, लोकगीत के बाद कार्यक्रम किसान वाणी में समय है मौसम का हाल, क्योंकि किसानों के लिए मौसम का पूर्वानुमान बहुत ही आवश्यक होता है। आगे आने वाले मौसम का हाल यदि हम जाने तो हम अपने फसलों का सही से ध्यान रख सकते हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में हल्की फुल्की धूप छाई रहेगी, वहीं कुछ बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। यदि हम बात करें अधिकतम तापमान की तो यह 31 डिग्री सेल्सियस हो सकता है और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
0: और अमित, अब बात करते हैं कृषि सलाह की। कृषि वैज्ञानिकों ने कहा है कि मौसम में बदलाव के बीच किसानों को धान समेत दूसरी फसलों में रोग और कीटों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है
1: जी।
0: साथ ही इसमें धान की फसल की लगातार निगरानी करने के साथ अगेती मटर और गाजर की बुआई और सरसों की अगेती खेती की तैयारी करने की भी सलाह दी गई है। और इसके अलावा सब्जियों में कीट और रोग दिखाई देने पर समय नियंत्रण के उपाय अपनाने को भी कहा गया है।
1: वहीं यदि बात करें हम अपने सभी किसान भाइयों से कि भाई जो अगेती मटर की बुवाई करना चाहते हैं तो कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक वो बुवाई कर सकते हैं। इसके लिए पूसा प्रगति जैसी उन्नत किस्म का चुनाव किया जा सकता है और बुवाई से पहले बीजों को कवकनाशी कैप्टन या थायरम से 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करना बिल्कुल ना भूलें। और वही जो आने वाले दिनों में सरसों की अगेती बुआई करना चाहते हैं तो हमारे किसान भाई बहन अभी से बीज और खेत की तैयारी करें ताकि उनका उत्पादन अच्छा हो। इसके लिए भी किसान पूसा सरसों 25, पूसा सरसों 26, पूसा सरसों 28, पूसा तारक, पूसा महक जैसी किस्मों के बीजों की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये थी कृषि सलाह।
0: तो कार्यक्रम किसान वाणी कैसा लगा आपको, ये आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं जरूर हम तक पहुंचाएं। और इसके लिए आप हमें सीधे ईमेल कर सकते हैं feedback@gmail.com पर।
1: आज के कार्यक्रम किसान वाणी में इतना ही। अनुमति दीजिए किसान वाणी सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए
2: कोई डर नहीं,
3: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
4: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
5: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
6: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
5: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
6: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
5: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
7: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल।

0: चार के साथ मैं जया भारती। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं उनके घरों से ही आवश्यक दस्तावेज एकत्र किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में एसआईआर दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 30 अक्टूबर तक बढ़ाई। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुराड़ी में अत्याधुनिक ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन ATS का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग और स्टार्टअप को मजबूत करने के लिए उद्यम संवाद का आयोजन किया। दिल्ली सरकार ने रामलीला, दुर्गा पूजा और छठ महापर्व की तैयारियों के लिए 3 विशेष समितियों का गठन किया। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं बूथ स्तर के अधिकारी BLO उनके घरों से ही आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO के बाद इन दस्तावेजों को इसी नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाएगा। यह निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे व्यक्तियों को मतदाता पंजीकरण अधिकारी सुनवाई के लिए नहीं बुलाएंगे। सुनवाई केवल असाधारण परिस्थितियों में ही ऑनलाइन की जाएगी। यदि सुनवाई आवश्यक हो तो मतदाता अपने परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य को अपनी ओर से उपस्थित होने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। आयोग ने कहा कि SIR के दौरान जिनका नाम छूट गया है वे अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो वे संबंधित मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास आवेदन कर सकते हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नामांकन के लिए तत्काल विशेष अभियान शुरू करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी पर्याप्त संख्या में सहायता केंद्र स्थापित करेंगे और रात्रि आश्रयों में रहने वाले लोगों, मजदूरों, गरीबों और बेघरों के लिए विशेष शिविर आयोजित करेंगे। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुरोध के बाद आयोग ने दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज बुराड़ी में अत्याधुनिक ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन ATS का उद्घाटन किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ATS वाहन फिटनेस जांच व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
2: बुराड़ी स्थित इस 5 लेन वाले ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन की प्रतिवर्ष 1,00,000 वाहनों की फिटनेस जांच करने की क्षमता है। बुराड़ी ATS में 40,000 भारी मोटर वाहनों और 60,000 हल्के मोटर वाहनों की वार्षिक जांच की जा सकेगी। यहां वाहनों के फिटनेस का परीक्षण पूरी तरह स्वचालित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। इसमें ब्रेक दक्षता, सस्पेंशन प्रदर्शन, हेडलाइट की स्थिति, साइड स्लिप, उत्सर्जन स्तर और वाहनों के निचले हिस्से की जाँच सहित विभिन्न मानकों का परीक्षण किया जाएगा। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह 5 लेन वाला आधुनिक ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन वाहनों की फिटनेस जांच को वैज्ञानिक, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सही फिटनेस, सटीक जांच और बेहतर निगरानी से प्रदूषण के खिलाफ मजबूत प्रयास दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर।
0: दिल्ली सरकार में मंत्री और राजौरी गार्डन विधानसभा से विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र में पंजाब डेयरी मुखर्जी पार्क से संत नगर एक्सटेंशन तक विकास कार्यों का उद्घाटन किया। मीडिया से बातचीत में श्री सिरसा ने कहा कि सुभाष नगर नाले से होकर गुजरने वाली सड़क की स्थिति पिछले 10 से 15 सालों से बेहद बदहाल थी।
3: ये बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंसमेंट करी थी कि हमें सड़कों के ऊपर से तारों को भी हटाना है। ये तारों का जंजाल इस इलाके में फंसा हुआ था जिसके कारण सुभाष नगर ड्रेन के साथ साथ लोगों को चलने में दिक्कत आती थी। जगह जगह ट्रांसफार्मर थे, सड़क इतनी छोटी हो चुकी थी। अभी सारी की सारी जो आप तारें देख रहे हैं ओवरहेड, इन सबको खत्म किया जा रहा है। 300 करोड़ के यहाँ पे आज काम चल रहे हैं जिनके कारण इस इलाके के लोगों के पास साफ पानी, नई सीवेज की लाइनें, नई सड़कें, नई लाइटें और सारे कूड़ेदान को हटाने का काम किया गया।
0: श्री सिरसा ने कहा है कि इन विकास कार्यों के पूरा होने से स्थानीय निवासियों और राहगीरों को जाम से मुक्ति मिलेगी तथा आवागमन पूरी तरह सुरक्षित और सुगम होगा। प्रादेशिक समाचार आ

0: आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग MSME और स्टार्टअप को मजबूत करने के लिए आज दिल्ली सचिवालय में उद्यम संवाद 2026 का आयोजन किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम में MSME, स्टार्टअप्स, उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों, उद्योग संघों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लेकर सरकारी सहायता और विकास, नवाचार तथा व्यवसाय विस्तार के अवसरों पर विचार विमर्श किया।
1: इस कार्यक्रम का उद्घाटन दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने किया। मीडिया से बातचीत में श्री सिरसा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ऐसा तंत्र तैयार करना है जहां उद्यमी को केवल बिजनेस आइडिया और मॉडल तय करना हो और सरकार हर चरण में उसका सहयोग करे।
2: हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हम उनके लिए एक एसेट बने, हम उनकी सपोर्ट इस तरह से करें जैसे किसी प्राइवेट आदमी को उम्मीद होती है कि मैं अगर दरवाजा खड़काऊंगा मुझे सर्विस मिलेगी। दिल्ली सरकार अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर कर रही है। दिल्ली के अंदर जितनी इंडस्ट्रीज हैं उनको दोबारा से जिंदा किया जा रहा है। हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर ला रहे हैं, हम जगह जगह पे वहाँ पे बिजनेस सेंटर बना रहे हैं, वहाँ पे एग्जीबिशन सेंटर्स बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स लोग अपने रख पाए सामने एग्जीबिशन में और बाहर आकर देख पाए, ये कंसेप्ट ला रहे हैं।
1: एक दिवसीय उद्यम संवाद 2026 में भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम तथा निर्यात संबंधी योजनाओं पर भी सत्र आयोजित किए गए। कार्यक्रम में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा स्टार्टअप योजनाओं, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की योजनाओं पर भी सत्र आयोजित किए गए। सकलीन अख्तर के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
0: दिल्ली नगर निगम MCD का खतरनाक भवनों, अनाधिकृत निर्माण और भवन निर्माण नियमों के उल्लंघन के खिलाफ शहरव्यापी प्रवर्तन अभियान जारी है। निगम ने बताया कि आज चलाए गए अभियान में 15 ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई, जबकि 6 संपत्तियों को भी सील किया गया। निगम के अनुसार भवन निर्माण संबंधी निर्धारित मानदंडों के उल्लंघन मामले में 5 ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए गए। निगम ने कहा कि अनाधिकृत निर्माण और भवन निर्माण संबंधी मानदंडों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। निगम के पूर्वी जोन ने आज राजधानी एनक्लेव पार्क क्षेत्र में मेगा स्वच्छता अभियान तथा गुजरात विहार से कड़करी मोड़ तक विशेष रोड डस्ट क्लीनिंग ड्राइव चलाया। निगम ने बताया कि इस मेगा अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थलों की सफाई, कचरे और मलबे के निस्तारण तथा सड़क किनारे जमा धूल को हटाने पर विशेष जोर दिया गया। निगम के अनुसार अभियान के तहत लगभग 8 टन मलबा, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट और रोड डस्ट हटाया गया। दिल्ली सरकार ने रामलीला, दुर्गा पूजा और छठ महापर्व की तैयारियों के लिए 3 विशेष समितियों का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये समितियां संबंधित त्योहारों के लिए स्थानों की समीक्षा और अंतिम रूप देने के साथ साथ आयोजन स्थलों पर आवश्यक नागरिक सुविधाओं, सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता, बिजली, चिकित्सा तथा अन्य व्यवस्थाओं की निगरानी और समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
3: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य है कि राजधानी में इन प्रमुख धार्मिक पर्वों के दौरान श्रद्धालुओं और आयोजन समितियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो तथा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूरी कर ली जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन पर्वों से लाखों लोगों की श्रद्धा और भावनाएं जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि श्रद्धालु पूरी श्रद्धा, भक्ति और आत्मीयता के साथ अपने पर्व मना सकें और उन्हें आयोजन स्थलों पर किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता समय रहते सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना है ताकि धार्मिक आयोजनों में सुविधा, सुरक्षा, स्वच्छता और सौहार्द का वातावरण बना रहे। सकलैंड की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फिजियोथेरेपी एशिया वेस्टर्न पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस 2026 को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा किया गया था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने स्वस्थ और अधिक सक्रिय जीवन के निर्माण में फिजियोथेरेपी के बढ़ते महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में फिजियोथेरेपी केवल एक पेशा मात्र नहीं है बल्कि यह एक विशिष्ट कार्य क्षेत्र के रूप में विकसित हुई है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि फिजियोथेरेपी सबसे महत्वपूर्ण उपचारात्मक इलाजों में से एक है।
4: कोई भी इंजर्ड स्पोर्ट्स पर्सन केयर के बाद एक बार फिर से एक्टिव हो पाता है और

0: में गहरा जुड़ाव है। उन्होंने चिली की राजधानी सेंटियागो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और चिली के बीच संबंधों की वास्तविक शक्ति दोनों देशों के लोगों के बीच बने विश्वास, आत्मीयता और मित्रता में निहित है। अपने संबोधन में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय समुदाय केवल भारत से जुड़े लोगों का समूह नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच एक जीवंत सेतु है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in को लॉगिन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम समूचे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तर्जिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। उधर तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। प्राची चौधरी ने महिला 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। स्क्वॉश में जोशना चन्नप्पा और वेलावलन संथिल कुमार की मिक्स्ड डबल जोड़ी ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 12 रजत और कांस्य समेत 30 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय मौसम साफ रहा, हालांकि शाम के समय कुछ इलाकों में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि कल बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। यह निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, ATM लिंक शाखाओं और बैंकों तथा ATM के लिए नकदी हेतु करेंसी चेष्टों को पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं उनके घरों से ही आवश्यक दस्तावेज एकत्र किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में SIR दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 30 अक्टूबर तक बढ़ाई। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बोराड़ी में अत्याधुनिक ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन ATS का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग और स्टार्टअप को मजबूत करने के लिए उद्यम संवाद का आयोजन किया। दिल्ली सरकार ने रामलीला, दुर्गा पूजा और छठ महापर्व की तैयारियों के लिए 3 विशेष समितियों का गठन किया। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रस्तुत है मुशायरा।
2: सामईन की खिदमत में शाहनवाज हाशमी का पुरखलूस आदाब। सामईन, हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम मुशायरा। शायर, शेर, इन दोनों से आप बखूबी वाकिफ हैं। शेर कहने वाला शायर होता है और शायर शेर कहता है, लेकिन हम कई बार ये सोचते हैं कि जो बात हम कह नहीं सकते, आम लफ्जों में हम बयान नहीं कर सकते, शायर उसे बड़ी नाजुकी के साथ उन लफ्जों को मोती के माला में पिरोकर हमारे सामने ऐसे पेश कर देता है कि हमारे दिल की तर्जुमानी भी हो जाती है और कई बार

0: लाला कारी है और अजब शौक लाला कारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अजब शौक लाला कारी है, दिल के घुंघरू तो कब के टूट चुके। दिल के घुंघरू तो कब के टूट चुके। रक्स धड़कन का फिर भी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल के घुंघरू तो कब के टूट चुके। रक्स धड़कन का फिर भी जारी है। अपने काबू में कब है जीस्त का खेल। अपने काबू में कब है जीस्त का खेल। इसकी हर चाल इस्तिरारी है। इसकी हर चाल इस्तिरारी है। और गजल का मकता देखें कि हाँ यही मुस्कुराहटों का सफीर। हाँ यही मुस्कुराहटों का सफीर। शाहे इकलीमे सोगवारी है। शाहे इकलीमे सोगवारी है। बेकरारी ही बेकरारी है। रात अंधी है दिन ततारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और छोटी बहर की गजल है, उससे भी चंद अशआर देखें। मतलब है कि आने वाली है रात शाम हुई। आने वाली है रात और शाम हुई। रोशनी बस यहीं तमाम हुई। आने वाली है रात शाम हुई। रोशनी बस यहीं तमाम हुई। किसको होना था मेरे नाम मगर।
1: किसको होना था मेरे नाम
0: मगर। किसको होना था मेरे नाम मगर। कैसी महरूमी मेरे नाम हुई।
1: क्या बात।
0: किसको होना था मेरे नाम मगर। कैसी महरूमी मेरे नाम हुई। बेबसी ने लगा दी यास पे मोहर।
1: बेबसी ने लगा दी यास पे मोहर।
0: बेबसी ने लगा दी यास पे मोहर। हुज्जत उम्मीद की तमाम हुई।
1: क्या बात।
0: हुज्जत उम्मीद की तमाम हुई। बहुत शुक्रिया। और शेर देखें कि एक बूढ़ी यकीन की दुनिया।
1: एक बूढ़ी यकीन की दुनिया।
0: एक बूढ़ी यकीन की दुनिया। एक पल में ख्याल खाम हुई।
1: क्या बात।
0: एक पल में ख्याल खाम हुई। बहुत शुक्रिया। और शेर देखें कि छोड़ दी जब्त ने भी जख्म की बाग।
1: क्या बात है।
0: छोड़ दी जब्त ने भी जख्म की बाग। पीस भी खुल के बेलगाम हुई।
1: क्या बात।
0: पीस भी खुल के बेलगाम हुई। पीस भी खुल के बेलगाम हुई। मौज दर मौज सफ बसफ हुए गम।
1: मौज दर मौज सफ बसफ हुए गम।
0: मौज दर मौज सफ बसफ हुए गम। जिंदगी सबकी पेश इमाम हुई।
1: क्या बात है।
0: मौज दर मौज सफ बसफ हुए गम। जिंदगी सबकी पेश इमाम हुई। खुश हुआ खून जला के दिल भी सफीर।
1: क्या बात है। खुश हुआ।
0: खुश हुआ खून जला के दिल भी सफीर। चश्मे गिरिया भी शाद काम हुई।
1: क्या बात
0: है। चश्मे गिरिया भी शाद काम हुई। आने वाली है रात शाम हुई। रोशनी बस यही तमाम हुई। आखिर में गजल से चार शेर और देखें। मतलब है कि अजीब बेहिसो बेजार होते जा रहे हैं। अजीब बेहिसो बेजार होते जा रहे हैं। हम अपने अहद के सरदार होते जा रहे हैं।
1: क्या बात।
0: अजीब बेहिसो बेजार होते जा रहे हैं। हम अपने अहद के सरदार होते जा रहे हैं। खबर ले ऐ मेरे शाहे सितम जरीफ खबर। खबर ले ऐ मेरे शाहे सितम जरीफ खबर। तेरे जरीफ अजादार होते जा रहे हैं।
1: क्या बात है। क्या बात है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। तेरे जरीफ अजादार होते जा रहे हैं। है जारी आबलों का बनना फूटना पहम। है जारी आबलों का बनना फूटना पहम। नमी से खार भी तलवार होते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमी से खार भी तलवार होते जा रहे हैं। और आखिरी शेर की उठो कि हब्स की शिद्दत से कैद खाने के संग।
1: क्या बात।
0: उठो कि हब्स की शिद्दत से कैद खाने के संग। चटख के रखने दीवार होते जा रहे हैं। चटख के रखने दीवार होते जा रहे हैं। अजीब बेहिसो बेजार होते जा रहे हैं। हम अपने अहद के सरदार होते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत खूब। बहुत शुक्रिया सफीर सिद्दीकी साहब। और सामईन कराम, आप यकीनन इनके अशार से महजूज हुए होंगे और हम इनको वक्तन फोक्तन बुलाते रहते हैं। आप इनको यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर और उसके अलावा दीगर मजालिस में भी आप इनके अशार से रूबरू होते रहते हैं। और इनके अशार का ही ये कमाल है कि ये साहब दिखते तो नहीं हैं लेकिन हैं ये शायर। गालिब ने ही कहा था कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। जो आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। तो ये जो जज्बा था इनके शायरी में, ये जज्बा नजर आ रहा था। सामईन कराम, आइए अपने शेरी सफर को अब आगे बढ़ाते हैं।

0: और ऐसी शायरा के हुजूर चलते हैं जो अपने कलाम के साथ साथ खुद अपने आप में भी खूबसूरत हैं। तो आइए उनके शेर से हम महसूस होते हैं और उनके हुजूर चलते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि वो अशआर सुनाएं।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे इतनी तारीफ के मैं काबिल तो नहीं, लेकिन आपकी जर्रा नवाजी है। गजल के कुछ अशआर देखिए कि चांद को अब्र में छुपने का हुनर आया है।
0: चांद को अब्र में छुपने का हुनर आया है।
1: चांद को अब्र में छुपने का हुनर आया है, फिर वही जलवे जानाना नजर आया है।
0: क्या बात।
1: फिर वही जलवे जानाना नजर आया है।
0: क्या बात।
1: हमने कंदील जलाई है मोहब्बत की सदा।
0: क्या बात। हमने कंदील जलाई है मोहब्बत की सदा।
1: हमने कंदील जलाई है मोहब्बत की सदा, जब भी नफरत के अंधेरों का खतर आया है।
0: क्या बात। बहुत खूब।
1: जब भी नफरत के अंधेरों का खतर आया है, दिल के औराक पे तेरा ही लिखा नाम फकत।
0: क्या बात। दिल के औराक पे,
1: दिल के औराक पे तेरा ही लिखा नाम फकत। इश्क की है ये अदा जिसका असर आया है।
0: क्या बात। क्या कहें।
1: इश्क की है ये अदा जिसका असर आया है, उसने किरदार को रुस्वा कभी होने न दिया।
0: उसने किरदार को कभी रुस्वा होने न दिया।
1: उसने किरदार को रुस्वा कभी होने न दिया, जिसमें हक बात को कहने का जिगर आया है।
0: क्या बात है। बहुत।
1: जिसमें हक बात को कहने का जिगर आया है। बहुत शुक्रिया। क्यों शिकायत है भला शम्मा से परवानों को।
0: क्या बात है।
1: क्यों शिकायत है भला शम्मा से परवानों को, नाम से जिसके है रोशन वो अगर आया है।
0: क्या बात।
1: नाम से जिसके है रोशन वो अगर आया है। बहुत शुक्रिया। उसने कांटों पे नवाजिश की निगाहें रखी।
0: उसने कांटों पे नवाजिश की
1: निगाहें। उसने कांटों पे नवाजिश की निगाहें रखी, और फूलों पे तासुब का शरर आया।
0: क्या बात है। क्या बात है।
1: और फूलों पे तासुब का शरर आया है। और शेर देखिए कि ख्वाब आंखों में रुमैसा ने बसाया जिसका। ख्वाब आंखों में रुमैसा ने बसाया जिसका, आज किस्मत से वो नायाब गौहर आया है।
0: क्या बात। क्या बात।
1: आज किस्मत से वो नायाब गौहर आया है। और दूसरी गजल से कुछ अशआर देखिए कि अदब है विरसे में उसके वो बेमिसाल भी है।
0: क्या बात।
1: अदब है विरसे में उसके वो बेमिसाल भी है, वो हम सफर ही नहीं मेरा हम ख्याल भी है।
0: क्या बात।
1: बहुत शुक्रिया। वो हम सफर ही नहीं मेरा हम ख्याल भी है, गमों के आंसू हो आंखों में या खुशी चमके।
0: क्या बात।
1: गमों के आंसू हो आंखों में या खुशी चमके, वो दिल का हाल समझने में बाकमाल भी है।
0: क्या बात।
1: वो दिल का हाल समझने में बाकमाल भी है। अभी है मसनदे ऊंची तो शोहरतें भी नई। अभी है मसनदे ऊंची तो शोहरतें भी नई, मगर ये याद रहे एक दिन जवाल भी है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मगर ये याद रहे एक दिन जवाल भी है, हो भाईचारे को नुकसान दुश्मनी फैले।
0: क्या बात।
1: हो भाईचारे को नुकसान दुश्मनी फैले, ये शर पसंदों की साजिश भी है और चाल भी है।
0: क्या बात है।
1: ये शर पसंदों की साजिश भी है और चाल भी है। और शेर बतौर खास देखिए, जो वालदैन की शफकत भरी दुआएं मिले।
0: क्या बात है।
1: जो वालदैन की शफकत भरी दुआएं मिले, वही है साया उल्फत वही तो ढाल भी है।
0: क्या बात।
1: वही है साया उल्फत वही तो ढाल भी है। कभी ना दुनिया की चाहत में खुद को कैद करो। कभी ना दुनिया की चाहत में खुद को कैद करो, ये चंद रोज की खुशियों का एक जाल भी है।
0: क्या बात।
1: ये चंद रोज की खुशियों का एक जाल भी है। और मक्ता देखिए कि कशिश है ऐसी कि उससे न बच ही पाओगी।
0: कशिश है ऐसी
1: कि उससे न बच ही पाओगी, रुमैसा उसका है जो वो ही तेरा हाल भी है।
0: क्या बात है। क्या बात।
1: रुमैसा उसका है जो वो ही तेरा हाल भी है। और दूसरी गजल से देखिए कुछ अशार के, यही हुनर था।
0: यही हुनर था
1: वो खुद को नहीं सिखा पाए।
0: क्या।
1: यही हुनर था वो खुद को नहीं सिखा पाए, मोहब्बतों को कभी जो नहीं जता पाए। मोहब्बतों को कभी जो नहीं जता पाए, मेरी कशिश ही मेरे लहजे में है पोशीदा।
0: मेरी
1: कशिश ही मेरे लहजे में है पोशीदा, मेरी तरह न कोई और तुम बना पाए।
0: क्या बात।
1: बहुत शुक्रिया। मेरी तरह न कोई और तुम बना पाए, खुशी बहुत है कि घर चांदनी से चमका है।
0: क्या बात।
1: खुशी बहुत है कि घर चांदनी से चमका है, सितम ये क्या कि नहीं चांद को बुला

0: पाए
1: सितम
0: ये क्या के नहीं चांद को बुला पाए, ये जिंदगी का सफर मंजिलों की चाहत है, ये जिंदगी का सफर मंजिलों की चाहत है, यही तो बात थी खुद को नहीं बता पाए, यही तो बात थी खुद को नहीं बता पाए। वो जानते थे गलत है दिखावा करना मगर, वो जानते थे गलत है दिखावा करना मगर, इबादतों का नहीं राज वो छुपा पाए, इबादतों का नहीं राज वो छुपा पाए। हजार जख्म भी खाकर ही मुस्कुराना है, ये तीर बातों के मुझको नहीं रुला पाए, और आखिरी शेर देखिए कि हवा के नर्म से झोंकों में खुशबुएं जो घुली, ख्याल यार से खुद को नहीं बचा पाए, ख्याल यार से खुद को नहीं बचा पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ और चंद अशआर हैं गजल से, जो हकीकत में इश्क वाले हैं, जो हकीकत में इश्क वाले हैं फूल खुशबू की बात करते हैं, जो हकीकत में इश्क वाले हैं फूल खुशबू की बात करते हैं। क्यों अंधेरे हैं चुपते आंखों में, क्यों अंधेरे हैं चुपते आंखों में, क्या उजालों से मेरे नाते हैं,
1: क्या
0: उजालों से मेरे नाते हैं। एक नजर उनकी एक नेमत है,
1: क्या बात,
0: एक नजर उनकी एक नेमत है, एक नजर के लिए ही जीते हैं, एक नजर के लिए ही जीते हैं। लफ्ज खो दें जहाँ पे वक्त हम, लफ्ज खो दें जहाँ पे वक्त हम, ऐसी महफिल में होंठ सीते हैं।
1: क्या बात,
0: बहुत शुक्रिया। ऐसी महफिल में होंठ सीते हैं। और शेर बतौर खास देखिए, क्या तहफ्फुज़ भी मिल सकेगा हुजूर,
1: क्या तहफ्फुज़ भी मिल सकेगा हुजूर।
0: जन को आजादियां तो देते हैं,
1: क्या बात,
0: जन को आजादियां तो देते हैं। उनके लहजे हैं किस कदर शीरी,
1: उनके लहजे हैं किस कदर शीरी।
0: तलखियों से भी लुत्फ लेते हैं। दर्द तो बढ़ गए ख्यालों में, लेके एहसास हम अकेले हैं, थक के बैठी हुई हैं उम्मीदें। हौसले हैं के साथ रहते हैं। और मख्ता देखिए, क्यों रुमैसा करूँ ना शुक्र खुदा। सर पिसाए मेरे उसी के हैं। बहुत शुक्रिया।
1: उनके लहजे हैं किस कदर शीरी, तलखियों से भी लुत्फ लेते हैं। सामीन अकराम, ये थी रुमैसा रहमान, आप उनकी गजलों से महजूज हो रहे थे। तो आइए हम अपने इस शेरी सफर को आगे बढ़ाते हैं और लंकेश गौतम के हुजूर चलते हैं और उनसे उनके अशआर सुनते हैं। लंकेश गौतम,
2: बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल सा अशआर देखें।
0: इरशाद,
2: कुछ नहीं तो इश्क ही कर जाइए, इश्क करिए और फिर डर जाइए।
1: क्या बात,
3: इश्क करिए और फिर डर जाइए,
1: फिर डर जाइए।
2: कुछ नहीं तो इश्क ही कर जाइए, इश्क करिए और फिर डर जाइए। उनसे खाली हाथ मिलने जाएंगे, आंख ही अपनी जरा भर जाइए।
1: क्या बात।
2: सांस तोड़े जाइए बीमार की, जाइए सीने पे चल कर जाइए।
1: क्या बात,
3: क्या कहने,
2: जाइए सीने पे चल कर जाइए। मैं कदा भी ठीक है वहशत में लेक, हो सके तो यार के घर जाइए।
3: क्या बात,
2: हो सके तो यार के घर जाइए। कुछ तो हो जिसके सबब याद आए आप। एक दो इल्जाम ही धर जाइए। छोड़िए मैं आखिरी मंजिल पे हूँ। आइए और आप भी मर जाइए।
1: क्या बात है।
3: बहुत
2: उम्दा। एक और गजल से अशआर देखें। किया है कैद कि जिंदान कर दिया है मुझे, کیا ہے قید کی زندان کر دیا ہے مجھے، تیرے بدن نے پریشان کر دیا ہے مجھے،
1: کیا بات،
2: تمہارے ہجر نے آنکھیں نچوڑ لی ہیں میری،
1: تمہارے ہجر نے آنکھیں نچوڑ لی ہیں میری،
2: رلا رلا کے بیابان کر دیا ہے مجھے، تمہارے ہجر نے آنکھیں نچوڑ لی ہیں میری، رلا رلا کے بیابان کر دیا ہے مجھے، نقاب پوش بڑا کفر ہو گیا تجھ سے،
1: کیا بات،
2: نقاب پوش بڑا کفر ہو گیا تجھ سے، نظر اٹھا کے مسلمان کر دیا ہے مجھے،
1: کیا بات ہے، کیا بات ہے،
2: تمام حسن ہے ویسے تو اپنی دنیا میں،
1: کیا بات ہے،
2: تمام حسن ہے ویسے تو اپنی دنیا میں، پر ایک شخص نے حیران کر دیا ہے،
1: کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا
3: بات،
2: تمام حسن ہے ویسے تو اپنی دنیا میں،
3: پر ایک شخص نے حیران کر دیا
2: ہے مجھے، اداس کرنا مجھے سہل تو نہیں یوں بھی،
1: کیا بات ہے، اداس کرنا مجھے سہل تو نہیں،
2: اداس کرنا مجھے سہل تو نہیں یوں بھی، پھر اس نے وصل کے دوران کر دیا ہے،
1: کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے،
2: اداس کرنا مجھے سہل تو نہیں یوں بھی، پھر اس نے وصل کے دوران کر دیا ہے مجھے، کسی نے اپنے بدن کے جمال سے گوتم،
1: کیا بات،
2: کسی نے اپنے بدن کے جمال سے گوتم، تلاش روح سے بے دھیان کر دیا ہے مجھے،
1: کیا بات، بہت اسی خیال کو غالب نے بھی کہا تھا کہ عاشق ہوں پہ معشوق فریبی ہے میرا کام، مجنوں کو برا کہتی ہے لیلا میرے آگے، اسی خیال کو آپ نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ، جی جی،
2: ایک اور غزل دیکھیں،
1: ارشاد ارشاد،
2: دانا ہے آپ لوگ تو سمجھائیے مجھے،
3: دانا ہے آپ لوگ
1: تو سمجھائیے مجھے،
2: دانا ہے آپ لوگ تو سمجھائیے مجھے، اس کی گلی سے کھینچ کے لے آئیے مجھے،
1: کیا بات ہے، کیا کہنے، کیا کہنے،
2: دانا ہے آپ لوگ تو سمجھائیے مجھے، اس کی گلی سے کھینچ کے لے آئیے مجھے، پھر دیکھنا کہ جسم سے پھوٹیں گے کیسے شیر، پھر دیکھنا کہ جسم سے پھوٹیں گے کیسے شیر، اس کی زمین وصل میں دفنائیے مجھے،
1: کیا بات ہے، کیا بات ہے،
2: مٹی اب ان کے وصل کی زرخیز ہے پر آپ، مٹی اب ان کے وصل کی زرخیز ہے پر آپ، کوزہ گرے فراق سے بنوائیے مجھے،
1: کیا بات ہے،
2: اپنے بدن کی دھوپ نہیں دے سکیں گے آپ، اپنے بدن کی دھوپ نہیں دے سکیں گے آپ، تو پھر کسی کے سائے میں چھوڑائیے مجھے،
1: کیا بات، کیا بات،
2: شوخی اور انتظار کا ہے عاشقی میں لطف، شوخی اور انتظار کا ہے عاشقی میں لطف، کچھ اور ہچکچائیے تڑپائیے مجھے،
1: کیا بات ہے، کیا بات ہے،
3: کچھ اور ہچکچائیے
2: تڑپائیے مجھے،
1: انتظار کا لطف لاجواب،
2: شوخی اور انتظار کا ہے عاشقی میں لطف، کچھ اور ہچکچائیے تڑپائیے مجھے، لنکیش مجھ کو لوٹنے میں دیر ہو گئی، اب ہو گئی ہے دیر تو پچھتائیے مجھے،
1: کیا بات ہے، کیا کہنے، اچھا بہت خوب،
3: اب ہو گئی ہے دیر تو پچھتائیے مجھے،
2: ایک اور غزل دیکھ لیں، رہتے ہیں چشم وصل کے سر پر سوار آپ،
1: کیا بات،
2: رہتے ہیں چشم وصل کے سر پر سوار آپ، کیسے سہیں گے ہجر میں گرد و غبار آپ،
1: کیا بات ہے، کیا کہنے،
2: لیکن حضور جو مزہ آوارگی میں ہے، لیکن حضور جو مزہ آوارگی میں ہے، رہیے شریف کیجئے نیکی ہزار آپ،
1: کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب،
2: کرتے ہیں اس کا ذکر ہی کیوں بات بات پر، کرتے ہیں اس کا ذکر ہی کیوں بات بات پر، لیتے ہیں اس کا نام ہی کیوں بار بار آپ،
1: کیا بات ہے، کیا بات ہے،
2: کیا آپ کو حدود دو عالم نہیں پتا، کیا آپ کو حدود دو عالم نہیں پتا، مرکد تک آ گئے ہیں غم روزگار آپ،
1: کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت
2: گوتم اگرچہ آپ بھلے آدمی نہیں، گوتم اگرچہ آپ بھلے آدمی نہیں، غزلیں تو کہہ رہے ہیں مگر شاندار آپ،
1: کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب،
2: ایک اور غزل دیکھیں، وصل کا لمحہ ہجر کا سال،
1: کیا بات ہے، وصل کا لمحہ،
2: وصل کا لمحہ ہجر کا سال، سوکھا پیڑ اور ایک غزال،
1: کیا بات ہے،
2: وصل کا لمحہ ہجر کا سال، سوکھا پیڑ اور ایک غزال، مجنوں گوتم ایک سہال، मजनू गौतम एक सहाल खूब उदासी लंबे बाल।
4: क्या बात
2: मजनू गौतम एक सहाल खूब उदासी लंबे बाल एक गजल में खत्म हुआ शेर का सारा कच्चा माल।
4: क्या बात
2: ओस पड़ी तो टूट गई फूलों से लिपटी कच्ची डाल।
4: क्या बात
2: ओढ़ रखी थी दोनों ने सर्द हवा में वसल की शाल।
4: क्या बात है
2: सर्द हवा में वसल की शाल ठीक नहीं है गौतम जी कम उम्र में इतने मलाल।
4: क्या बात है बहुत खूब
0: बहुत
4: शुक्रिया
0: बहुत खूबसूरत।
2: एक गजल देखिए
4: जी
2: सब कुछ त्याग के चीवर धारा नगर नगर से दान लिया एक पीपल की छांव में बैठे और गौतम से ज्ञान लिया।
0: क्या कहने
2: उसके दर को खोल दिया
4: जी
2: एक तेज हवा के झोंके ने
4: जी
2: उसके दर को खोल दिया एक तेज हवा के झोंके ने मेरे दस्तक देने से पहले ही मुझे पहचान लिया।
4: बहुत
2: घटा हुई तो खुशी खुशी में रम भी किया बरखा न हुई।
4: क्या बात है
2: घटा हुई तो खुशी खुशी में रम भी किया बरखा न हुई अपना तन बेकार ही हमने इस माटी में सान लिया।
4: क्या बात है
2: वो तो कब का चला गया किसे ढूंढ रहे हो गौतम जी हमने उसकी चाह में शहर का कोना कोना छान लिया।
4: क्या बात है
2: बहुत शुक्रिया।
0: फिर से पढ़िए बहुत अच्छा।
2: वो तो कब का चला गया किसे ढूंढ रहे हो गौतम जी हमने उसकी चाह में शहर का कोना कोना छान लिया। बहुत शुक्रिया
1: बहुत खूब बहुत शुक्रिया। किसी शायर ने कहा था कि नए उम्रों की खुद मुख्तारी को कौन समझाए कहाँ से बचकर निकलना है और कहाँ जाना जरूरी है। तो ये थे लंकेश गौतम और ये जिंदा हैं नौजवान हैं और ये कहाँ जा रहे हैं ये अपनी मर्जी से जा रहे हैं। इनके शेर को हमारे सामईन सुन रहे थे महसूस हो रहे थे और उनसे बहुत कुछ सीख भी रहे थे और समझ भी रहे थे। तो ये गौतम जी वही गौतम है या उस गौतम की राह पे चल रहे हैं ये फैसला आप करें। तो सामईन इकराम ये आज की हमारी महफिल यहीं इख्तिताम को पहुंचती है। हम अपने तमाम शोरा का जनाब सफीर सिद्दीकी रुमेशा रहमान साहिबा और लंकेश गौतम साहब आप तीनों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे सामईन के लिए इतने अच्छे अशआर इतनी अच्छी गजलें पेश की इसके लिए हम आपका एक बार फिर से तहदिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सामईन इकराम आपने सुना कि आज इस मुशायरे की महफिल में किस नौयत के अशआर हमारे शायरों ने हमारे नौजवान शोरा ने पेश किए और इन शायरों ने अपने जज्बात को या जो कुछ ये देखते हैं अपने समाज में जिन चीज़ों को देख रहे हैं अपने आसपास अपने इर्द गिर्द जिन चीज़ों को देख रहे हैं अपने एहसास को लफ्ज़ों का जामा पहनाकर किस तरह हमारे सामने पेश करते हैं ये सब हमारे सामने आया था। तो इसी के साथ आज अपने मेज़बान शाहनवाज हाशमी को प्रोग्राम ख़त्म करने की दीजिए इजाज़त। इससे पहले ये भी बताता चलूँ कि इस प्रोग्राम को तरतीब दिया था इंतजार सैफी ने। तो सामईन आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और शोरा के साथ किसी और महफिल में। तब तक के लिए अपने मेजबान शाहनवाज हाशमी को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।
5: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे मुशायरा। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़। DRM 810 किलोहर्ट्ज़।
6: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए सुनिए क्षमावाणी महापर्व पर विशेष वार्ता। क्षमा तीन लोक की संपदा। वार्ताकार है डॉक्टर इंदु जैन।
7: जैन दर्शन में पर्युषण और दसलक्षण महापर्व आत्मशुद्धि आत्मनिरीक्षण और आत्म जागरण का अवसर है। इन दिनों मनुष्य कुछ समय के लिए संसार की व्यस्तताओं से हटकर अपने भीतर झांकता है और अपने राग द्वेष क्रोध अहंकार छल लोभ तथा आसक्ति को पहचानने का प्रयास करता है। पर्युषण के दिनों में संयम, तप, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, पूजा और आत्मचिंतन के माध्यम से कर्म निर्जरा तथा आत्म कल्याण की भावना जागृत की जाती है। दस लक्षण महापर्व में उत्तम क्षमा से लेकर उत्तम ब्रह्मचर्य तक 10 गुण धर्मों को जीवन में उतारने की साधना की जाती है। ये 10 गुण केवल पूजा पाठ के विषय नहीं है, बल्कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले 10 व्यावहारिक मार्ग हैं। उत्तम क्षमा क्रोध को शांति में, उत्तम मार्दव अहंकार को विनम्रता में और उत्तम आर्जव कपट को सरलता एवं पारदर्शिता में बदलने की प्रेरणा देता है। उत्तम सत्य हमें सत्य निष्ठा, उत्तम शौच मन की निर्मलता, उत्तम संयम इंद्रियों पर नियंत्रण, उत्तम तप आत्मानुशासन, उत्तम त्याग परोपकार, उत्तम आकिंचन्य आसक्ति से मुक्ति और उत्तम ब्रह्मचर्य आत्म संयम एवं पवित्रता का मार्ग दिखाता है। इस प्रकार पर्युषण और दस लक्षण महापर्व की पूरी साधना मनुष्य को भीतर से निर्मल बनाने की यात्रा है। इसी साधना की सुंदर परिणति क्षमावाणी महापर्व में होती है, जब हम अपने द्वारा जाने अनजाने किए गए अपराधों के लिए क्षमा मांगते हैं और दूसरों की भूलों को क्षमा करने का प्रयास करते हैं। जैन धर्म में भाद्र माह के दस लक्षण महापर्व की अनंत चतुर्दशी के ठीक एक दिन बाद आश्विन कृष्ण एकम को विश्व मैत्री क्षमावाणी महापर्व मनाया जाता है। क्षमा पर्व में सभी जन समस्त सृष्टि के सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों से वार्षिक प्रतिक्रमण करते हुए एवं आपस में एक दूसरे से उत्तम क्षमा मिच्छा में दुक्कडम अर्थात मेरे सभी दुष्कृत्य मिथ्या हो जाए ऐसा कहकर प्रायश्चित करते हैं और मन को शुद्ध करते हैं। विश्व के लगभग सभी धर्मों में क्षमा गुण की सर्वाधिक प्रतिष्ठा है, इसलिए पूरे विश्व के सभी लोगों को क्षमावाणी महापर्व मनाना चाहिए, क्योंकि क्षमा से जीवन के सभी संघर्ष जीते जा सकते हैं। क्षमा हमारे खुद के लिए है। क्षमा भावना होने से हम अपने मन से अनगिनत बोझ को हटाकर मन को हल्का कर सकते हैं और स्वच्छ मन और स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। क्षमा बने हर हृदय की भाषा, प्रेम बने आधार, मिट जाए मन के भेद सभी, मिट जाए तकरार, विश्व धरा पर क्षमा का पर्व हर मानव मिलकर मनाए, क्षमा अहिंसा प्रेम से ही विश्व शांति मुस्काए। पर्युषण दस लक्षण महापर्व जैन दर्शन का एक ऐसा सौभाग्यशाली पर्व है जिसके दोनों सिरों पर क्षमा उपस्थित है, पहली उत्तम क्षमा के रूप में, दूसरी क्षमावाणी के रूप में। पर्व हमारे जीवन में नई खुशियां नई बहार लेकर आते हैं। क्षमावाणी एक ऐसा पर्व है जिसमें विश्व मैत्री की भावना समाहित है। यह संसार के समस्त जीवों के प्रति मैत्री की भावना से परिपूरित है। सौहार्द और सद्भाव का पर्व है। क्षमा ही हमारा जीवन है। आचार्य वटकेर जी द्वारा रचित प्राकृत भाषा के ग्रंथ मूलाचार में क्षमा के लिए एक बहुत सुंदर भावों की अभिव्यक्ति करती हुई एक प्रसिद्ध गाथा है। खम्मामि सर्वे जीवाणाम सर्वे जीवा खमन्तु मे, मिट्टी में सब भूदेशु वैरम मध्यम रक्केणवी, अर्थात मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। सभी जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव है, किसी के प्रति मेरा वैर भाव नहीं है। हमारी भी सदैव यही भावना होनी चाहिए। इन भावनाओं को अपने जीवन में उतारते हुए हमें स्वीकार करना होगा कि क्षमा ही हमारा जीवन है, धर्म है, प्राण है और आत्मा है। क्षमा केवल वाणी का विषय नहीं है, यह अंतःकरण की निधि है। क्षमा अमृत है, क्षमा प्रकाश है। ऐसे प्रकाश में जीने वाला व्यक्ति ही जीवन को प्रकाशित कर सकता है। कहा है कि क्षमा रूपी चिंतामणि रहती जिसके पास, तीन लोक की संपदा बनती है फिर दास। क्षमा पहले मन में आती है, फिर वाणी में आती है, फिर काय से परिणत होती है। इसीलिए क्षमावाणी को नित्य जीवन में हर पल मनाते हुए क्षमा के एक विशेष मंत्र की बार बार अनुप्रेक्षा करनी चाहिए, ताकि हम प्रतिपल सजग रहे, गलती ना करें और अपने मन में मलिनता को ना आने दें। ओम ह्रीम नमः सबसे क्षमा सबको क्षमा, इस मंत्र को यदि हम बार बार स्मरण करें तो हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि धर्म हमें क्षमा करना सिखाता है, क्रोध नहीं। क्षमा हमारा स्वभाव है, किंतु क्षमावाणी पर्व हमसे कहता है कि जाने अनजाने क्रोध हो भी गया हो, किसी ने आपका दिल दुखाया हो या आपके द्वारा किसी को ठेस पहुंची हो, तो इस पर्व के दिन उससे आप क्षमा मांग लें और उसे क्षमा कर दें, मन की मलिनता दूर हो जाएगी।

ऐसी कर तू साधना, अधिकार क्रोध पर हो तेरा, कितना किस पर कहां पर, कैसे विवेक पूर्ण हो विरोध तेरा। निश्चल मन से कर विचार तू, दया धर्म का कर ध्यान, सहज भाव से जी ले प्यारे, क्षमा बड़ी बलवान, क्षमा बड़ी बलवान। क्षमा कोई कार्य नहीं, एक प्रक्रिया है और इसमें समय भी लग सकता है। व्यावहारिक रूप में क्षमा भाव को समझने और प्रयोग करने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। क्षमावाणी महापर्व हमें एक बहुत सुंदर बात सिखाता है, दूसरों को क्षमा करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है स्वयं को भी क्षमा करना। किसी ने हमें दुख दिया हो, कोई बात मन को चोट पहुंचा दी गई हो, तो उस पीड़ा को वर्षों तक अपने अंतर मन में संजो कर मत रखिए, उसे छोड़िए, क्षमा कीजिए और अपने मन को हल्का रखिए, क्योंकि मन में ईर्ष्या, द्वेष और प्रतिशोध की गांठें बांधकर हम दूसरों को नहीं स्वयं को ही दुख देते हैं। कहते हैं रोग तन में जड़े मन में, इसलिए स्वस्थ शरीर, शांत मन और आत्मिक सुख के लिए क्षमाशील होना जरूरी है। अपनी पुरानी भूलों के लिए स्वयं को जीवन भर दंडित मत कीजिए, गलती से सीखिए, सुधार कीजिए और आगे बढ़ जाइए। जब परिस्थितियां विपरीत हों तब अपनी भावनाओं को संभालना सीखिए और मन की उथल पुथल को शांत कीजिए। दूसरों की कमियां गिनाने से पहले एक बार अपने भीतर झांकिए, अपनी कमियों को पहचानिए, स्वीकारिए और उन्हें दूर करने का प्रयास कीजिए। हर पल अपने व्यवहार पर नजर रखिए कि हमारे मन, वचन और कर्म से किसी को दुख तो नहीं पहुंच रहा। क्रोध आए तो उस पर अड़िए मत, कभी मुस्कुराकर उसे उड़ाना भी सीखिए। यदि हमसे गलती हो जाए तो क्षमा मांगने में संकोच कैसा, सहृदयता, स्पष्टवादिता और मन वचन काय से ईमानदारी पूर्वक क्षमा मांगिए। विश्वास मानिए, क्षमा मांगने के बाद मन को एक अद्भुत सुकून मिलता है। आराध्य का स्मरण कीजिए ताकि क्रोध, मान, माया और लोभ की मन में जमी परतें धीरे धीरे उतरती जाए, क्योंकि क्षमा मांगना और क्षमा करना आसान नहीं, क्षमा वीरों का आभूषण है। रिश्तेदारों और परिचितों से अपेक्षाएं भी थोड़ी कम रखिए। अपने मन के भावों को डायरी में लिखिए, जिससे मनमुटाव है उसका नाम लिखकर बार बार लिखिए, हमने उसे क्षमा किया। और यदि संभव हो तो किसी तीसरे व्यक्ति से शिकायत करने की बजाय सीधे उसी व्यक्ति से बात कीजिए जिससे मनमुटाव है। विरोधियों को हराने का सबसे सुंदर तरीका है दुर्भावना छोड़ देना, क्षमा करना और स्वयं खुश रहना। नकारात्मक विचार रखने वालों के प्रति भी माध्यस्थ भाव रखिए। आइए क्षमा को केवल एक दिन का पर्व ना बनाकर अपने जीवन की विरासत बनाएं। जन जन को क्षमा का संस्कार दें ताकि हम बेहतर मनुष्य, अच्छे नागरिक बने और परिवार से लेकर समाज तथा पूरे विश्व में शांति की स्थापना में अपना योगदान दे सकें। क्योंकि जब क्षमा से मन भरता है तब जीवन शिकायतों से नहीं शांति से भर जाता है। इस प्रकार के चिंतन से हम अपने मन को निर्मल करते हुए स्वस्थ रह सकते हैं। क्षमा मन की औषधि है। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों में पाया गया है कि विरोधियों के प्रति द्वेष का स्मरण मन और शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, जबकि माध्यस्थ भाव, सहानुभूति और क्षमा की भावना मनोभावों एवं शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। अहिंसा, क्षमा, मैत्री भाव को धारण कीजिए। संपूर्ण सृष्टि से आपके द्वारा जाने अनजाने में हुई गलतियों की क्षमा याचना कीजिए और क्षमावाणी महापर्व पर अपना जीवन सार्थक कीजिए। क्षमावाणी की मंगल वेला भावों को निर्मल कर दे, मिटा कलुषता मन की सारी, भावों में शुचिता भर दे। मानव मन चंचल है किंतु संयम मन पर बांध लगाएं, क्षमावाणी पर आओ बंधु, क्षमा भाव मन में लाएं। आज के तनावपूर्ण सामाजिक जीवन में क्षमावाणी की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। परिवार में छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव, सामाजिक जीवन में प्रतिस्पर्धा, कार्य क्षेत्र में मतभेद और संवाद में बढ़ती कटुता मनुष्य को भीतर से अशांत करती है। यदि एक बार भी हम अपने संबंधों की धूल झाड़कर प्रेम और क्षमा का दीप जलाएं, तो अनेक टूटते संबंध पुनः जोड़ सकते हैं। क्षमा नहीं कमजोरी, यह आत्मबल की पहचान, वैर मिटाकर प्रेम बढ़ाना जैन धर्म का महान विधान। जिस हृदय में मैत्री जागे वह मंदिर बन जाता है, क्षमा धारण करने वाला स्वयं महान बन जाता है।
हमने तो मांगी है मन्नत।

0: केवल क्षमा भाव की, बस यही बात लगती है मुझको बड़े काम की। क्षमा वाणी आत्मा को हल्का करने का पर्व है। यह मैं सही और दूसरा गलत की भावना से ऊपर उठकर हम दोनों आत्मस्वरूप हैं की अनुभूति की ओर ले जाता है। जैन धर्म का संदेश है कि संसार में कोई भी जीव हमारा शत्रु नहीं, हमारे भीतर की कषाय ही वास्तविक शत्रु है। जब क्रोध शांत होता है, अहंकार झुकता है और वैर समाप्त होता है, तब आत्मा की निर्मलता प्रकट होने लगती है। सबसे क्षमा, सबको क्षमा, मिच्छा में दुखड़म। मेरा सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव हो और किसी भी जीव के प्रति मेरे मन में वैर ना हो, यही क्षमावाणी की सार्थकता है, यही आत्मशुद्धि का पथ है और यही जैन धर्म की अहिंसामय जीवन दृष्टि का सुंदर संदेश है।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर इंदु जैन से क्षमावाणी महापर्व पर क्षमा तीन लोक की संपदा विषय पर विशेष वार्ता। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।
3: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
4: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
3: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
4: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
3: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
4: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, नयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वूव्स पर। इसका अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वूव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से।

0: बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, अरुणाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वूव्स पर इसका अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वूव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़। अब से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया। आयोग ने कहा, SIR के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्य

0: ईश सूर्यकांत ने कहा, बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम में स्वर्ण, तजिंदर पाल सिंह तूर ने रजत पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। यह निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बारे में निर्वाचन आयोग पर विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस के आरोपों की कड़ी निंदा की है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
2: इसी SIR को केरला की कांग्रेस ने सही माना कि उनके कारण हमको जीत मिली है, क्योंकि वामपंथियों में जो इलीगली नाम घुसवाए थे वो निकले, फेक वोटर्स, और हम जीते। चुनाव आयोग ने आज दूध का दूध और पानी का पानी विषय स्पष्ट कर दिया है।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केन्द्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि शी मार्ट कॉन्सेप्ट महिला उद्यमियों को बाजार से जुड़ने के लिए बेहतरीन मंच देगा।
3: NCCF द्वारा 2500 से अधिक रिटेल आउटलेट्स के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक में 300 से अधिक सी मार्ट स्टोर भारत ब्रांड उत्पाद और लोकल उत्पाद इसके लिए उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके कारण प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डायरेक्ट रिटेल मार्केट, इस सभी का फायदा किसानों को और इसके साथ साथ महिला उद्यमियों को मिलेगा।
0: श्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। गृहमंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृता नंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर मिसाल कायम की है।
3: 10 लाख से ज्यादा वृक्षारोपण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका की भावना और इसके साथ साथ 101 गांवों को पूर्णतया से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अम्मा ने बहुत बड़ा काम किया है। संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम विश्व शांति सम्मेलन और विश्व धर्म संसद जैसे कई मंचों में हिंदुत्व का, सेवा का संदेश अम्मा ने पहुंचाया।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक

0: विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि परीक्षा पे चर्चा पहल के जरिए इस सपने को कैसे वास्तविकता में बदला गया है।
1: परीक्षा पे चर्चा एक वार्षिक संवाद कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करते हैं और परीक्षा के तनाव को कम करने के साथ साथ पढ़ाई को आनंददायक बनाने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। 2018 में एग्जाम वॉरियर्स अभियान के तहत शुरू की गई यह पहल युवाओं को तनाव के बजाय आत्मविश्वास के साथ परीक्षा का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। इस पहल ने परीक्षा को डर या दबाव के बजाय सीखने पर जोर दिया है। परीक्षा पे चर्चा के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें खुद को मजबूत बनाने और हर तरह के दबाव का सामना करने में सक्षम बनने की सलाह दी।
2: किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए, रोते बैठना नहीं चाहिए, मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है। दबाव को हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, ये तो संकल्प करना।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए मध्य प्रदेश की छात्रा कृतिका सेन ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा से उन्हें प्रेरणा मिली और परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिली।
3: पीएम नरेंद्र मोदी जी बहुत सरल स्वभाव के हैं। उन्होंने हमें बताया कि एग्जाम्स की तैयारी से लेकर फाइनल एग्जाम तक हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें एग्जाम्स के एकदम वॉरियर्स की तरह लड़ना चाहिए। फिर वहां से आके हमने बहुत अच्छे से एग्जाम्स दिए और हमने बहुत अच्छा स्कोर किया।
1: इस कार्यक्रम में सिर्फ अच्छे अंक लाने पर नहीं बल्कि छात्रों के समग्र विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। यह परीक्षा से जुड़े तनाव को कम करने के साथ साथ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित करता है। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट, @AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्याय प्रणाली को नागरिकों से मदद मांगने की प्रतीक्षा के बजाय खुद ही जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। मुख्य न्यायाधीश आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के पुनः एकीकरण विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए।
5: चाइल्ड एनकाउंटर्स,
6: जब कोई बच्चा नशीले पदार्थ के संपर्क में आता है तो उसकी शिक्षा बाधित होती है, परिवार के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं, उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वो शोषण, हिंसा, मानव तस्करी और अन्य प्रकार के कई दुर्व्यवहारों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसलिए बच्चों में नशीले पदार्थों का सेवन केवल जन स्वास्थ्य की चिंता के रूप में नहीं बल्कि समान रूप से बाल संरक्षण से जुड़ी चिंता के रूप में भी समझा जाना चाहिए।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेनदेन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 10% से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर सकता है। उन्होंने अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी और नवाचार को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। आईआईटी मद्रास के कार्यक्रम में सुश्री सीतारामन ने कहा कि उच्च विकास दर आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में प्रगति को गति देगी। प्रधानमंत्री

0: निर्देशों का पालन करें। इस बीच राज्य में कई स्थानों पर कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। उधर ओडिशा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 10 जिलों में 73,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं।
1: ओडिशा के 10 जिलों में लगातार बारिश से 80 ब्लॉक, 325 ग्राम पंचायतों और 1071 गांव के 73,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 4,480 हेक्टेयर खेती की जमीन भी प्रभावित हुई है। उत्तरी ओडिशा में जलका और बैतरणी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जबकि सुवर्णरेखा नदी का जल स्तर बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। पानी का बहाव बढ़ने के कारण हीराकुद बांध के 20 गेटों से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भी आज दोपहर से बारिश जारी है। मौसम विभाग ने 29 सितंबर तक राज्य में बारिश की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
2: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज अचानक बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। प्रदेश के अन्य उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी हल्के हिमपात की खबर है। राजधानी शिमला में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे मौसम ठंडा हो गया है। वहीं निचले इलाकों में बारिश के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कल 27 सितम्बर को प्रदेश के 8 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सिरमौर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और किन्नौर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: इस बीच मौसम विभाग ने समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका के कारण 28 सितंबर तक केरलम, माहे, लक्षद्वीप और दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। केरलम तट पर 1 से 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका है। पर्यटन सहित समुद्र तट पर सभी प्रकार की गतिविधियों से पूरी तरह बचने की सलाह दी गई है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
3: जापान एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। प्राची चौधरी ने महिला 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाजी में तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। स्क्वाश में जोशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिल कुमार की मिक्स डबल जोड़ी ने कांस्य पदक देश के नाम किया। वहीं अभय सिंह पुरुष सिंगल्स और अनाहत सिंह महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य समेत 30 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया। आयोग ने कहा, SIR के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने केरल में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Election Commission reiterates that order for SIR issued for all states and UTs with its unanimous approval. Says booth level officers will visit homes of electors issued notice during SIR to collect required documents. Union Minister Amit Shah inaugurates several NCCF initiatives in Kerala to boost women's empowerment through cooperatives. Chief Justice of India Surya Kant says drug abuse among children must be seen as child protection issue. External Affairs Minister S. Jaishankar to address United Nations General Assembly in New York tonight. And in Asian Games, Indian men's and women's kabaddi teams clinch gold medals in Japan. Tajinder Pal Singh Toor wins silver in men's shot put. India's medal tally reaches 30 with 4 gold, 12 silver and 14 bronze.

ट्विन की सुन्नत नहीं अदावर ये आकाशवाणी है। अब उर्दू सर्विस की आज की तीसरे मजलिस की नशरियात का आगाज होता है। अब हमारी नशरियात मीडियम वेव 71 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डिलीवरी डिश पर सुन रहे हैं।

संस्कृत 30 मिनट पर फरमाइश फिल्मी रकमों पर मबनी प्रोग्राम होगा तामिल इरशाद। 11 बजे खबरें बड़े सगीर से नशर की जाएंगी। 11:45 पर पंडित वसंत देश पांडे का राग जन सम्मोहिनी में गाया ख्याल सुनेंगे। बज़्म मौसीकी प्रोग्राम के तहत 11:45 पर शाम के 12 बजे आलमी खबरें पेश की जाएंगी। उसके 10 मिनट पर क्लासिकी मौसीकी प्रोग्राम के तहत पंडित रघुनाथ सेठ का बांसुरी पर बजाया रूप ताल आप सुनेंगे। सदाबहार फिल्मी नगमों का प्रोग्राम आखिर शब 12:30 पर नशर किया जाएगा। 12:50 पर एक बार फिर आप खबरें सुन सकेंगे। रात 1 बजे उर्दू सर्विस की आज की तीसरी मजलिस की नशरियात का इख्तिताम होगा। यह था हमारे यहाँ से आज रात 1 बजे तक नशर होने वाले प्रोग्रामों का खुलासा। ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। लिसा मेनो पेश है कर फिल्मी गजलों पर मबनी प्रोग्राम एक फनकार। आज के फनकार हैं जगजीत सिंह।

0: लेकिन जैसे ही वो दूसरे फीड पे आना शुरू हो जाता है, जैसे वो अनाज पे आना शिफ्ट करते हैं हम लोग, तो ये दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ जाती है। यही नहीं है कि उससे कम उम्र में भी देखा गया, क्योंकि बच्चे अंगूठा चूस लेते हैं, उंगली चूस लेते हैं, मुंह में डालते हैं, और वो उसकी साफ सफाई में कहीं भी कमी पेशी रह जाए, मैल मिट्टी के कीटाणु उसमें रहते हैं, नाखून कटे नहीं हुए तो उसमें भी मैल होती है, अगर वो ये चूसने से बच्चा मुंह में जो ले जाते हैं उससे भी कीटाणु जाते हैं और बीमारी फैलती है,
1: प्रॉब्लम हो जाती है
0: जी।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, जॉन्डिस के बारे में बताइए, बच्चों में जॉन्डिस कैसे हो जाता है?
0: जॉन्डिस तो जो
1: कहते हैं कि जॉन्डिस उस उम्र में,
0: जॉन्डिस तो बच्चों में जो है बीमारी, जे हम जिसको कहते हैं ओरोफिकल रूट, मुंह के रास्ते से जो ज्यादा जाती है। दूसरे तरह के भी बीमार जॉन्डिस होती है, चार पांच प्रकार की होती है, लेकिन हम जो यहाँ डिस्कस करना चाहेंगे वाटर बॉर्न, पानी के रास्ते से, खाने के रास्ते से, संक्रमित खाना है, साफ सुथरा खाना नहीं मिला, स्ट्रीट से खा लिया, बाजार से खा लिया, कई बार शादी ब्याह पार्टियों में क्योंकि इतनी मास स्केल पे खाना बनता है तो कहीं ना कहीं कमी रह, हाइजीन कमी रह ही जाती है। तो ये ओरल रूट से जो है हेपेटाइटिस ए बोलते हैं, जो वो ए हेपेटाइटिस ए बोलते हैं, और ई भी, ए और ई दो प्रकार के जो पीलियां हैं वो मुंह के रास्ते से ओरोफिकल रूट जो कहते हैं पानी से या खाने से ट्रांसमिट होता है।
1: अगर वक्त खत्म हो रहा है तो एक मिनट में डॉक्टर साहब आप हमारे लिस्टर से क्या कहना चाहेंगे बच्चों के हवाले से कि हमारे बच्चे कैसे सेहतमंद रहे, क्योंकि मुल्क का मुस्तकबिल है।
0: बच्चों की सेहत के लिए साफ सफाई और पौष्टिक आहार,
1: तीन चीजें
0: आप ध्यान रखिए। साफ सफाई, छह महीने तक तो मां का दूध सारी दुनिया पिलाती है, जो दिक्कत तकलीफ में शुरू होती है छह महीने के बाद में शुरू होती है, क्योंकि प्रचलन यह है कि दूध को जो पिलाते हैं, दूसरा दूध जब शुरू होता है उसमें पानी मिलाया जाता है कि नहीं ये गाढ़ा दूध है नुकसान करेगा, पानी बिल्कुल नहीं मिलाना है। आप जो भी दूध ले रहे हो, जैसा भी ले रहे हो, चाहे वो बाहर की डेयरी का या क्या है, अगर वो सर्टिफाइड है, क्वालिटी उसकी अच्छी है, उसमें पानी मत मिलाएं। और एक वीनिंग पे मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, जब अनाज पे बच्चा शिफ्ट होता है तो उसको शिफ्ट होने में चार पांच महीने लग जाते हैं। एक बार में एक ही अनाज खिलाएं, बच्चे ने हमेशा दूध पिया हुआ, उसको नहीं पता अनाज क्या होता है, तो जो भी आप उसको दोगे वो उल्टी कर देगा, उसको रिजेक्ट कर देगा। अब लेकिन आप लगे रहो उसके साथ, वो पांचवें छठे दिन खाना उसी को शुरू करेगा, लेकिन छह दिन लग जाएंगे उसको, तो छठवें दिन खाना शुरू कर देगा, उसके बाद उसको और छह दिन खिलाइए तो आपके 14 दिन हो गए, 14 दिन के बाद में एक और अनाज उसको इंट्रोड्यूस कीजिए, अगर पहले चावल दिया था तो अब गेहूं इंट्रोड्यूस कर दीजिए, उसके साथ भी बच्चा उसको रिजेक्ट कर देगा, उसको पता ही नहीं है गेहूं क्या है, उसको तो दूध खाया या अभी दूध पिया या चावल खाए, तो ये गेहूं उसके लिए एक अजीब सी चीज है, वो फिर उसको फेंक देगा, तो मदर फिर कहेगी, दूसरे मदर शिफ्ट करती रहती है इधर उधर के क्या खा रहा है, अल्टीमेटली दूध पे आ जाती है। तो लेकिन आप इंसिस्ट करो और प्रोसिस्ट करो, आप लगे रहो, छठे सातवें दिन वो उसको खाना शुरू करेगा, क्योंकि उसको टेस्ट डेवलप हो जाएगा, फिर वो एंजॉय करेगा। और बच्चे घर में जब खाना खाएं, सब इकट्ठे मिलके खाएं, बच्चा वही करता है जो आप करते हो, आप जो बोलोगे वो नहीं करेगा, जो आप करोगे वो करेगा, इकट्ठे बैठ के खाना खाओ वो भी खाएगा।
1: बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अहम बातें बताई हमारे लिसनर्स को, और हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। हम अपने तमाम लिसनर्स की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। डॉक्टर धीरज बहल हमारे साथ मौजूद थे, आप हैं प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स आरएमएल और पीजीआईएमईआर हॉस्पिटल न्यू दिल्ली।
0: धन्यवाद,
1: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर,
0: धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।
2: सामिन आप सुन रहे थे हेल्थ टिप्स प्रोग्राम के तहत, खुश रहे आपकी सेहत के हवाले से, ये आकाशवाणी आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश है प्रोग्राम मार्केट मंत्रा।
3: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: व्यापार अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप डायल कीजिए 2331-4444 2331-0481 और 2371-7106। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। चर्चा को और समृद्ध बनाने के लिए हमारे साथ भाग ले रहे हैं बाजार और अर्थव्यवस्था की गहरी समझ रखने वाले विशेषज्ञ शिशिर सिन्हा और पुनीत जैन। शिशिर जी, पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
1: वेलकम टू बोथ ऑफ यू।
2: थैंक यू।
0: चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां।
1: यूनाइटेड स्टेट्स रिजेक्ट्स इरान 7-डे प्रपोजल टू रीओपन द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। इंडियन स्टॉक मार्केट रिमेन्स अंडर कंट्रोल ऑफ बेयर्स फॉर 7th कंसेक्यूटिव वीक। वॉल स्ट्रीट रैप्स अप वीक विद नोटेबल गेन्स।
0: अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य को खोले जाने वाले ईरान के 7 दिवसीय प्रस्ताव को खारिज किया। भारतीय शेयर बाजार पर लगातार 7वें सप्ताह मंदड़िए हावी और वॉल स्ट्रीट ने बढ़त दर्ज करते हुए सप्ताह का अंत किया।

0: And at the same time, we also have to remember that the inflation number in India is also going to be high. So that high frequency economic indicator, if you talk about India per se, that is also not a good news. So that is why I believe that coming 15 days or a month or so will not be so good in terms of Indian economy. So
1: we are entering the holiday season, or rather the festival season, from October. What do you think? How will the markets take it? How will the economy take it?
0: That's the only good news which are coming, because when you have Navratri from 11th of October, of course we are going to have good purchase, but more purchase will come only in the month of November when we'll have Deepavali. So combination of these two festivals starting from October 11th to for the 9th November, I believe Deepavali is there. So 7th is the Dhanteras. So combination of these three will bring some cheers to the FMCG market, to the electronic market.
1: Hopefully.
0: Yeah. But the only concern at this moment is that the price rise, because many of the companies have indicated that they are going to increase the price. So that may dampen the sentiment. So I may be sounding very pessimist at this moment, but the reality is that the good news are very scarce to find.
1: So Puneet, inflationary trends coming up, as Shishir said, is worrisome.
2: Absolutely, Rajesh. And inflation is technically, it really kills demand. Mm. And that's what we've seen, in fact. If you, while you look at the numbers, the GDP numbers might be slightly higher. But it definitely dampens the mood for consumption. Going forward, like you mentioned, there's going to be festive season. We expect the demand to be better, but I think it will be below what most market expectations were. In fact, one of the first indications was the gold sales in this in the last few days, and we've seen a decline in gold sales because of higher prices. So clearly, price is a mood buster as far as demand is concerned.
3: इस बीच हमारे साथ मुंबई से रत्नाकर जुड़ गए हैं. रत्नाकर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
4: हेलो
3: जी, अपना सवाल पूछिए.
4: हाँ, गुड इवनिंग मैडम. मेरा सवाल है कि अभी जो मार्केट में एआई रिलेटेड बहुत कॉम्पिटिशन, नहीं तो वो पार्टिसिपेट करने के लिए अपील होता है, तो उसमें पार्टिसिपेट करने में आदमी का कितना नुकसान नहीं तो फायदा हो सकता है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? और दूसरा सवाल एक है कि अभी जो एकादा स्क्रीप शेयर स्क्रीप आईपीओ की इश्यू होने के बाद जब भी पहले लिस्टिंग होता है, अच्छा कंपनी का समझो लिस्टिंग हो गया, तो वो ग्लोबली रिनाउंड होने के लिए कितना समय लगेगा, और वो उसके बारे में आपकी क्या राय है, वो ग्लोबली ऑथेंटिकेट कैसे हो जाएगा?
0: देखिए, जो पहला प्रश्न आपका है कि एआई रिलेटेड कंपनीज का, अगर आप बीते सप्ताह का देखें या उसके पहले सप्ताह में देखें, हमने दो तरीके का ट्रेंड देखा. एक बार हमने देखा कि जब जो एआई बेस्ड कंपनीज थी या जो टेक्नोलॉजी कंपनीज थी, उसमें बढ़ोतरी हुई थी, क्योंकि एआई को लेकर के जो दुनिया की कंपनियां, उन्होंने कहा था कि उसकी रफ्तार को कम करना है. और उसके पहले यह कहा गया था कि जो एआई कंपनीज हैं उनको अपनी सुविधाएं विकसित करने के लिए आईटी कंपनियों की मदद की जरूरत है. तो इस समय मुझे लगता है कि एआई कंपनी को लेकर के उत्साह रखना चाहिए, लेकिन अति उत्साह नहीं होना चाहिए. आप अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा, जैसे कह सकते हैं कि अगर आपके पास 100 रुपए शेयर में लगाने के लिए है, तो आप 10 रुपए या 15 रुपए अगर आप एआई में लगाते हैं, और एक कहते ना कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म होराइजन लेकर के चले, तो वो बेहतर होगा. तो ये आपके पहले प्रश्न का जवाब है. दूसरा आपका प्रश्न जो था, वो शायद थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप उस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से नहीं रख पाए, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आईपीओ के बाद जब कोई कंपनी लिस्ट होती है, तो उसको ग्लोबली रिकॉग्निशन होने में कितना समय लगता है. देखिए, ये कोई समय तय नहीं है. एक कंपनी अगर अच्छी है, तो उसको वैश्विक स्तर पर या घरेलू स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए आईपीओ की जरूरत नहीं होती, उसे अपने प्रोडक्ट की जरूरत होती है, उसे अपने सामान की जरूरत होती है, अपनी सेवाओं की जरूरत होती है. आईपीओ एक तरीके से निवेशकों का भरोसा जीतने की कोशिश है, निवेशकों को एक उम्मीद जगह, मतलब निवेशकों के बीच एक उम्मीद ये देता है कि ये कंपनी अच्छा करेगी. तो दो अलग अलग पहलू हैं, और कंपनियां, कई कंपनियां हैं अगर आप देखें आईटी क्षेत्र में, जो कि वैश्विक स्तर पर भी काफी अच्छा नाम कर रही हैं, और वो आईपीओ में भी उनको आए हुए काफी समय हो गया, उनके शेयर प्राइसेस भी ठीक ठाक चल रहे हैं. तो मुझे लगता है कि उसके लिए कोई समय सीमा तय करें कि कितने

0: समय में उनको वैश्विक ख्याति मिलेगी शायद वो उचित नहीं होगा।
1: बेंगलुरु से हमारे साथ एनआर प्रसाद जुड़ रहे हैं। प्रसाद जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: हाय, गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा, दिस इज एनआर प्रसाद फ्रॉम बेंगलोर। हेलो राजेश जी, हेलो प्रिया जी, मिस्टर सिन्हा, टू क्वेश्चन सर। दिस इज रिगार्डिंग फर्स्ट इज आई थिंक जीएसटी काउंसिल मीट इज ऑन 7th October। दे गोइंग टू डिस्कस दिस यूपीआई एमडीआर इश्यू प्लस अदर प्रोसेसेस। नाउ फ्रॉम 15th onwards, इफ इट्स गोइंग टू बी ऑन एमडीआर, वट एवर द इश्यू कम्स आउट, वुड इट हिट द बैंकिंग सेक्टर? This is my first question. Second question is this PLI, second installment of around 19,000 crore being released or under the process of getting released. Which sector can revive because of this in the manufacturing sector? Thank you. These are my two questions.
0: Okay, so what I will do, I will answer the first question, and the second question I will request Mr. Jain to talk about that. So talking about the GST Council meeting, which is scheduled to take place on 7th, and it has already been clarified that the effort and the focus will be entirely on the process reform. Of course, there is a one big issue, which is about the GST on MDR. And see, I mean, if you take the MDR thing, I mean, any transaction which is above rupees 2000, where we are going to have the 0.4% for the normal transaction, then 5 rupees flat fee for insurance premium or railway tickets or for agriculture inputs, and then 0.02 for the stock market transaction. So when somebody is making a transaction, then 18% GST will be charged because this is a financial service. Now the big question was that what will happen to those traders who are not registered and whether they will get the ITC set off or not. So the banks and the others will not be affected in a way because they are going to get the set off. I mean, entire GST outgo for all kind of services, they can also adjust whatsoever GST they have to pay on the MDR. So it's not going to affect the big merchants or the merchants which are the registered one, which are the regular GST SSE. Of course, the composition GST SSE may get sometime affected, but please remember that government has assured that if there is any problem, the proposal can be taken up by the GST Council and some favorable decision is expected. So please wait till 7th. But overall, I think the majority of traders, majority of the businesses which are registered, regular GST SEC, they are not going to be affected by this thing.
3: So please, which sectors or which manufacturing sectors will be affected once the tranche is released?
4: So Rajesh, in fact, the PLI scheme which was launched, and it has really turned out very good results, has so far been focused on incentivizing the manufacturing sector. And the most visible benefits have really gone to the electronic sector, so smartphones and electronic goods, mm-hmm. and those sectors. And then we had automobiles, which also had a certain tranche of for the solar renewable energy, automobiles and electronics. So mostly these sectors were targeted in the first, you can say, version of PLI scheme. However, now government has expanded that sector, that scheme, the scope of benefits, and the next target, the next sectors that are being targeted, basically include pharmaceuticals, chemicals, and semiconductor sector, because these are the areas where we believe that India will now have the edge, the technological edge and knowledge edge to forge ahead. And I think that is appropriate, because these are the areas where pharmaceuticals, for instance, chemicals, semiconductors, of course, we're trying to make a headway and try to create a place for ourselves. Very, very competitive sectors. I think it is very, very good, very farsighted on part of the government to incentivize these sectors, because these are the areas where we can really make a headway. So you look for benefits in pharmaceuticals, chemicals and semiconductors.
1: आइए श्रोताओं, अब जानें कि सप्ताह के अंतराल में शेयर बाजार ने कैसा व्यवहार किया। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार सातवें सप्ताह गिरावट दर्ज की गई। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों, बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और कमजोर वैश्विक संकेतों से निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई। 5 में से 3 कारोबारी सत्रों में बाजार बढ़त में रहे, लेकिन बृहस्पतिवार को भारी बिकवाली के चलते प्रमुख सूचकांक 1.6% से अधिक फिसले और बाजार नुकसान के साथ बंद हुआ। सप्ताह के दौरान दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 399 अंक यानी आधे प्रतिशत से अधिक लुढ़ककर 73,896 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 205 अंक यानी 0.9 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,141 पर स्थिर हुआ। पिछले सप्ताह में दोनों प्रमुख सूचकांकों में करीब 6% की गिरावट दर्ज की गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 2% से अधिक जबकि स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 0.8% की गिरावट आई। बाजार में उतार चढ़ाव का संकेतक इंडिया विक्स सप्ताह के दौरान 6.7% बढ़कर 12.16 पर बंद पहुंच गया। क्षेत्रीय सूचकांकों में निफ्टी आईटी लगभग 2.5%, निफ्टी प्राइवेट बैंक 1.5% और निफ्टी एनर्जी में करीब 1% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं निफ्टी रियल्टी 3% की बढ़त के साथ सबसे अधिक लाभ में रहा। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फार्मा और एफएमसीजी सूचकांकों में भी करीब 1% की बढ़त दर्ज की गई। विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपया इस सप्ताह 6 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.82 रूपये के स्तर पर बंद हुआ। पुनीत, लगातार 7वें सप्ताह की गिरावट अगर हम देखें, किस दिशा में हमारा बाजार अब रुक करके बैठा है?
4: देखिए, जैसे शिशुर ने शुरुआती दौर में ही प्रोग्राम में बताया था कि 4 फैक्टर्स हैं इस वक्त जो बाजार को दबाव में ला रहे हैं। जियो पोलिटिकल टेंशन है, जो वॉर का माहौल है, जो ऑयल प्राइसेस, क्रूड ऑयल प्राइसेस आप देख रहे हैं लगातार बढ़ रहे हैं, उससे बहुत नेगेटिव असर पड़ता है भारत के बाजारों पर। यूएस बॉन्ड यील्ड्स 5% से ऊपर चली गई हैं, उससे भी हमारे जो इन्फ्लोज हैं, जो लिक्विडिटी है, वो उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और चौथा, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग है, लगातार सेलिंग चल रही है। इस महीने भी करीब करीब 20,000 करोड़ का नेट सेलिंग एफआईआई ने किया है। और कुछ हद तक मैं कहूंगा कि घरेलू बाजारों को देखें तो एक तो महंगाई, थोड़ा इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स है, और जो एक तांता लगा था आईपीओ का, उसने भी काफी लिक्विडिटी बाजार से करी है। जब तक ये फैक्टर्स नहीं बदलेंगे, खासतौर से जियोपॉलिटिकल जो फैक्टर्स हैं उस पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि उसी से क्रूड कच्चे तेल की कीमतों पर, उसी से इन्फ्लेशन पर, यूएस बॉन्ड ये सभी उससे अफेक्टेड हैं। तो मुझे लगता है कि ये जब माहौल बदलेगा तभी कोई बड़ी हम यहां से बदलाव देख सकते हैं। बाजार एक ट्रेडिंग रेंज में लगातार 7 सप्ताह से बाजार गिरा है। मेरा ऐसा अनुमान है कि थोड़ा यहां से पुलबैक हम देखेंगे और बाजार में शायद अगले सप्ताह हम थोड़ा पुलबैक देख सकते हैं, बिकॉज वैल्यू बाइंग होगी डेफिनेटली। पर मुझे कोई सस्टेन्ड बाइंग या सस्टेन्ड अपट्रेंड तब तक नहीं होगा जब तक ये फैक्टर्स में बदलाव नहीं आएगा।
1: फरीदाबाद से हमारे साथ सुभाष जुड़ रहे हैं। सुभाष जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
5: नमस्कार सर। सर, मैं ये जानना चाहता था कि इस लगातार 2 साल से ये निफ्टी और सेंसेक्स नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, ये रिटेल इन्वेस्टर कहाँ जाएंगे? सर, ये तो बिल्कुल भी, हमें तो बैंक जो एफडी जो रिटर्न मिलता है वो भी बिल्कुल नहीं मिल रहा, नेगेटिव में जा रहे हैं जितने।
4: सुभाष जी नमस्कार। आप सही कह रहे हैं कि यदि हम पिछले 2 वर्षों का हम आंकड़े देखें तो डेफिनेटली रिटेल इन्वेस्टर्स को पिछले 2 वर्षों में बहुत बड़ी बढ़त नहीं मिली है। हालांकि जो मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर है वहां पर डेफिनेटली प्रॉफिट आए हैं, लेकिन जो लार्ज कैप्स हैं और इंडेक्स को अगर हम देखें तो वहां बहुत प्रॉफिट नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप पिछले कुछ और वर्षों जाएं, यानी हम अगर आप 5 वर्ष से स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टेड थे, तो आप देखेंगे कि वहां पर जो बेनिफिट्स हैं इन्वेस्टर्स को वो काफी रहे हैं। 9 से 10% का कंपाउंडिंग रिटर्न मिली है। तो इसका जो मैं कहूंगा कि मैसेज है वो ये है कि आप शॉर्ट टर्म में मत घबराइए, ऐसा रहता है। हमने बहुत बार देखा है पिछले कई वर्षों में, 2-3 दशकों में हमने देखा है कि शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट्स में कभी कभी रिटर्न नहीं आती है। लेकिन यदि आप यहां बने रहेंगे, अगर आप इन्वेस्टेड रहेंगे 4-5 वर्ष में या उससे ज्यादा, तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिटर्न आएगी। और हमारे पिछले कई वर्षों के, अगर 40-50 साल के हम डेटा देखते हैं, तो ये बात तय है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अबव 5 ईयर्स, उसमें आपको डेफिनेटली रिटर्न मिलेगी। आप इससे परेशान न हो, आप मेरे ख्याल से आप इसमें बने रहे तो बेहतर है।
3: Moving on, US stock markets ended higher yesterday, supported by gains in AI-related technology stocks. However, elevated crude oil prices and a recent surge in US Treasury yields kept investors on edge. Among the major indices, the Dow Jones Industrial Average climbed 0.9%, while the S&P 500 and NASDAQ Composite rose 0.5% each. For the week, Nasdaq rose over 2% after it notched a record high close on Tuesday. The S&P gained 1.2% and the Dow added 0.3% over the week. Meanwhile, U.S. President Donald Trump said he had a very productive meeting with Chinese President Xi Jinping following a three-day summit that showcased personal diplomacy.

0: rather than major breakthroughs in economic relations.
1: वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकिंग यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम लिंक शाखाओं और बैंकों तथा एटीएम के लिए नकदी हेतु करेंसी चेस्टों को पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेनदेन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। और दिल्ली से कृपा शंकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन। कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: धन्यवाद। मैं ये दो सवाल है मेरे। एक तो
1: जी, अपना सवाल पूछिए।
2: नमस्कार। हेलो।
1: हाँ, बोलिए। अपना सवाल पूछिए।
2: जैसे कि जीएसटी घटने के बाद कंपनियों ने अब क्या नई ट्रिक अजमाई है कि जो रेट थे वो कुछ उनके अपने एमआरपी बढ़ा दिए और वो रेट के रेट वैसे भी इनके वैसे ही चलते आ रहे हैं, ये कुछ चीजों में हमने चेक किया है। दूसरा सवाल मेरा यह है, जैसे कि हमने पहले एक व्हाइट सोना खरीदा हुआ है तो ये इसकी जानकारी चाहिए कि व्हाइट सोने का रेट मार्केट से में सुना है कि येलो सोने से महंगा है।
3: मेरे ख्याल से जीएसटी के मामले में दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि आपने कहा कि जो खुदरा मूल्य है, अधिकतम खुदरा मूल्य जिसको हम लोग एमआरपी के नाम से जानते हैं, वो बढ़ा दिया गया है। देखिए, कंपनी के एक ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि कच्चे सामान के दाम काफी तेजी से बढ़े हैं, कच्चे माल के, और उसका असर आपकी कंपनी के अलग अलग उत्पाद उनके ऊपर देखने को मिला है। खासतौर पर अगर मैं गाड़ियों की बात करूं जिनके दाम जो है वो बढ़े हैं, लेकिन अगर फिर भी जो अध्ययन किए गए हैं उस अध्ययन में ये है कि जीएसटी की कटौती जो कि 22 सितंबर 2025 से लागू हुए थे उसके बाद दाम में जो कमी आई, अभी बढ़ोतरी तो हुई लेकिन वो कमी पूरी तरह से हम कहें कि खत्म हो गई है वो अभी उचित नहीं है। ये अध्ययन में सामने आया है, बहुत सारे आंकड़े भी सामने आए हैं। दूसरा आपने प्रश्न पूछा है व्हाइट गोल्ड का, मुझे लगता है कि आप प्लैटिनम का जिक्र कर रहे हैं जहां पर ये चर्चा होती है। और दूसरी बात आप ये भी ध्यान रखिए कि अलग अलग गोल्ड की भी बात की जाती है, कहीं पिंक गोल्ड की बात की जाती है, रेड गोल्ड की बात की जाती है। तो ये वो सोना है जो कि हम जिस गोल्ड मेटल की बात करते हैं, जिस सोना धातु की बात करते हैं, वो ये नहीं है, ये मिश्रित धातु है। और व्हाइट गोल्ड एक अलग तरीके का, आप जैसे प्लैटिनम का, जैसे मैं समझ पा रहा हूं आपकी बातों से कि वो उसके दाम अलग हैं, वो निश्चित तौर पर उसकी मांग काफी ज्यादा है। और बाकी जो आप अलग अलग सोना देखते हैं वो सोना जो है वो मिश्रित धातु है, ये ध्यान रखें।
0: Global crude oil prices displayed mixed trend this week. Brent crude November futures rose 0.4% to settle at $104.32 per barrel. West Texas intermediate crude November futures tanked 3.8% to end at $92.41 per barrel over the week. However, oil prices eased over the last few trading sessions as markets grew hopeful of a phased truce between the U.S. and Iran, with both sides reportedly in touch through mediators on the sidelines of the U.N. General Assembly meeting. Now, we read in the headline story about U.S. rejecting Iran's seven-day proposal to reopen Strait of Hormuz. In such a scenario, Puneet, how should India be navigating the growing crude oil prices, especially if they continue to persist on a northern side?
4: So, Rajesh, clearly for India, the challenge is enormous, because not only do we have to contend with rising crude oil prices in the international market, we have limit, because we are the world's second largest importer of crude oil. So, clearly, we need very large supplies also. However, what geopolitical tensions are dictating to us, and particularly the latest trade tariff threat by the U.S. on imports from Russia, I think India has really its task cut out in a sense, because we need to import energy from Russia because there is no other large supply of energy like Russia, and therefore I think while we have we are looking at Brent crude about $100-$105, we really need to be cautious and going forward need to maintain supplies also.

0: to see that they are economic in nature.
1: शिशिर, इस संदर्भ में अगर देखें तो वैश्विक स्तर पर एक दबाव पड़ता है, चाहे वो सप्लाई चेन हो या और भी कोई अन्य आपूर्ति की जो चीजें हैं, जो हर देश को जिसकी जरूरत है, दबाव पड़ता है. ऐसे में किस तरह से हम आगे आने वाला भविष्य देख रहे हैं?
2: देखिए, दो बातें होती है. एक तो होता है कि आप विविधीकरण करते हैं कि आप चलो आप एक जगह से तेल ना लेकर के आप चार जगह से और तेल लेते हैं. और हमारे लिए ये भी समझना महत्वपूर्ण है कि हमारे लिए केवल ब्रेंट का प्राइस नहीं होता, हम जिसको कहते हैं इंडियन बास्केट का जो प्राइस होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि उसमें कई तरह के जो स्रोत हैं वो शामिल होते हैं. तो अभी की स्थिति में जो हम लोग देख रहे हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी कि हम हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जो कुछ घटना चल रही है, जो वैकल्पिक व्यवस्था है, उसमें एक रूस का रास्ता थोड़ा सा हमारे लिए महंगा पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें टैरिफ ज्यादा देना पड़े. हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि जब जयशंकर साहब की रवियो साहब से बातचीत हुई, उसमें उन्होंने ये मुद्दा उठाया और यूएस की ओर से, अमेरिका की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया कि राष्ट्रपति के पास वो विशेषाधिकार है कि किसी एक देश के प्रति यदि वो कुछ कमी या रियायत दे सकें. तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद इस बातचीत का सार्थक नतीजा निकलेगा और हमारे ऊपर उतना असर नहीं पड़ेगा जितनी हम आशंकित हैं.
1: नोएडा से हमारे साथ आकाश जुड़ रहे हैं. आकाश जी, कार्यक्रम में अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: हेलो, मैं नमस्ते सर को, नमस्ते. मैं आकाश नोएडा से बोल रहा हूँ. सर, मेरा सवाल ये है, जैसे मैं 29 है मेरी और शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है अभी, जैसे हमारी एफडी ब्रेक होने वाली है, मैच्योर होने वाली है, तो हम तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं शेयर मार्केट, तो हम किस कौन हमें गाइड करेगा, कैसे मतलब हम कर सकते हैं, उसके लिए कौन बता पाएगा हमारे को अच्छी मतलब नॉलेज उसके लिए.
2: आकाश, मेरी एक सलाह है कि अगर आपको शेयर बाजार की जानकारी नहीं है तो शेयर बाजार ना जाएं. बाजार रातों रात आपको एक, जिसे कहते हैं ना, क्या एक आपको निवेशक नहीं बना सकता है. तो आपके लिए अभी बेहतर यह है कि अभी थोड़ा समय इंतजार करिए, पहले समझिए बाजार को. बहुत सारे स्रोत हैं जो प्राथमिक स्रोत हैं, सेबी के कई सारे वर्कशॉप्स होते हैं, वहां पे आप समझ सकते हैं, उसके बाद ही आप निवेश करें. अभी के समय में मेरी सलाह है ना जाएं, बेहतर होगा.
1: नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR प्रारूप 15 अक्टूबर से लागू होगा. इसके अंतर्गत ₹2000 तक के UPI लेनदेन पर कोई MDR नहीं लगेगा. हालांकि कुछ विशेष श्रेणी के व्यापारियों के लिए प्रतिशत के बजाय एक समान यानी फ्लैट MDR लागू होगा.
4: Finance Minister Nirmala Sitharaman has expressed confidence that India can achieve economic growth of over 10%, stressing on the need for a greater adoption of technology and innovation.
1: बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर जी, पुनीत जी, कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, तमाम श्रोताओं के तमाम सवालों के तमाम जवाब देने के लिए
2: धन्यवाद.
4: जेंटलमैन फॉर बीइंग विद अस. एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, United States rejects Iran's 7-day proposal to reopen Strait of Hormuz. Indian stock markets remains under control of bears for 7th consecutive week, and Wall Street wraps up week with notable gains. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
5: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
6: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 PM.
7: हमें आप सुन रहे थे प्रोग्राम मार्केट मंत्रा, ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात. जैसा मैंने पेश है फरमाइश फिर मिला पर मबनी प्रोग्राम तामिल इरशाद. तमाम सामीन की खिदमत में अब्दुल्ला की जानिब से पुरखलूस आदाब.

হবেন ভো কন্থি। আশা ভোসলে কি আওয়াজ মে সামিন আপনি ইয়ে নগমা সোনা। রাজা মেহদী আলী খান মকবুলো কো কলম বন্ধ কিয়া থা মৌসিকি সজাই থি মদন মোহন নে। ফরমাইশ আপ সবকি জানিব সে মৌসুল হুই। ये फरमाइश हमें किशनगंज बिहार से मौसूल हुई। रविंद्र मोहनदास आशा देवी कीर्ति भारती की तरफ से। उपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंद शहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निखत परवीन अब्बासी शहनवाज सरफराज अब्बासी। और फरमाइश हमें इस साल की है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा ने। इस नगमे को सुनना चाहते थे ये सब और इसी नगमे की जो फरमाइश हम आपको बताने जा रहे हैं रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा कालका से शुभचंद्र बजाज साहिल बजाज बिट्टा बजाज। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी महेंद्र कुमार तिवारी और उमा तिवारी इनके साथ हैं। फरमाइश भंडारा रोड क्रुमाना महाराष्ट्र से मौसूल हुई। हर्षिल पाटिल मंदाकिनी पाटिल विकास पाटिल। और फरमाइश मुल्लापुर दाखा से मौसूल हुई राजेश जैन बिट्टू जैन घोटना जैन की इनके साथ। अलीगढ़ डबवाली से एक मैसेज हमें फरमाइश इरसाल किया गया बसंत सिंह चंद राजकुमार और कुलदीप गांधी का। देवी भाटापारा से के आर साहू आकाश कमलेश और इनके साथ चंद एक साथी भी हैं। नई दिल्ली रजौरी गार्डन से ध्वनि और सानवी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। फरमाइश इरसाल की है उत्तम नगर दिल्ली से बुधराज खोरवाल कमला रानी

I mean, I didn't. फिल्म चा चा चा का ये दो गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। इसे को कलमबंद किया था मखदूम मोहिउद्दीन ने और मौसीकी तरतीब दी इकबाल कुरैशी ने। फरमाइश आप सबकी जानिब से मौसूल हुई चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, जयपाल यादव, अस्पताल रोड, विश्वविद्यालय सागर, मध्य प्रदेश से ये फरमाइश हमें इस साल की, और कर्नाटक गुलबर्गा से मोहम्मद रुकनुद्दीन मंठाल, शब्बीर बनहट्टी और आसिफ इकबाल की जानिब से ये फरमाइश। शेरवानी स्कूल गंजद्वारा से आफ्ताब अहमद अंसारी, रियाज अहमद अंसारी और अनवर मास्टर। गांव फारणसी हिसार से राजकुमार दूती, प्रमोद कुमार दूती, पुष्पेंद्र कुमार दूती इनके साथ हैं। फार्मोकोलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद और ये फरमाइश। जगमोहन सिंह प्रजापत, अर्जुन भारती, भुवनेश्वरी देवी, लोहड्डा जिला बागपत से फरमाइश इस्तेमाल करते हैं। खंडवा की सहेलियां शामिल हुई हैं हमीदा बानो, आशा भदौरिया और सईदा बानो। ये फरमाइश नेहरू चौक पैठन से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, सोनल प्रसाद जाधव की जानिब से फरमाइश की। ये फरमाइश हमें सहेली रेडियो श्रोता संघ बापू कॉलोनी अब्दुल्ला मस्जिद खंडवा मध्य प्रदेश से बेबी शालिया डावर, बेबी हलीमा डावर, बेबी जिक्रा डावर, जोसीना बी आर टेलर, सुमन सरिता है उत्तम नगर दिल्ली से और ये फरमाइश खिलाल शरीफ जिला खंडवा से मौसूल हुई सलीम चौधरी, माहिनूर और सुल्ताना की। मनमोहन रजावत, मधु रजावत, राशि रक्षित, रजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से ये फरमाइश इस्तेमाल करते हैं। उमाली महाराष्ट्र से अनुप कुमार, उद्धव पाटिल ने भी इस नगमे को सुनना चाहा था। ये फरमाइश ग्राम पोषण मटकई जिला बरेली से शाहरुख अंसारी, शकील हैदरा से मुइन अंसारी और इनके साथ और भी साथी हैं। आइए समीन अब आपको सुनवाते हैं आए दिन बहार के फिल्म का ये नगमा, लता मंगेशकर का गाया हुआ नगमनिगार आनंद बख्शी, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फरमाइश आप सब की है मुस्लिम सैफीज, अबुनिसा बेगम, सद्दाम सोनी, बलराम गेट, कासगंज से और ये फरमाइश राकेश पेट्रो, सानिका देवदत्त कोलकाता से शामिल हुए हैं। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, शरा भगत, किशु ताशु, जाफरगंज जहानाबाद बिहार से फरमाइश इरसाल करते हैं इंतजार अंजुम आलम आरा और शामिल। ये फरमाइश वाराणा शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से अंकिता अनिकेत चौहान, विजय चौहान, तेजस्वनी चौहान। पश्चिमी दिल्ली से उत्तम सिंह जुनेजा, भूपेंद्र जुनेजा, सीमा जुनेजा और इनके घर के दीगर अफराद। गांधीग्राम गुजरात से परमवीर सोनी, करावती सोनी, प्रथम सोनी, कृष्णा कॉलोनी हाजी से सुभाष योगी, अजमिगलानी, बब्बू डब्बू और ये फरमाइश इस साल की है। बोताला महाराष्ट्र से विजय सरलकर, कुमकुम गुड़िया ने। कोलकाता से सुब्रत चौधरी भी शामिल हो गए हैं और ये फरमाइश कापसेरा बॉर्डर नई दिल्ली से आमना नसरीन आजाद, असमा परी है और बागवान मंजिल छोटी बलिया करजत, मुंबई से नूर आयशा अहमद बागवान, अखलाक अहमद बागवान, दीना राजेश, रिंकी, गुलाब कॉलोनी सागर, मध्य प्रदेश से फरमाइश इन्होंने हमें इस साल की है और

0: गोया एशियाई खेल 2026 में स्तंभों की फहरिस्त में अपना मजबूत मकाम बना लिया और उसने कबड्डी, खेलकूद और निशानेबाजी जैसे खेलों में 7 मजीद तमगे जीते हैं। भारत के मर्दों और खवातीन की कबड्डी टीमों ने आज सोने के तमगे जीते। मर्दों की कबड्डी टीम ने फाइनल में ईरान को 34 के मुकाबले 40 से हराकर सोने का तमगा जीता। खवातीन की टीम ने भी ईरान को एक सनसनीखेज फाइनल में 34 के मुकाबले 37 के फर्क से कामयाबी हासिल करके सोने का तमगा जीता। एथलेटिक्स में तजिंदर पाल सिंह तूर ने 20.64 मीटर की दूरी पर शॉट पुट फेंक कर चांदी का तमगा जीता। साबान बरवाल ने मर्दों के मैराथन में चांदी का तमगा जीता और इस तरह 44 साल का भारत का इस खेल में जीत का इंतजार खत्म हुआ। बरवाल ने 2 घंटे 11 मिनट 37 सेकंड में दौड़ पूरी की। प्राची चौधरी ने 53.21 सेकंड में खवातीन की 400 मीटर की दौड़ में कांस्य का तमगा जीता। निशानेबाजी में टिल टोमासेन, विद्रासा के विनोद और आशी चौकसी ने खवातीन के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम मुकाबले में 1763 पॉइंट के साथ चांदी का तमगा जीता। तमगा की फहरिस्त में भारत फिलहाल 10वें मकाम पर है और उसने सोने के 4, चांदी के 12 और कांसे के 14 तमगों के साथ कुल 30 तमगे जीत लिए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने एशियाई खेल 2026 में जीत हासिल करने पर खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है। आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। इंतखाबी कमीशन ने एक बार फिर कहा है कि तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर-ए-इंतज़ाम इलाकों के लिए एसआईआर का हुक्म उसकी इत्तेफाक राय से तय पाई मंजूरी के बाद जारी किया गया। उसने कहा कि बूथ लेवल ऑफिसर एसआईआर के दौरान उन घरों का दौरा करेंगे जिन वोट दहिंगान को नोटिस जारी किए गए ताकि दरकार दस्तावेज जमा कर सकें। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने केरल में एनसीसीएफ की कई स्कीमों का तय किया ताकि इमदादे बहानी के इदारों में खवातीन की शराकतदारी को फरोग दिया जा सके। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत का कहना है कि बच्चों के माबेन मनुष्यात के इस्तेमाल को बच्चों की हिफाजत मुतालिक मामले के तौर पर देखा जाना चाहिए। एशियाई खेलों में भारत की खवातीन और मर्दों की कबड्डी टीमों ने जापान में सोने के तमगे जीते हैं। तेजिंदर पाल सिंह तूर ने मर्दों के शॉट पुट में चांदी का तमगा जीता। तमगों की फहरिस्त में भारत ने सोने के 4, चांदी के 12 और कांसे के 14 तमगों के साथ 30 तमगों तक पहुंच गया है। आकाशवाणी से खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस के नशरिया। फिली समय अब पेश है फरमाइश फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम तामिल इरशाद के बाकी नगमे।

हॉरर फिल्म का नाम है मुकेश कर गए हुआ आपने सुना। नमनगार इंदीवर मुसिकार कल्याण जी आनंद जी और फरमाइश आप सब की हमने आप तक पहुंचाई। नाम इस तरह है जी अब्दुल गफ्फार डावर खुशनसीब अब्दुल हक डावर जियाउल हक डावर नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से फरमाइश इस्तार करते हैं। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी जी भी शामिल हुए हैं और ये फरमाइश खत्ते कॉलोनी खंडवा से मौसूल हुई मोहम्मद कासिम मदानी फॉर पेंटर बाबू की। कल्पना मदन झा मानव और मयंक शामिल हुए हैं। नरोज फाटक भिलाड़ वापी गुजरात से गावना थाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसी जसी सीता गीता फरमाइश सुशांत प्रिया झा मास्टर निवेश कुमार लड्डू कुमार टिमन मार्केट कीर्ति नगर नई दिल्ली से। जवाहरनगर उदयपुर से बाबू भाई भारती देवी और ये फरमाइश हमें इस साल की है। सोपनताड़े पीएस ना होकर वसंतराव भोजने मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से। अल्तम समीना मुदस्सिर खंडवा नगर के जुम्मा नगर खंडवा के बच्चे भी शामिल हुए हैं। एक जाजी लक्ष्मण जगताप जी अल्लाह बख्श जी रेडियो की आवाज ग्रुप मधुबनी बिहार से शामिल हुए। बैली बैला डीला बस्तर छत्तीसगढ़ से शिव प्रसाद देवदास मोहित कुमार देवदास और कुमारी युवती देवदास। जाकिर मुलानी सुमैया मुलानी सुभान मुलानी और इनके घर के ढेर सारे अफराद तमाम अहले खाना मुक्कम पुलचिनचोली पंडरपुर से फरमाइश इस्तेमाल करते हैं। अरविंद कुमार गुड़िया कुमारी भव्य कुमारी मेरी पट्टी मधुबनी बिहार से ठीकरी मध्य प्रदेश से शबना

बच्चे, और ये फरमाइश हमें इस साल की है, श्याम किटे, वंदना किटे, कार्तिक किटे, राहटगांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से, ताज रेडियो क्लब कल्याणगंज खंडवा से, कौशल बी पवार, हसीना बी पवार, हिना सईद खोकर, और अमरी खेड़ा वाशिम महाराष्ट्र से हेमंत खेराड़े, सारिका खेराड़े और खेराड़े अहले खाना साथ में है सोनाली। गायत्री कॉलोनी खंडवा से फैज अहमद अफसाना, हुरेन फातिमा, रजाक मोहम्मद, इमरान खान, इरफान खान, हनुमानगढ़ राजस्थान से शामिल हुए हैं। बाजार फैल शेगांव महाराष्ट्र से मोहम्मद अनीस मोहाल, मोहम्मद दानिश मोहाल, मोहम्मद रिजवान मोहाल, भाटापारा से बशकामन, मोतीलाल यादव, बसंत भ्रग, और ये फरमाइश सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, शराव्या रामटेके, विजय मौविया, कविता मौविया, सोनू मोनू है रामगंज खंडवा से। आई सामिन, अब आपको सुनवाते हैं ममता फिल्म का नगमा, लता मंगेशकर का गाया हुआ मजरूह सुल्तानपुरी, नगमनिगार मौसीकार रोशन, दादाजी रोड खंडवा मध्य प्रदेश से फरमाइश इस साल की, मोहम्मद हसनैन, सुबाबा, साफिया अरहान खोखर ने, इंदौर मध्य प्रदेश से अनिल कोचाले और सुषमा, करेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, वंश बत्ता और निहारिका बत्ता। यवतमाल से राहुल मनवर, सल्ला मनवर, बेबी प्रियांशी, और ये फरमाइश इस साल की है हमें, उनके नाम है पुराना तालाब डुमराव से वलीला अंसारी, अस्मारा अंसारी और सुल्तान अंसारी, खंडवा की तीनों बहुएं शामिल हुई, साबरा, शबाना, रईसा, और ये फरमाइश बाजार कोर्ट मुंबई से मौसूल हुई, बेगम सोनम शेख, मारिया आयश शेख, मोहम्मद अरीब शेख की। महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, मिथिल नाचानी, मिथिला नाचानी, भारती नाचानी, डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी शामिल हो गए हैं, इनके साथ बेगम हमीदुल सिद्दीकी है, जीशान अहमद सिद्दीकी, पुरानी भिलाई, तीन चरोदा, छत्तीसगढ़ से, और ये साहब हैं सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु नारंग, सोनाली नारंग, सिद्धपुरा टाउन तिदवई नगर से जुबैर अली खान, सबिया जुबैर, अंजुमन खान को हमने शामिल कर लिया है। चिपकड़ों ने खंडवा से मोहम्मद यूनुस खत्री, मोसादी खत्री, अयूब खत्री शामिल हो गए हैं। चमनपुरा उदयपुर से सबिया खानम, फरीदाबानो, रईसा खातून, छाया कोहली, प्रियांश कोहली, अनिल कोहली, वांजरा ले आउट नागपुर महाराष्ट्र से इस नगमे को इन्होंने सुनना चाहा है। प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा मध्य प्रदेश से आनंद जोशी, ध्रुवी जोशी, फाल्गुनी जोशी, और ये फरमाइश इस साल की है। अजमेर शरीफ राजस्थान से सैयद आलम हाशमी, गुल्ला सलमा हाशमी, मोहम्मद आलम हाशमी। पुलिस अमीन, आप सबकी पसंद पर नगमा आप सबकी खिदमत में है।

सामिन आशा भोसले को आप सुन रहे थे, फिल्म थी कोहिनूर और नगमनिगार शकील बदायूनी, मौसिकार नौशाद। फरमाइश आप सबके में मौसूल हुई नूर महल महसूल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहानाज, तरत जहानाज, फरहत जहानाज, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर, नारायण इंगले और इनके साथ और भी साथी हैं। ये फरमाइश हमें एहसाल की है। छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, सदफ इकबाल फूलवाले, लखमिया जिला बेगूसराय से शमीम अहमद राई, निमरान अहमद फूलवाले और अहले खाना, वाड़ीखेड़ा पंजाब से मिंटू टोमस, पिंकी अरोड़ा। ये फरमाइश हमें इस साल की है जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम कुमारी, राकेश कुमार और गांव बिटोड़ा भुयर तहसील मंगरूल पीर जिला वाशिम पश्चिम विदर्भ से योगीराज मस्के, शहरी मस्के, इंदुमती और इनके साथ और भी साथी। फरमाइश इस्तेमाल करते हैं खान मजिलगंज डुडवारा से आगा खान, आगा भाई ऊद खान, बेबी अमल खान और ये फरमाइश हमें भेजी है जेल रोड जालंधर की तीनों बेटियों ने, रोशन जहां, मनोज जहां और नुसरत जहां ने। पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्वनी चुग, गोविंद चुग, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, मयंक भाटिया शामिल हुए हैं और ये फरमाइश मोदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी की हमें मौसूल हुई है। आकली दीवान मध्य प्रदेश से भाई रामलाल चंद्रवंशी, कृष्ण चंद्रवंशी, दिलीप कुमार चंद्रवंशी और तखतपुर छत्तीसगढ़ से विश्वलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी विश्वकर्मा और चेतन विश्वकर्मा शामिल हुए। डबा बाजार से गुजरात से मनोज मंदिर, अयूब मुल्ला जी, अब्दुल्ला वाघ जी, हसीन अभी मंसूरी, अमीन अभी मंसूरी, रफीक मंसूरी, पालदाना का इंदौर मध्य प्रदेश से, साईनगर आरबी महाराष्ट्र से नरेंद्र मिर्गी, प्रियादर्शनी मिर्गी, डॉक्टर प्रियंका काल पांडे, प्रकाश रंबाड़े, भारती रंबाड़े, बंगाली पांजा, नागपुर से फरमाइश इस्तेमाल करते हैं के संजीव डाबेराव, डॉक्टर रसिका डाबेराव, डॉक्टर कौस्तुभ डाबेराव, विदर्भ आकोट से सलीम चौधरी, माहिनूर, सुल्ताना, खिलाल शरीफ जिला खंडवा से शामिल हुई हैं और ये फरमाइश हमें अकोला महाराष्ट्र से मौसूल हुई, रमेश कामले, दिव्यानी और गणेश कामले की। भगत बेलहुबली कर्नाटका से सफीर मुल्ला जी, दिस मुल्ला जी, रफीक मुल्ला जी, ये फरमाइश साल की है संतोष जायसवाल, मधु जायसवाल और अमन जायसवाल ने पंधाना जिला खंडवा से, दीपक सेन, सौम्य सेन, पूनम सेन फरमाइश सिटी सेंटर खंडवा से भेजते हैं हमें और ये अंजू मंजू संजू है शिवपुरम कॉलोनी खंडवा से, ये भी तशरीफ लाए हैं। शाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, कामरान बुधवार बाजार खंडवा से और मंगली पांजा नागपुर से प्रकाश राम भाड़े, भारती रम भाड़े, उस्त भागलपुर से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन मंडल। आई समीन अब माया फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी का गाया हुआ, मजरू सुल्तानपुरी नगमनिगार और मौसिकार सलील चौधरी। इस नगमे को सुनना चाहा है अस्तुपुरा जिला मऊ से मदर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी ने, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवान परवीन और अब्दुल्ला आजाद ने। फरमाइश हमें इस साल की है इमलीपुरा खंडवा से शकूर वली, रहीम वली और बासिद वली। आवास विकास कॉलोनी कासगंज से पवन गौड़, तन्मय पूर्वी गौड़, सुयश आशीष गौड़, फाजिलका पंजाब से ये फरमाइश व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, इंद्रविहार दिल्ली से बेबी अंसारी, निशा परवीन अंसारी, डब्लू अंसारी इनके साथ है। ये फरमाइश हमें इस साल की है ताजमंजिल लखनऊ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार और इनके साथ मेरे अजीर कौसर, मोहम्मद हसनैन पवार, जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार और
बल्लू निषाद को भी हमने शामिल कर लिया है। दुर्गा प्रसाद सैनी, अनिता सैनी, गौरव सैनी, शनि मंदिर चौक खंडवा से ये फरमाइश इस साल करते हैं और ये फरमाइश हमें मौसूल हुई है अजीज भाई, मतीन भाई, शेख चंद फारूक फूल वाले, कहां से है ये फरमाइश? नेहरू पार्क निजामाबाद से फरमाइश वैसे हमें इस साल होती है, लेकिन आज इन्होंने अपने घर का पता हमें नहीं दिया जहां से फरमाइश हमें भेजते हैं। जाकिर अयूब और यूसुफ खड़गपुरा खंडवा से, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो और विलियस डिकेस्ट्रो, स्टेट बैंक ईश्वर कॉलोनी नंगली डेरी नजफगढ़ से मैथिली कुमारी, लड्डू कुमारी टुक टुक इनके साथ है, मुमताज मोहल्ला नवगछिया से इसराइल अंसारी, सीरत अंसारी और आलिया खातून, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमाराज दिव्य भारती और साथ में इनके और भी साथी हैं, रेडियो के दीवाने ग्रुप दिल्ली से रेशमा अंसारी, निशा और सईद अंसारी, नसरीन खान, वसीम खान, मुबीना खान, फोरम टावर गली वाली गली खंडवा से ये फरमाइश इरसाल करते हैं। और सामीन हमें फरमाइश और भी मौसूल हुई है, अमीर खुसर रोड गंजुडवार से डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार, भुवन प्रकाश गौतम, मल्टाउन करनाल से सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, जगी दुआ और ये फरमाइश महाराणा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, नबीद हसन अब्बासी और इनके साथ और भी साथी हैं। अमीर खुसर रोड गंजुडवार से इंजीनियर भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार इनके साथ और नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से वो फरमाइश में मौसूल हुई थी जिनके नाम हमने अभी बताए थे आपको। मेहताब रेडियो क्लब न्यू मार्केट पटना बिहार से वसीम अकरम, सौरिया खातून और गुड़िया खातून, मनोज जेठवा, हर्ष जेठवा, बेबी अवीरा, बुराव के नगर श्रीरामपुर से, गौतम नगर नांदेड़ महाराष्ट्र से प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले और ये फरमाइश इस साल की है। ताम्बरम चेन्नई से शाहिद अली फतारुकी, हिफ्जा अली और बबलू अंसारी, डब्लू अंसारी, बेबी आलिया, स्टेशन रोड जामताड़ा झारखंड से हमें फरमाइश इस साल करते हैं। नीटू मल्होत्रा, खैर बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार

गायकवाड कुवी नांदेड़ महाराष्ट्र से ये फरमाइश हमें इरसाल की है और ये फरमाइश रघुवी नगर दिल्ली से जफर मौजम शेख इशरत फातमा और बेबी अरिशबा शेख की मौसूल हुई। डब्बा बाजार सुर गुजरात से हम शामिल कर चुके हैं और ये फरमाइश है कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता दादा ठाकुर रुद्र गुप्ता राजनगर कांति निकेतन से। आइए अब और भी नाम शामिल करते हैं। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी हसन अंसारी मोहम्मद कैफ अंसारी मोहनपुर कमालगंज फरुखाबाद से तस्नीम अहमद फारूकी को हमने शामिल कर लिया है। विनायक बेंटे मंगला बेंडे शुभम बेंडे ताकोट से फरमाइश हमें इरसाल करते हैं और ये फरमाइश है फरमाइश हमें इस साल की है सरोज चौरसिया सुरेश चौरसिया फरुखाबाद साहबगंज चौराहा उत्तर प्रदेश से। वफार खत्री हामिद खत्री रऊफ खत्री बड़वा मध्य प्रदेश से फरमाइश इन्होंने इरसाल की है। ये फरमाइश नारा सुपारा मुंबई महाराष्ट्र से मौसूल हुई मोहम्मद आसिफ शेख मोहम्मद नुमान शेख मोहम्मद सुलेमान शेख की जानिब से। ऐश बाग लखनऊ से रानी मुकेश रश्मि और नीलम को हमने शामिल कर लिया है। फरमाइश इरसाल करने वाले हैं मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन और संदीप गुगलानी। तो लीजामिन अब आप सबकी पसंद पर यह नगमा एक शाम फरमाइश और शामिल करते हैं। मोहम्मद यासीन अंजान गिरिडीह झारखंड से हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। हमीदा अयूब रहीम सनावद मध्य प्रदेश से शामिल हो गई हैं। तो आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का माया फिल्म का नगमा और अगर कोई और फरमाइश हमारे पास आएगी हम उसको भी शामिल करते चलेंगे।

मुंबई से सिद्धांत गोहरकर, प्रणीता गोहरकर और अर्जुन गोहरकर, मेहनगर उमरखेड महाराष्ट्र से अभिजीत गोहरकर, सरिता गोहरकर, एकाश गोहरकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गोहरकर, सवित गोहरकर।

0: तुझे देगा वो मालिक वो प्यारे जबा मैं तेरी मीठी करूँ।
1: जागर तलवाड़ी, यूनुस तलवाड़ी गोगवा मध्य प्रदेश से शामिल हुए।

0: पंडित वसंत देश पांडे का राग जनसमोहिनी में गाया ख्याल समय आप सुन रहे थे। इसके साथ ही बस में मौसीकी का ये प्रोग्राम खत्म होता है। यह आकाशवाणी आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की शरियात सामीन शब के 12 बजे हैं। ये पेश है आलमी खबरें।
1: यह आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद आजम खान से आलमी खबरें सुनिए। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने तरक्की पजीर मुल्कों के लिए ज्यादा नुमाइंदगी की वकालत करते हुए अकवामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल फौरी असलाहत की अपील की है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत में सेक्रेटरी पूनिया सलीला श्रीवास्तव ने न्यूयॉर्क में अकवामे मुत्तहिदा की आला सतह मीटिंग में आलमी सतह पर वबा से निपटने के लिए तैयारी और कार्रवाई के तहत भारत के अजम का इहादा किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्याल का इजहार करेंगे। और एशियाई खेलों में भारत की खवातीन और बर्तों की कबड्डी टीमों ने जापान में सोने के तमगे जीते हैं। तेजिंदर पाल सिंह तूर ने मर्दों के शॉटपुट में चांदी का तमगा जीता। तमगों की फहरिस्त में भारत ने सोने के 4, चांदी के 12 और कांसे के 14 तमगों के साथ 30 तमगों तक भारत पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने अकवामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इस्लाहात की फौरी जरूरत पर जोर दिया है ताकि इस इदारे में तरक्की पजीर मुल्कों की ज्यादा से ज्यादा नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जा सके। न्यूयॉर्क में अकवामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 81वें इजलास के मौके पर G77 वज़राए खारजा की 50वीं सालाना मीटिंग के मौके पर भारत की तरफ से बयान देते हुए जनाब मिस्री ने आलमी खित्ताए जनूब के मुल्कों को जाब्तों पर अमल आवरी करने वाले मुल्कों के बजाय जाब्ते तश्कील देने वाले मुल्क बनाने की खातिर मुश्तरका इकदामात पर जोर दिया है। उन्होंने अवाम पर मरकूज और तरक्की पजीर मबनी कसी रुखी निजाम में G77 की मुसलसल अहमियत पर भी जोर दिया। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत में सेक्रेटरी पूनिया सलीला श्रीवास्तव ने न्यूयॉर्क में अकवामे मुत्तहिदा की आला सतह की मीटिंग में आलमी सतह पर वबा से निपटने के लिए तैयारी और कार्रवाई के तहत भारत के अजम का इहादा किया। मीटिंग से खिताब करते हुए सेक्रेटरी मौसूफ ने हुकूमत और समाजी सतह पर वबाई बीमारियों की रोकथाम और कार्रवाई से कतई भारत के मजबूत हिकमत अमली पर जोर दिया, जिसमें सेहत से मुतालिक मुमकिन तौर पर कई हंगामी हालात का अहाता किया गया। उन्होंने सेहत से मुतालिक हंगामी सूरत हाल से मौसर तौर पर निपटने के मकसद से निजाम को सहूलियात से आरास्ता करने की खातिर लेबोरेटरी नेटवर्क हंगामी हालात में तालमेल तिब्बी अफराधी कुव्वत और तिब्बी निगहदाश्त की सलाहियत के सिलसिले में भारत की तरफ से किए गए इकदाम के बारे में बताया। मुगल ख्वाजा डॉक्टर एजय शंकर ने मसनूई जहानत AI से हामिल इम्कानात का बरोए कार लाने इसके असरात का अंदाजा लगाने खतरात को कम करने की जरूरत पर जोर दिया है। मुगल मौसूफ ने एक प्रोग्राम के दौरान तबसरा किया, प्रोग्राम बड़ी सलामती पर खसूसी तवज्जो के साथ बैन अलाकवामी अमन सलामती के तनाजुर में AI के मौजू के तहत मुनद किया गया, जिसकी सदारत वजीर खारजा जयशंकर और यूनान के उनके हम मसब जॉर्ज ग्रेपट्रीज

0: तमगे जीते हैं। भारत के मर्दों और खवातीन की कबड्डी टीमों ने सोने के तमगे जीते। मर्दों की कबड्डी टीम ने फाइनल में ईरान को 34 के मुकाबले 40 से हराकर सोने का तमगा जीता। खवातीन की टीम ने भी ईरान को एक सनसनीखेज फाइनल में 34 के मुकाबले 37 के फर्श से कामयाबी हासिल करके सोने का तमगा जीता। एथलेटिक्स में तेजिंदर पाल सिंह तूर ने 20.64 मीटर की दूरी पर शॉट पुट फेंककर चांदी का तमगा जीता। सावन बोरवाल ने मर्दों के मैराथन में चांदी का तमगा जीता। इस तरह 44 साल का भारत का इस खेल में जीत का इंतजार खत्म हुआ। बारवाल ने 2 घंटे 11 मिनट 37 सेकंड में दौड़ पूरी की। प्राची चौधरी ने 53.21 सेकंड में खवातीन की 400 मीटर की दौड़ में कांस्य का तमगा जीता। निशानेबाजी में मदिसरा थितुरमा के विनोद और आशीष चौकसी ने खवातीन के 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम मुकाबले में 1763 प्वाइंट के साथ चांदी का तमगा जीता। तमगे की फहरिस्त में भारत फिलहाल वक्त 10वें मकाम पर है। उसने सोने के 4, चांदी के 12, कांसे के 14 तमगों के साथ कुल 30 तमगे जीते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने एशियाई खेल 2026 में जीत हासिल करने पर खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। खास खबरें एक बार फिर। खारिजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने तरक्की पजीर मुल्कों के लिए ज्यादा नुमाइंदगी के वकालत करते हुए अकवामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में फौरी इजलास की अपील की है। सैयद खानदानी बहबूद की वजारत में सेक्रेटरी पूनिया सलीला श्रीवास्तव न्यूयॉर्क में अकवामे मुत्तहिदा की आला सतह की मीटिंग में आलमी सतह पर वबा से निपटने की तैयारी और कार्रवाई के तहत भारत पर अजम का इजहार किया। और एशियाई खेलों में भारत की खवातीन और मर्दों की कबड्डी टीमों ने जापान में सोने के तमगे जीते हैं। तेजिंदर सिंह तुरुन ने मर्दों के शॉट पुट में चांदी के तमगे जीते। तमगों की फहरिस्त में भारत सोने के 4, चांदी के 12 और कांसे के 14 तमगों के साथ 30 तमगों में पहुंच गया है। आकाशवाणी से खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश है क्लासिकी मौसीकी। आइए इस प्रोग्राम के तहत पंडित रघुनाथ सेठ का बांसुरी पर बजाया रूपक ताल सुनते हैं।

चमेन पंडित रघुनाथ सेठ का बांसुरी पर बजाया रूपक ताल आप सुन रहे थे। इसके साथ ही क्लासिकी मौसीकी का प्रोग्राम खत्म होता है। यह आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरिया। पेश है सदाबहार फिल्मी नगमों का प्रोग्राम आखिरी शब्द।

सुमन श्याम कुमार और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में तिलस्मी दुनिया फिल्म का ये दो गाना आप सुन रहे थे। आइए अब आपको सुनाते हैं नया अंदाज फिल्म का दो गाना, आवाजें हैं किशोर कुमार और शमशाद बेगम की।

0: और सोने का तमगा ही था। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर खाजा डॉक्टर एम जयशंकर ने अकवाम मुत्तहदा जनरल असेंबली से खिताब करते हुए जारी तनाजात के दौरान तामुल से काम ले रहे तनाव में कमी और शहरी तहफ़ को बढ़ाने पर जोर दिया। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिसरी ने तरक्की पसंद मुल्कों के लिए ज्यादा नुमाइंदगी की वकालत करते हुए अकवाम मुत्तहदा सलामती कौंसिल में फौरी असलाहत की अपील की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्याल का इजहार करेंगे। आकाशवाणी से खबरों का प्रोग्राम अब खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। सामीन, शब का 1 बजे चाहता है उर्दू सर्विस की आज की 3री मजलिस की ये नशरियात अब खत्म होती है। कल सुबह 9:30 पर पहली मजलिस की नशरियात लेकर फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज, शब खैर, जय हिंद।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। यह निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
3: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में कल भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मार्ट पहल सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केन्द्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
4: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
2: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज केरलम के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने जारी संघर्षों के बीच संयम, तनाव कम करने और आम नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने की अपील की है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि युद्ध का असर केवल संघर्ष में शामिल देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूर दराज के देशों को भी इसका नुकसान भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए लगातार बने खतरों से वैश्विक समुदाय को मिलकर निपटना होगा। उन्होंने खाड़ी क्षेत्र में जारी संघर्ष का भी जिक्र किया और कहा कि पश्चिम एशिया संकट का दो राष्ट्र समाधान स्थायी शांति ला सकता है। रूस यूक्रेन संघर्ष का जिक्र करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का प्रमुख विषय है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघर्ष

0: निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। बीएलओ बाद में इन दस्तावेजों को ईसीआई नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर एसआईआर के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंड्रा में कल भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
2: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज केरलम के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंद मई के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा करने का अधिकार रखता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पर कार्रवाई और आतंकवाद के लिए मिलने वाली आर्थिक मदद रोकने की जरूरत पर जोर दिया। डॉ जयशंकर ने कहा कि आज वित्त, बाजार, आपूर्ति और तकनीक जैसे क्षेत्रों का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त से जुड़ी चुनौतियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत ने 78 देशों में करीब 600 विकास परियोजनाओं में मदद की है और आपदा तथा संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सहायता भी पहुंचाई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के क्षेत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि देशों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार एआई मॉडल और उनके इस्तेमाल की योजनाएं विकसित करने में सक्षम होना चाहिए। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित

0: Master Management Secretary Vinod Kumar Suman said the decision has been taken in the interest of pilgrims' safety. Pilgrims have been advised to keep track of weather conditions and follow the guidelines issued by the administration. The pilgrimage will resume only after the weather conditions improve. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIRI न्यूज 24x7 चैनल है। साथियों, समय हुआ है 2:10 और 10 सेकंड। साथियों, समय होता है बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम का। जी हाँ, बड़ा ही सुंदर खूबसूरत कार्यक्रम होने वाला है और ये वाकई बहुत ही शानदार रचनाओं के साथ आता है ये खूबसूरत कार्यक्रम। जी हाँ, कार्यक्रम गीत बहार, फिल्म म्यूजिक नॉन स्टॉप, जी हाँ, बिना किसी रुकावट के लगातार आप सुन रहे होंगे कि बहुत ही शानदार बेहतरीन खूबसूरत रचनाएं। आज मैं हूं आपके साथ इस कार्यक्रम में आपका दोस्त ललित कुमार। तो बस हो जाए तैयार आज के कार्यक्रम गीत बहार की पहली सुंदर बेहतरीन रचना के साथ। नमस्कार, स्वागत आप सभी साथियों का। सुनते हैं आज के कार्यक्रम गीत बहार की सुंदर खूबसूरत रचनाएं।

बाती चलते हैं फौज रसाले, चलते हैं फौज रसाले, चाहे लगा ले। ताल बिना बेजान है जीवन, काम न बनने वाले, चाहे कोई

कुछ भी काम ना आए। अरे तन में मन की बीन बजे तो

वक्त नौ कर चा कर नेह से सबको बुलाओ भाग्य फले सौभाग्य मिले तो कुछ भी न गर्व दिखाओ जो घर में इस रीत चले वो सदगृहिणी पद पाए जो इसके विपरीत चले

0: Alma. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम समूचे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, पीएमओ तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। बीएलओ बाद में इन दस्तावेजों को ईसीआई नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। यह निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर एसआईआर के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंड्रा में कल भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज केरलम के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा करने का अधिकार रखता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पर कार्रवाई और आतंकवाद के लिए मिलने वाली आर्थिक मदद रोकने की जरूरत पर जोर दिया। डॉ जयशंकर ने कहा कि आज वित्त, बाजार, आपूर्ति और तकनीक जैसे क्षेत्रों का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के क्षेत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि देशों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार एआई मॉडल और उनके इस्तेमाल की योजनाएं विकसित करने में सक्षम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत ग्लोबल साउथ के साथ अपनी साझेदारी में एआई को भी शामिल करेगा। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। यह निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समय हुआ है 3:10 और 10 सेकंड। साथियों, ये समय होता है बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम, जी हाँ दोस्तों, गीत गजल। जी हाँ, कार्यक्रम गीत गजल। आज के कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त ललित कुमार। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम की गीत, बहुत ही शानदार गजलों का कार्यक्रम है और गीत गजल के अंतर्गत एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत रचना से हम शुरुआत कर रहे हैं, साज़े दिल नगमाए जान। जी हाँ, साज़े दिल नगमाए जान एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही पॉपुलर खूबसूरत गजल है और गजल साज़े दिल नगमाए जान यात्रा एल्बम के अनुरूप अनुसार तलत अजीज की खूबसूरत आवाज में शानदार रचना है। गीत साज़े दिल एल्बम है और संगीत से सजाया खयाम साहब ने। तो आइए सुनते हैं ये शानदार और बेहतरीन खूबसूरत गजल आज के कार्यक्रम की पहली सुंदर बेहतरीन रचना।

जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत गजल अभी आप सुन रहे थे तलत अजीज की खूबसूरत आवाज में शानदार रचना। या दोस्तों, एक और सुंदर मार्वलस खूबसूरत गजल आ रही है, जिंदगी तूने। जी हाँ, ये टाइटल लाइंस हैं और प्यार का पहला खत जगजीत सिंह साहब की आवाज में बहुत ही खूबसूरत रचना है। और इस गजल को संगीत से सवारा है जगजीत सिंह ने ही। तो आइए सुनते हैं एक और शानदार बेहतरीन गजल।

जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गजल। या दोस्तों, आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गजल की ओर। यह गजल आ रही है आगे भी जाने ना तू। एल्बम वक्त से बहुत ही शानदार एल्बम है। आशा भोसले की आवाज में शानदार गजल। यह गजल 1965 प्रदर्शित एल्बम की है और गीत साहिर के हैं और संगीत से संवारा है रवि ने। तो आइए सुनते हैं एक और बेहतरीन गजल।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत गजल। गीत गजल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मुझे यानी अपने दोस्त ललित कुमार को दीजिए अनुमति। साथियों, 4 बजने को है और कुछ ही पलों में प्रस्तुत होगा कार्यक्रम अर्चना।
1: भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

पहली रचना केकुंजी रामन और साथियों की आवाज में है।

जी आकाशवाणी दिल्ली का पीआईआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। समय हुआ है 4:20 और 15 सेकंड। आइए सुनते हैं कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत सिक्किल माला चंद्रा शेखर का बांसुरी वादन।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सिक्किल माला चंद्र शेखर का बांसुरी वादन।

आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 27 सितंबर 2026। इस समय सुबह के 4:53 और 47 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 5:10 पर कार्यक्रम होगा आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस, जिसमें आज का विषय रहेगा भद्रासन और अश्वथासन। 5:20 का समय रहेगा देशभक्ति गीतों का। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत आप सुनेंगे रेहाना चक्रवर्ती का गायन, राग होगा शिवमत भैरव।

संगीत का कार्यक्रम में सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे परवीन दुबे के भजन। 7:30 का समय रहेगा हिंदी फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का, और 8:45 पर कार्यक्रम होगा साहित्य की, जिसके अंतर्गत परिचर्चा का विषय रहेगा हिंदी गजल नई जमीन। ये कार्यक्रम दुष्यंत कुमार जयंती पर आधारित होगा, जिसमें प्रतिभागी होंगे डॉ जानकी प्रसाद शर्मा, श्री दीक्षित दनकौरी, श्री अनिल वर्मा मीत और श्री राजेंद्र निगम राज। साथ ही साहित्यिक गतिविधियों के बारे में भी चर्चा की जाएगी।

सुबह 9:15 पर कार्यक्रम होगा हमारे अतिथि, जिसके अंतर्गत फोटोग्राफर सुशी सर्वेश से भेंट वार्ता प्रसारित की जाएगी। मिट्टी भी महक कार्यक्रम का समय रहेगा 9:30, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे भारत विच सैर सपाटा। ये होगा हमारी आज की बातचीत का विषय और प्रस्तुति होगी डॉक्टर विनयनीत कौर की। सुबह 10:10 पर कार्यक्रम होगा आपकी पसंद, हिंदी फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम। आज हमारा विशेष कार्यक्रम सुनना न भूले, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मन की बात का एपिसोड संख्या 138। इसके तुरंत बाद इसका संस्कृत रूपांतरण भी सुना जा सकेगा। दोपहर 12:10 पर कार्यक्रम होगा महिला कार्यक्रम, जिसमें चर्चा का विषय रहेगा विट्ठल भाई पटेल जयंती। अभी आप कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 5 बजने को हैं। अब आप पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

भगत जोग का जैतवार हर जन को पाया। शब्द गुरु पर काश्यो हर रसन बसाया। गुरु नानक अंगद अमर लाल उत्तम पद पाया। गुरु अर्जुन घर गुरु रामदास भगत उतर आया। बड भागी उन मानिया रेद शब्द बसाया। मन मानक संतोखिया गुर नाम।

गुर अर्जुन कर गुर रामदास अनपौ ठहराया जनक राज बरताया सतयुग आलीना गुर शब्द।

0: अपरंपर वीणा।
1: खेल गुरो कियो हर राय संतोख समाचरयो, विमल बुद्ध सतगुरु समानो अजोनी संभव्यो, सो जस कल कवियन बखानयो, गुरु नानक अंगत वरयो, गुर अंगत अमर निदान, गुरु रामदास अर्जन वरयो, पारस परस परमान, सत जीवन अर्जुन अमोल अजोनी संभव्यो, पैपंजन दुख निवार पारे नंबो, अगह गहन प्रम्पात दहन शीतल सुखदातो, असंभव उद्वयो पुरख पूरण विधातो, नानक आद अंगत अमर सतगुरु।

जय जयकार जास जग अंदर मंदर भाग जुगत शिव रहता गुर पूरा पायो बड भागी लिव लागी में दन पर सहता पै पंजन पर पीर निवारण कल सहार तोहे जस बकता कुल सोडी गुरु रामदास तन धर्म तुजा अर्जुन हर भगता त्रम तीर गुरमत गंभीर पर दुख विसारण शब्द सार हर सम उधार अहमेव निवारण महादान सतगुर ज्ञान मन जाओ न हुटे सतवंत हर नाम मंत्र नवनित नानक हुटे गुरु रामदास तन सर्ब में सहज चंदो आताण्यो गुर अर्जुन कल उचरे तैं राज जोग रस जान्यो पै निरपौ मान्यो लाख में लख लखायो अगम अगोचर गत कबीर सतगुर परचायो गुर परचे परवान राज में जोग कमायो तन तन गुर तन अपार सार सो पर परायो गुरगम प्रमान अजर दरयो सर संतोख समायो गुर अर्जुन का लुच रहे।

0: अम्यो रसना बदन बरदात लख अपार गोर सूर शब्द हो में निवार्यो पंचाह निदर्यो सुन से निज कर सहार्यो हर नाम लाग जग उदर्यो सतगुर रे बसायो गुरा जुन का लुच रहे ते जन के कलस दिपायो गुरा जुन का लुच रहे ते जन के कलस दिपायो
1: सोरठे गुरु अर्जुन परख परमान पार्थो चले नहीं निजा नाम निशान सतगुर शब्द सवार्यो पव जल सायर सेत नाम हरि का बोहेता तो संगत गुर संग हेत नाम लाक जग उदर्यो जग तू उदारन नाम सतगुर तुठे पायो अब नाहे अवर सर काम बारंतर पूरे पड़ी ज्योत रूप हर आप गुरु नानक हायो ताते अंगद पयो तत सो तत मिलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिरकियो अमर दास अमृत शतर गुर रामे दियो गुरु रामदास दर्शन परस कै मथुरा अमृत बहन मूरत पंच परमान पुरख गुरु अर्जुन पिखो नैन
2: सत रूप सत नाम सत संतोख तरेर आद पुरख परतख लिखियो अक्षर मस्तक तुर प्रगट ज्योत जगमग तेज पू मंडल छायो पारस परस परस परस

0: बासुर रहन बास जाको हित नाम सियो परम अतीत परमेश्वर के रंग रंगे ओ बास ना ते बाहर पै देखिए ताम सियो अपर परंपर पुरख सियो प्रेम लागे ओ बिन भगवंत रस नाही और काम सियो मथुरा को प्रभ सर्व मैं अर्जुन गुर भगत कहेत पाए रहे हो मिल राम सियो।
1: अंत न पावत देव सभै मन इंद्र महाशिव जोग करे हुन वेद

0: जग और न जागे महात्म में अवतार उजागर आन कियो इनके दुख को टिक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो ए पद्धत से मत चुके रे मन भेद विभेद न जान बियो परता छिरदा पुर अर्जन कै हर पूरन ब्रह्म निवास लियो।
1: जब लो नहीं पाग ललार उदे तब लो

0: सोडी सृष्ट सकल तारण को, अब गुर रामदास को मिली बड़ाई।
1: सतगुर खेमा ताणिया जुग जूथ समाने, अनुभव नेजा नाम टेक जित भगत अगाने। गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने, एहो राज जोग गुर रामदास तुम रस जाने।
2: देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो, हर सिंहासन दियो श्री गुर तैं बैठायो। रहस कियो सुर देव तोहे जस जय जय जंपै, असुर गेते भाग

अमृत छाड बिख बिख खाई माया मोह परम पे पुले सुत दारा से प्रीत एक उत्तम पंथ सुने हो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गोरे रामदास राखो सरनाई एक अरदास पाठ कीरत की गोरे रामदास राखो।

सोई भगत ज्ञानी ध्यानी तपा सोई नानक जाको कृपा की जय।

ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਣਹੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਬਿਨੋ ਹਮਾਰੇ ਜੀਓ